सुप्रभात, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948, श्रावण माह की तिथि 28, तदनुसार अगस्त 19, ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का चाय बासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने 8 अधिसूचनाएं जारी की। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी समेत कई पदों की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का भी अनुरोध किया जाएगा। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य अधिक परिवारों तक पाइप से रसोई गैस पहुंचाना है। वर्तमान में देश में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभा तथा विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र वैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग कराता है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का जिक्र किए जाने के बाद जारी की गई। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल होंगे।

0: भारत ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को जन केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने पर बल दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में ये बात कही। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों की चुनौतियों का उल्लेख किया।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए भी आमंत्रित किया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। दो क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए मुकाबला काफी प्रमुख है। भारत के दो मैचों में 3 अंक हैं और अगले दौर में पहुंचने के लिए उसे कम से कम ड्रॉ की जरूरत है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की राह पर बढ़ते देख वनवासियों के द्रवित हृदय में स्नेह श्रद्धा और सद्भाव उमड़ पड़ते हैं। ऐसे सुकुमार शरीर वाले वन के कठिन मार्ग पर कैसे चलेंगे? इनके कोमल रक्ताप चरणों के स्पर्श से धरती वैसे ही सकुचा जाती है जैसे वनवासियों के हृदय सकुचा रहे हैं। विधाता को यदि इन्हें वनवास ही देना था तो इनकी राह में फूल क्यों नहीं बिछा दिए? यदि सृष्टिकर्ता से मांगे मिल जाए तो वनवासी उन्हें अपनी आंखों में बसा लें। श्री राम के दर्शन के लिए गांव गांव के लोग खींचे चले आते हैं। कुछ लोग ऐसे सुकुमारों को वनवास देने वाले राजा रानी को दोष देते हैं तो दूसरे राजा की इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि ऐसा करके उन्होंने राह घाट के लोगों को श्री राम के दर्शनों का सुअवसर प्रदान किया। धन्य हैं वे माता पिता जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, धन्य है वो नगर जहाँ से ये आए हैं, और धन्य हैं वे पर्वत

अभी आपने सुना श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे वाणी जयराम। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वरों में।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह के स्वर में ये भक्ति रचना। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

अब से कुछ देर बाद यानी कि सुबह के 6:45 का समय होगा सुगम संगीत का। आप सुनेंगे सतीश कुमार शर्मा के स्वर में। सुबह के 7 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायवासा का। सुबह 8 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से ही सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार सुबह के 8:15 पर। सुबह 8:30 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। सुबह के 8:40 का समय होगा लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आप सुनेंगे बांग्ला लोकगीत। सुबह 9 आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। सुबह 9:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। सुबह 10 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक होंगे NCERT। सुबह 10:30 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। दोपहर के 1:10 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची से सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम दोपहर के 1:20 पर। 2:55 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। 3 आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। शाम के 4 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम के 4:02 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। शाम के 5 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। कार्यक्रम विवरण का प्रसारण होगा शाम के 5:02 पर। शाम 5:05 का समय होगा कार्यक्रम गुलदस्ता का, जिसमें आज आप सुनेंगे एक ही गायिका के गाए हुए गीत। शाम के 5:30 का समय होगा कार्यक्रम खेती गृहस्थी का, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा जैविक खेती व लाभ। उसके बाद आप सुनेंगे उड़िया लोकगीत जितेंद्र प्रधान और साथी को। भेंटवार्ता आप सुनेंगे पर्यावरण संरक्षण में हमारी भूमिका। भेंटवार्ताकार होंगे चांदमणि हाँसदा, उनसे बातें करेंगी कोमल नायक। कार्यक्रम के अंत में सुनेंगे हो लोकगीत मेला निबोधा और साथी को। शाम के 6 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम के 6:02 का समय होगा क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अखड़ा। शाम के 6:30 का समय होगा महिलाओं का कार्यक्रम मनोरमा। शाम के 7 आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची से ही सुनेंगे जिले में आजकल। शाम के 7:15 का समय होगा श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि के 8 आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि के 8:45 का समय होगा

समाचार संध्या का आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार रात्रि के 9 बजे। रात्रि के 9:15 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। रात्रि के 10 बजे आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि के 10:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से ही सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार रात्रि के 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले सेज कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का चाय बसा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत सतीश कुमार शर्मा के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत सतीश कुमार शर्मा के स्वर में। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे जोहार चाईबासा। कार्यक्रम जोहार चाईबासा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को पूनम का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के इस गीत से लता मंगेशकर के स्वर में।

अभी आपने सुना फिल्म शक्ति का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म कर्ज से, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में।

0: अभी आपने सुना फिल्म कर्मा का ये गीत अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज़ों में। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायवासा, आकाशवाणी चायवासा से।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस संदेश के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म सिंदूर का ये गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में।

अभी आपने सुना फिल्म साजन का ये गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म सड़क से, अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज़ों में।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं सीता और गीता का ये गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम जौहर चायबासा। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से ही।

0: मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना पहली सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
5: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया टीडीपीएल द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर एसआईटी की जांच और जारी सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
3: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और

0: भारतीय जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थीं। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुँचा। जाँच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। एसीबी के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जांच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जाँच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
2: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
0: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्र

0: राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
1: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिड़ी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केओंझर और मरभज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने यह घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया। वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2000 से अधिक नौकरियां खतरे में, 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच, सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान, दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष 2 में जगह बनाने पर नजरें, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता, भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने के लिए, विकसित भारत के लिए ज्ञान लोग गढ़ने वाली भी है। अंतरिक्ष में उगाई सरसों से बनाई सबसे स्वादिष्ट स्पेस डिश, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी साथी जेसिका विट ने किया कारनामा। बीज और खेती की सामग्री पृथ्वी से पहले ही भेजी गई थी। राजस्थान पत्रिका ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया के पुरस्कृत फोटोग्राफ को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, अंधेरे में शिकार को झपटने को तत्पर बार्न उल्लू, ये तस्वीर इंग्लैंड के नॉरफॉक की है और तस्वीर ली है विंस बर्टन ने। पत्र ने आइसलैंड में डेनियल विने गार्सिया द्वारा क्लिक की गई तस्वीर भी साझा की है, जो

0: मुखी से बहते गर्म लावा का विहंगम चित्र है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में हम सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
2: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
3: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने रद्द और सीआईडी जांच वाली 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। मामलों की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का किया जाएगा अनुरोध। राज्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग पर राजनीतिक बयानबाजी तेज। मगध और आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने 12 दोषियों को 5 से 10 साल तक की सजा सुनाई। संसद की औद्योगिक स्थायी समिति की 6 सदस्यीय टीम एचईसी प्लांट के दौरे पर आज पहुंचेगी रांची। और राज्य में पिछले 36 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द और सीआईडी जांच वाली कुल 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की है। रद्द परीक्षाओं में जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षाएं, सीडीपीओ, ड्रग इंस्पेक्टर, सिविल जज, सहायक वन संरक्षक, सहायक प्राध्यापक और अन्य भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। कल देर रात जारी 8 अधिसूचनाओं में कई परीक्षाओं को रद्द करने के साथ जांच और परीक्षा सुधार से जुड़े फैसलों की जानकारी दी गई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: झारखंड सरकार ने जीपीएससी, जेएसएससी और आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा आयोजित 44 भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, जिसमें जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं भी शामिल हैं। सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया टीडीपीएल द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर एसआईटी की जांच और जारी सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की पूरी प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है। साथ ही बाहरी परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल पर भी कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया गया है। सरकार ने परीक्षा एजेंसी को भविष्य में राज्य की किसी भी परीक्षा का संचालन करने से प्रतिबंधित करते हुए ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया गया है। राज्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन के पीछे भाजपा का हाथ है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग पर कहा कि राज्य सरकार की भी एजेंसियां हैं, प्रदर्शनकारी छात्रों को भरोसा करना चाहिए।
2: भाजपा नहीं चाहती है कि छात्रों का आंदोलन समाप्त हो। छात्रों के हित से उनको कोई लेना देना। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि आंदोलन कंटिन्यू करे ताकि उन्हें कांग्रेस के ऊपर अटैक करने का अवसर। सीआईडी में ताला लगा दे, एसीबी को बंद कर दे, स्पेशल ब्रांच को बंद कर, हमारी भी एजेंसी है। और क्राइम हो चाहे इकोनॉमिकल क्राइम, वो राज्य का सब्जेक्ट।
0: वहीं भाजपा सांसद बीडी राम ने कल गढ़वा में कहा कि सीबीआई में जो दक्षता है वह सीआईडी में नहीं है, इसलिए प्रदर्शनकारी छात्रों की जो मांग है राज्य सरकार उसे माने।
3: छात्रों की

0: की मांग है जिसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, उस मांग को सरकार ने अभी तक नहीं माना। क्या सरकार स्वयं इस बात से डरी हुई है कि सीबीआई की जांच हो जाती है बहुत सारे नामी गिरामी लोगों की गिरफ्तारियां होने लगी? क्या पहले सीबीएसईआईडी कराते हुए सीबीआई की जांच नहीं होती?
1: जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी मामले में आंदोलन आज 26वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ परीक्षाएं रद्द करने से आंदोलन समाप्त नहीं होगा। मंच ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग दोहराई। राज्य सरकार की ओर से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ सफल अभ्यर्थियों ने कहा कि वे लोग सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे। मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटे आक्रोशित अभ्यर्थियों ने कल रात आक्रोश मार्च निकाला और अपना कड़ा विरोध दर्ज किया। संसद की औद्योगिक स्थायी समिति की 6 सदस्यीय टीम हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC के दौरे पर आज रांची पहुंचेगी। समिति कल HEC के FFP, HMBP और HMTP प्लांट का निरीक्षण करेगी। टीम के दौरे को लेकर लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे HEC के कर्मचारियों में उम्मीद जगी है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कल नाला और जामताड़ा विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर SIR प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं होने वाले पात्र भारतीय नागरिक फॉर्म 6 और घोषणा पत्र भरकर BLO को जमा करें। CEO ने BLO को निर्देश दिया कि कोई भी पात्र मतदाता जानकारी के अभाव में सूची से ना छूटे, इसके लिए घर घर संपर्क करें। चतरा के टंडवा स्थित मगध और आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में NIA की विशेष अदालत ने 12 दोषियों को 5 से 10 साल तक की सजा सुनाई है। 5 दोषियों को अधिकतम 10 वर्ष, 6 दोषियों को अधिकतम 8 वर्ष और 1 को 5 वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही उन पर 40,000 से लेकर 90,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया गया है। कोडरमा पुलिस ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की कोडरमा शाखा में लूट की योजना बना रहे 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक SP कुमार शिवाशीष ने बताया कि पुलिस की कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। इस घटना में तिलैया थाना प्रभारी समेत कुछ पुलिस कर्मियों को मामूली चोट भी आई है।
2: कुछ लड़के हथियार के साथ और एक बैंक डकैती की तैयारी कर रहे हैं। वहां में 5 से 6 लोग दिखाई दिए, जिनके द्वारा पुलिस की टीम को देखने के बाद फायरिंग करनी शुरू कर दी गई। सेल्फ डिफेंस में हमने फायरिंग की, उसमें एक युवक से गोली लग गई है पैर में और इसके अलावा 3 और लोग डिटेन किया है। अभी तक के पास सामान मिले उसमें 3 पिस्टल है, 15 गोलियां हैं और 5 मैगजीन है। इनके पास जो मोबाइल्स मिले हैं उसमें प्रॉपर रेकी के वीडियोज मिले।
1: बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड में हो रहा है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 36 घंटों से रुक रुक कर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है, जबकि कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज भी राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। महिला हॉकी विश्व कप 2026 के मुकाबले में कल भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से हरा दिया। इस शानदार जीत पर झारखंड हॉकी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने रद्द की गई और CID जांच वाली 44 भर्ती परीक्षाओं की जारी सूची की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है CGL और सिविल सेवा समेत 22 परीक्षाएं रद्द। प्रभात खबर ने अगले सत्र से BIT मिश्रा में राज्य के विद्यार्थियों के लिए सीटें आरक्षित कराने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने आम्रपाली मगध कोल परियोजना में टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए की विशेष अदालत से 12 आरोपियों को सजा सुनाए जाने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, अभी थमने वाला नहीं है सीजीएल परीक्षा विवाद। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राज्य सरकार ने रद्द और सीआईडी जांच वाली 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। मामलों की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का किया जाएगा अनुरोध। राज्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग पर राजनीतिक बयानबाजी तेज। मगध और आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने 12 दोषियों को 5 से 10 साल तक की सजा सुनाई। संसद की औद्योगिक स्थायी समिति की 6 सदस्यीय टीम एचईसी प्लांट के दौरे पर आज पहुंचेगी रांची। और राज्य में पिछले 36 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और एफएम 100.5 मेगा हर्ट्स पर श्रोताओं आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के रांची केंद्र को। आप ये प्रसारण सुन रहे हैं अपनी रेडियो सखी छवि के साथ।

और आइए अब सुनते हैं लोक रंग कार्यक्रम के अंतर्गत लोकगीत मुंडारी भाषा में। कलाकार हैं कृष्णा बड़ाइक और उनके साथी।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आप सुनेंगे बांग्ला लोकगीत, कलाकार हैं पूरन दास और साथी।

0: হয় বন্ধু তিন দিন হয় হয়
1: अभी आप सुन रहे थे लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आपने सुना बांग्ला लोकगीत कलाकार थे पूरनदास बाउल के स्वर में। ये आकाशवाणी का चायवासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

0: कार्यक्रम विविधा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को पूनम का नमस्कार। श्रोताओं, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है 19 अगस्त। जी हाँ, 19 अगस्त को मुख्य रूप से विश्व मानवता दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवता दिवस, यह दिन संकट में फंसे लोगों की मदद करने वाले और मानवीय कार्यों के दौरान जान गंवाने वाले कार्यकर्ताओं को समर्पित है। इसी तरह से विश्व फोटोग्राफी दिवस, यह दिन फोटोग्राफी के इतिहास, कला और विज्ञान को सम्मान देने तथा फोटोग्राफर के काम को सराहने के लिए मनाया जाता है।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर

0: इस संदेश के बाद आइए अब सुनते हैं भेंटवार्ता, हैंडलूम एवं मशरूम की खेती। भेंटवार्ताकार हैं सुशीला कुमारी, उनसे बातें कर रही हैं आशा पिंगवा।
1: हाँ। क्या नाम बताया? SSR।
2: हाँ सर।
1: उसका फुल फॉर्म क्या है?
2: कंफ्यूज है मैडम उसके
1: अच्छा,
2: लिए।
1: हाँ। अच्छा कोई बात नहीं, ये तो मेघातुबुरु है
2: जी। हाँ मेघातुबुरु है। हाँ मेघातुबुरु।
1: तो वसंत देख रहे, बहुत खूबसूरत जगह है, पहाड़ी इलाका है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर तरह के काम सिखाए जाते हैं, जैसे कि सिलाई कढ़ाई, हथकरघा, साड़ी बना रही थी, बहुत सारे चीज़ यहाँ पर। और हमने ये भी देखा कि मशरूम की भी यहाँ पर खेती की जाती है, वो भी क्या सिखाया जाता है?
2: हाँ ट्रेनिंग दिया जाता है मैडम, सभी को ट्रेनिंग दिया जाता है, और यहाँ जितनी लेडीज लोग आती हैं उन लोगों को सिखाते हैं हम लोग।
1: अच्छा
2: जी,
1: तो हाँ। आप लोग भी कहीं से सीख कर आए होंगे?
2: जी हाँ, हम लोग भी ट्रेनिंग पहले लिए हैं, सीखे हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं।
1: अच्छा, यहाँ क्या क्या काम होता है?
2: यहाँ हम लोग का हैंडलूम का हैंडलूम का काम होता है, हैंडलूम का वर्क है, जैसे बेडशीट हुआ, गमछा हुआ, साड़ी है, डस्टर है, रुमाल है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसे जैसे हम लोग का ऑर्डर आता है उस तरह हम लोग उससे निकालते जाते हैं।
1: अच्छा।
2: जी हाँ,
1: तो किन किन चीज़ों से ये बनाई जाती है?
2: ये थ्रेड है मैडम, जैसे बेडशीट के लिए हम लोग को 40x2 का थ्रेड होता है, 40x2 होता है, 60x2 होता है, इस तरह का बहुत सारे थ्रेड आते हैं अलग अलग नाम के। तो अगर कॉटन के हम लोग अगर बेडशीट निकाल रहे हैं तो हम लोग कॉटन का थ्रेड लाके उसको निकालते हैं। बटर सिल्क हो गया, बटर सिल्क से साड़ी निकालना हुआ, स्टॉल निकालना हुआ, फिर थान की जैसे कपड़ा होती हैं, थान के कपड़ा में जैसे तसर का थान हो गया, तसर थान, धुप्यान थान, कॉटन
1: अच्छा।
2: के थान, ये सब हम लोग कुर्ता पीस के लिए ये सब निकालते हैं।
1: अच्छा, ये जितने भी चीज़ें यहाँ बनाई जाती है, जैसे कि बेडशीट हो गया, साड़ी हो गया, तो उसके लिए सूत कहाँ से आप लोग लाते हैं?
2: ये सब हम लोग का कोलकाता से ही आता है मैडम।
1: अच्छा, यहाँ पर आप लोग खुद नहीं बनता है? यहाँ
2: नहीं, यहाँ नहीं बनाते मैडम, हम लोग रॉ मटेरियल लेकर आते हैं और हम लोग माल बनाते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं मैडम।
1: अच्छा, तो कितने दिनों में आप लोग ये सब चीज़ें बना लेती हैं, जैसे कि एक साड़ी, ये एक महिला
2: साड़ी बनाने में, जैसे मैडम एक साड़ी बनाने में हम लोग को 1 वीक लग जाते हैं। साड़ी पर डिपेंड करता है ये कि किस चीज़ की साड़ी बन रही है, जैसे तसर की साड़ी बन रही है, सिल्क की साड़ी बन रही है, तो उस समय थोड़ा टाइम लेती है। जैसे जैकार्ड की साड़ी हम लोग बना रहे हैं, डिजाइन की साड़ी बना रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगते हैं डिजाइनिंग करने में। और प्लेन साड़ी हम लोग 3 दिन में निकाल देते हैं, बाकी साड़ी हम लोग को मतलब 1 वीक में, 6 डे में, 5 डेज में निकल जाते हैं।
1: अच्छा
2: हाँ,
1: और जगह तो मशीन से बनाया जाता है ये?
2: हाँ,
1: साड़ी वगैरह
2: ये हम लोग का हैंडलूम है मैडम, ये हम हैंडलूम से ही निकालते हैं, और प्लस और

0: सब जगह पावर लूम का यूज होता है, तो ये पावर लूम तो नहीं है, हैंडलूम है। हैंडलूम में थोड़ा टाइम लग जाता है मैडम।
1: नहीं, वही हम पूछ रहे थे कि काफ़ी अच्छा हम देखे उसमें, काफ़ी अच्छा डिजाइन किया हुआ था और कलर भी बहुत ही अच्छा था।
0: जी जी।
1: तो रंगने का क्या प्रोसेस है यहाँ पर
0: मैडम? ये सब हम लोग का ऑलरेडी कलर से ही, हम लोग को कलर जो अगर ऑर्डर आ गए तो उस कलर को हम लोग लिख के उस कलर को हम लोग कलेक्शन करके लेकर आ जाते हैं, है ना।
1: अच्छा।
0: और प्लस हम लोग यहाँ का कोई कलर नहीं करते हैं, हम लोग ऑलरेडी कलर वाले ही थ्रेड लेकर ही आती हूँ।
1: अच्छा।
0: जी हाँ, जैसा अगर कलर, अगर हम लोग अपना भी कॉम्बिनेशन साड़ी में दिए, थान कपड़ा में दिए कि ये कलर लेकर आना है, और इसी बीच अगर ऑर्डर आ गया कि नहीं इस कलर का बनाना है, तो हम लोग उस कलर को मार्केट करते हैं। हाँ, मार्केट कर लेते हैं।
1: अच्छा। अच्छा, वो आप जितने भी साड़ी बनाते हैं, क्या ऑर्डर जैसे आते हैं आप लोगों के पास, वैसा बनाते हैं कि आप अपने मर्जी से बनाते हैं?
0: नहीं नहीं, एक तो हम लोग बनाते ही हैं, क्योंकि हम लोग को ये चलाना होता है ना।
1: अच्छा,
0: तो
1: सेंटर चलाना।
0: हाँ जी हाँ। तो और जितने लेडीज लोग हैं, वो लोग का भी रोजगार इसी में हाँ है, तो उसको करने के लिए हम लोग करते रहते हैं। इसी बीच अगर कोई आ गए, तो अगर उन्हें पसंद आ गई तो वो ऑर्डर देते हैं, तो हम लोग उसको बनाते हैं मैडम।
1: अच्छा।
0: कि मतलब जैसे 3-4-5 ऑर्डर दे दिए तो हम लोग बनाते हैं, क्योंकि एक बार में एक लूम में हम लोग का 6 हो गया 7 हो गया 10 हो गया, ऐसे करके निकालते। सिंगल तो नहीं निकलती मैडम, सिंगल नहीं निकलती है।
1: अच्छा। हाँ। बहुत अच्छी बात है, यहाँ के लिए कम से कम बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ भी जितने भी हम देख रहे हैं बेरोजगार महिलाएँ हैं, वो यहाँ पर काम भी मिल जा रहा है उनको।
0: जी जी जी हाँ,
1: और सीख भी रही है। हाँ। काम भी, एक सीखना भी हो गया, एक बनाना भी हो गया। तो कितने इंटरेस्ट ले रही हैं यहाँ की महिलाएं?
0: हाँ, यहाँ की महिलाएं इंटरेस्ट लेती हैं, बहुत लेती हैं। अभी तो कम ही देख रहे हैं, जैसे ये लोग अपने घर की वर्क करते हुए करके आके यहाँ पूरा टाइम देती हैं करने के लिए।
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: अच्छा, पूरा समय देती है, तो बदले में उन लोगों को कुछ दिया जाता
0: है? हाँ जी जी बिल्कुल। पहले तो स्टाइपेंड मिलते थे, 6 मंथ का एलों को भी सिखाया जाता है।
1: अच्छा,
0: 6 मंथ का पहले होता है कि मतलब एलों को कैसे चलाना है, क्या करना है, कैसे थ्रेड को जोड़ते हैं, कैसे क्या करते हैं, सारा चीज़, सारा प्रोसेस हम लोग सिखाते हैं। उसके बाद हम लोग जैसे ही प्रोडक्ट निकालती हैं, साड़ी में निकाल रही हैं, तो उसे पर पीस में हम लोग इसका रेट रखे हुए हैं, और उस रेट से देते हैं।
1: अच्छा, क्या रेट है?
0: जैसे मैडम कॉटन की साड़ी बन रही है, तो कॉटन की साड़ी हम लोग का 600 जाता है।
1: अच्छा,
0: एक पर पीस में। जैसे ये लोग निकालती हैं उस तरह का, जैसे थान तसर का हो गया, बैंगलोर सिल्क के निकल रहे हैं, तो उसमें अगर डिजाइन बन रहा है तो ज़्यादा कॉस्ट है, 1000 तक है मैडम, और नहीं तो फिर 750 तक, 720 तक हम लोग का।
1: जी, महिलाओं का काफ़ी सहयोग भी है, मेहनत
0: है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल है। जी जी मैम। और जैसे बेडशीट निकल रहे हैं, तो बेडशीट में भी हम लोग जैसे ड्रम करना, बेडशीट में ड्रम करना, ड्राफ्टिंग करना, थ्रेड को घुमाना, सारा चीज़ को जोड़ के हम लोग पूरा उन लोगों को देते हैं मैडम। हाँ, बेडशीट में भी जैसे निकालती हैं, तो एक बेडशीट में हम लोग 80 रुपया देते हैं, थान में भी है, गमछा में भी है मैडम, हर सबका कॉस्ट अलग अलग रखा हुआ है मैडम।
1: अच्छा, मतलब ये रॉ मटेरियल जो भी है वो बाहर से आप लोग मंगाते हैं?
0: हाँ जी, रॉ मटेरियल जितना है सब बाहर से ही आते हैं। जी हाँ।
1: और आप भी लोग सिखाते हैं?
0: हाँ, एक ट्रेनर है, हैंडलूम के भी ट्रेनर है।
1: अच्छा।
0: जैसे स्टिचिंग के एक ट्रेनर हो गई मैडम, मैं कंप्यूटर की हो गई, कंप्यूटर सिखाती हूँ।
1: अच्छा।
0: बेसिक कोर्स है मेरा, और प्लस इधर भी देख लेती हूँ, और हैंडलूम के भी। तो और एक स्क्रीन के प्रिंटिंग के भी टीचर हैं, वो भी स्क्रीन प्रिंटिंग जो होता है सारा काम होते हैं।
1: अच्छा।
0: और हैंडलूम में भी टीचर हैं।
1: और प्रिंटिंग का जो काम होता है वो किस तरह का काम है?
0: प्रिंटिंग का सबसे पहले कंप्यूटर से उसको फॉर्मेट बना के निकाल देते हैं, फॉर्मेट निकाल के फिर जाके हम लोग स्क्रीन प्रिंटिंग में दे देते हैं, और उसमें वो फॉर्मेट को चेस में निकालते हैं, और उसके बाद उसमें आपको प्रिंट करते जाते हैं।
1: अच्छा।
0: हैंड से ही प्रिंट होते रहता है मैडम, हैंड से ही प्रिंट होते रहता है। जी।
1: अच्छा। काफ़ी चीज़ यहाँ सिलाई भी बन जाता है, कटिंग
0: जी,
1: भी होता है।
0: जी जी, स्टिचिंग भी।
1: स्टिचिंग हाँ। उसके भी कोई अलग कोई ट्रेनर होंगे?
0: हाँ, ट्रेनर है। अच्छा। उसके भी ट्रेनर है, जैसे हम लोग का स्कूल से ऑर्डर आ जाता है KVS का ड्रेस बनाने उनाने के लिए, तो KVS के ड्रेस बनाना हो या और भी कुछ बनाना हो, तो हम लोग स्टिचिंग वाला को भी देते हैं।
1: अच्छा।
0: वो सब भी बाहर से, जैसे जैसे ऑर्डर आता है मैडम उसे करते हैं।
1: अच्छा, मार्केट से भी कुछ ऑर्डर आता हो?

0: और सा डेवलप होते रहे तो निकलते रहेगा मैडम जी।
1: तो और क्या सुविधा आप चाहती हैं यहाँ के लिए?
0: यहाँ के लिए सुविधा मैडम, सुविधा तो सब कुछ है मैडम, हम लोग के लिए बहुत है और चाहेंगे कि हम लोग और डेवलप करें। अच्छा। और हम लोग को मार्केट मिले मैडम, मार्केट मिले। अच्छा। ताकि इस माल जो है हम लोग का प्रोडक्ट है जो दूसरे जगह बेच सके। अच्छा। ये चीज़ है, हम लोग को यहाँ से सेल प्रोवाइड किए हैं, मीना बाज़ार में एक शॉप दिए हैं बना के। अच्छा। वहाँ में भी हम लोग मटेरियल बेचते हैं। अच्छा। वहाँ भी जितने प्रोडक्ट हम लोग का निकल जाता है वहाँ हम लोग बेचते हैं।
1: हम देख रहे हैं कि यहाँ मतलब सिलाई कटिंग, फिर हथकरघा, साड़ी बनाना, जो भी है, बहुत इतने सारे काम के अलावे यहाँ एक हम देखे मशरूम की भी खेती हो रही है।
0: जी जी,
1: जरा उसके बारे में विस्तार से बताइए।
0: अच्छा, उस ये मशरूम की खेती हम लोग का नवंबर दिसंबर से स्टार्ट किए थे, मतलब सीजन के वाइज से ही हम लोग ये चीज़ को बनाते हैं। अभी इतना ही गर्म है एकदम है कि वो चीज़ को हम लोग नहीं कर पा रहे हैं।
1: अच्छा।
0: तो अभी बंद है और ये ट्रेनिंग जो सर आए हैं ना, ये सर ट्रेनिंग लिए हुए थे, तो ये सर हम लोग को ट्रेनिंग दिए, सिखाए और हम लोग सीख के फिर हम लोग जितनी और लेडीज आती हैं वो लोग को ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे करके आप मतलब आप अपनी लाइफ में भी इसको अपने घर में भी बना के कैसे आगे डेवलप कर सकते हैं, बेच सकते हैं, अपने जीवन यापन कर सकते हैं इस तरह का।
1: चूँकि और जगह के अलावा हम देखें यहाँ का अलग प्रोसेस है, जो प्रोसेसिंग है यहाँ का अलग है, और जगह प्लास्टिक में
0: जी मैडम नहीं, पहले मैडम हम लोग का सबसे पहला प्रोसेस था कि वो जो बिचाली होती है ना, वो पाल लेकर ही आते हैं, उसको 12 घंटा हम लोग भिगा के रखते हैं।
1: हाँ, हाँ।
0: और फिर उसमें बफिशिंग पाउडर क्या क्या बोलते हैं ना,
1: ऑयल रासायनिक,
0: हाँ वो चीज़ डाल देते हैं कि उसमें जो बैक्टीरिया जो सब वो सब मर जाए, कुछ ना रहे। और फिर रात में भर पूरे पानी हम लोग छोड़ देते हैं, रात में ड्रम में छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं मैडम कि वो पानी को निकाल के और धूप में दे देते हैं, इतनी दे देते हैं मतलब कि वो नीचे से पानी टपे नहीं,
1: अच्छा
0: इतना मॉइस्चराइज हो जाए कि मतलब सूखना भी नहीं चाहिए,
1: मतलब कि नमी रहे लेकिन पानी ना टपे
0: ना। हाँ जी, एकदम सूखे। उसके बाद हम लोग 5 लीटर प्लास्टिक ले लेते हैं, पॉलीथीन। अच्छा। जो पॉलीथीन होते हैं मैडम, और उसमें 5 लीटर हम लोग पहले सबसे बिच्चा डालते हैं, फिर बिचाली डालते हैं, फिर उसी तरह करके 5 लीटर डाल के खूब अच्छे से पूरा एकदम पैक करके और बांध के 1 वीक तक उसको ये होने देते हैं मैडम।
1: अच्छा, उसमें आप छेद भी?
0: हाँ जी जी, हाँ छेद भी करते, वो पूरे कम्प्लीटी के बाद मैडम पूरा बांध उनके फिर कम्प्लीट हो गए तब उसमें होल्ड कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं इसलिए कि उसके अंदर से एयर निकले और जी टेम्परेचर ये हो।
1: अच्छा।
0: तो और जब उसमें पूरे पकड़ लेते हैं ना मैडम, तो वो प्लास्टिक को हटाती हूँ, हटा के पूरा ये कर देती हूँ और उसके बाद से वो 25 दिन के अंदर वो मशरूम
1: आना फूटने,
0: हाँ फूटने चालू हो जाते हैं मैडम। ये फर्स्ट हो।
1: अच्छा, ये बताइए कि जो आप एक बकेट तैयार करते हैं मशरूम का,
0: जी जी जी,
1: एक फसल आप निकाल दिए मशरूम
0: जी जी जी,
1: तो दोबारा उसी बकेट में आप तैयार कर सकते हैं
0: दोबारा मैडम? दोबारा तो वेस्ट हो जाती, खत्म
1: अच्छा,
0: हो जाती, दोबारा तो बेकार हो जाते
1: हैं।
0: हाँ वेस्ट हो जाते हैं। एक बकेट में जो होती है मैडम, एक जो ये होते बनाते हैं उसमें हम लोग का कम से कम 2.5 किलो तो आराम से निकल जाते हैं मैडम।
1: अच्छा।
0: हाँ जैसे मशरूम जब आना चालू हो जाते हैं जब, तो उसमें हल्का सा स्प्रे करते हैं हम,
1: अच्छा, अच्छा, हाँ।
0: पानी का पोचारा मारते हैं पानी के, हल्का हल्का कि नमी रहे हमेशा,
1: हाँ,
0: रोज नमी रहे और वो नमी अच्छा सा और फूट के एकदम आना चालू हो जाए।
1: अच्छा, हाँ।
0: जी, तो उसके कारण, और फिर होने के बाद वो वेस्ट हो जाते हैं, हाँ। मैडम वो उसका कोई काम नहीं आता है।
1: अच्छा, एक बार निकला तो बस एक ही फसल उसमें तैयार होता
0: जी,
1: है?
0: जी जी, हाँ एक ही फसल तैयार कर सकते हैं मैडम।
1: और जैसे कि हुआ चूहा सांप वगैरह से बचाव के लिए आप, हाँ, तो यहाँ रूम में रखे, बाकी जो जितने लोग हैं वो, हाँ, एक पुआल का घर में रखते हैं तो बहुत, हाँ, दिक्कत का सामना पड़ता
0: जी,
1: है
0: जी,
1: चूहा वगैरह की कीड़े वगैरह लग जाते
0: हैं, बहुत लग जाते हैं।
1: तो
0: उसके लिए खुद को भी सेफ्टी करके जाना होगा मैडम, जैसे जहाँ मशरूम उगा रहे हैं वहाँ अपने को आपको सेफ्टी पहले कर ले और फिर जाके कुछ आइडिया नहीं।
1: हाँ अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि मशरूम का बीज, बीज तो होता है, तो बीज आप लोग कहाँ से लाते हैं?
0: बीज है, हम लोग का कृषि विभाग से ही आया था मैडम, रौलकिला से ही हम लोग लेकर आए थे और फिर सेकंड टाइम लेकर आए थे तो हम लोग ऑनलाइन ही मंगाए थे।
1: अच्छा
0: जी, हाँ
1: तो आप

0: आपको क्या लगता है मशरूम उत्पादन करना बहुत
1: अच्छी है? हाँ अच्छी है मैडम। एक हाँ अगर उसे अच्छे ध्यान दिया जाए, ध्यान से अगर लेडीज लोग या कोई भी करते हैं मशरूम, उस पर पूरा ध्यान दिया जाए तो इनकम का जरिया बहुत ही अच्छा है मैडम। लेकिन वो मार्केट होना चाहिए।
0: हाँ।
1: मार्केट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैडम, मार्केट हम लोग को मिलना बहुत जरूरी है। हाँ मार्केट मिल गया तो हर चीज़ का सेलिंग अच्छा है। क्योंकि हम लोग जैसे उगाए थे मैडम तो काफ़ी थोड़ा कुछ वेस्ट भी चला गया था।
0: हाँ।
1: क्योंकि हम लोग का मार्केट सही नहीं मिल पाया था।
0: अच्छा।
1: और जैसे लोकल हम लोग काफ़ी बेचे भी हैं तो जैसे हर कोई, मतलब एक छोटी सी एरिया है, अगर घर घर में अगर मशरूम उत्पादन करते हैं उगाते हैं तो ऐसा मार्केट नहीं मिल पाएगा, ऐसा मार्केट नहीं मिलेगा। जैसे बाहर में हमको मार्केटिंग करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा।
0: हाँ।
1: तो उसके लिए हम लोग को एक करना
0: चाहिए।
1: हाँ
0: मार्केटिंग चाहिए।
1: हाँ बहुत बहुत ज़रूरी है मैडम मार्केटिंग। अच्छा। के लिए
0: वैसे यहाँ पर मशरूम का दाम क्या है, कैसे किलो देते हैं?
1: 240 रुपया केजी हम लोग बेचे हैं मैडम यहाँ मशरूम। हाँ। और भी यहाँ लोग जो बना रहे हैं अपने घर में वो भी 240 रुपया ही करके पर बेचे हैं।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ।
0: 240 रुपये किलो
1: जी,
0: मतलब ये अच्छी बात है।
1: जी जी,
0: कमाई का एक बहुत अच्छा जरिया है, बहुत अच्छा साधन है बिजनेस का, व्यवसाय का। तो हम चाहते हैं कि मशरूम का उत्पादन हर घर में हो, हर महिलाएं करें।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँगी यही कि मतलब जो महिलाएं काम करके जो फालतू बैठे रहती है, कुछ अपना वर्क करें, अपना इनकम करें, अपने ऊपर डिपेंड रहे, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है मैडम। कुछ भी ज़्यादा कॉस्ट पैसे उसे नहीं लगते हैं और बहुत
0: थोड़ी
1: ही कम
0: मेहनत,
1: थोड़ी सी मेहनत है और कम पैसे में बहुत अच्छा इनकम है मैडम।
0: जी हाँ।
1: बहुत अच्छा इनकम है। बस मैं कहूँगी कि मार्केट बेटर, मार्केट
0: हाँ,
1: अच्छा
0: हाँ,
1: होना चाहिए।
0: जी हाँ। तो हमारी और बहनों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे अपनी तौर पर?
1: हाँ मैं देना ये चाहूँगी कि कुछ भी काम करें तो लगन से करें, मेहनत से करें, और कुछ भी उसमें लगन और मेहनत बहुत ज़रूरी है। और धीरे धीरे ही कुछ डेवलप होता है, ना कि एक बार कर लिए, अगर नहीं इम्प्रूव हो रहा है, नहीं डेवलप हो रहा है तो उस चीज़ को छोड़िए नहीं, आगे बढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए कि आज नहीं कल नहीं, दो दिन बाद तो ज़रूर, नेक्स्ट टाइम ज़रूर अच्छा होगा होगा।
0: हाँ आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई बहनों को, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया।
1: धन्यवाद मैडम, धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया मैडम।
2: अभी आपने सुना भेंट वार्ता हैडलूम एवं मशरूम की खेती। भेंट वार्ताकार थी सुशीला कुमारी, उनसे बातें कर रही थी आशा पिंगवा। और आइए अब सुनते हैं श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार के स्वर में फिल्म गुरु का ये गीत।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का कार्यक्रम विविधा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म खाकी के इस गीत से, अर्नब चक्रवर्ती के स्वर में।

अभी आपने सुना फिल्म खामोशी का ये गीत कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू के आवाजों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म कोई मिल गया। कोई मिल गया का ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: अभी आपने सुना ये जरूरी संदेश। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चाईबासा से फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म कृष्णा से अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में।

अभी आपने सुना फिल्म बाजीगर का ये गीत? अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजने वाले हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: उमंग, उमंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: घड़ी की सुइयां कभी नहीं रुकती, समय भी किसी का इंतजार नहीं करता, जो हर पल का

0: सम्मान करता है, भाग्य भी उसी का साथ देता है। समय बहुत अनमोल है, उसकी कद्र करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर संदेश के लिए, जिसने सच में हम सबको समय का महत्व समझाया। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता के साथ साथ डिंपल देवांगन।
0: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
1: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
0: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी।
0: सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से।
1: श्रोताओं एक बार फिर से करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: जी
1: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी कुछ ऐसे शब्दों की जो हैं तो हिंदी, संस्कृत और उर्दू के, लेकिन अब वे विश्व की कई भाषाओं में विशेषकर अंग्रेजी में इस्तेमाल किए जाते हैं।
0: आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं कुछ और शब्दों को जो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं, लेकिन अब दुनिया भर में प्रयोग में लाए जाते हैं। श्रोताओं, आपने बंगलो यानी बंगला शब्द अवश्य सुना होगा। शायद ही कोई सोचे कि ये शब्द भारतीय है। अक्सर ऐसा लगता है कि ये शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन तथ्य कुछ और है।
1: जी श्रोताओं, तथ्य ये है कि अंग्रेजी का बंगलो शब्द बंगला या बांग्ला से निकला है।
0: जी।
1: इसका अर्थ था बंगाल शैली का मकान। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में जब देखा कि भारत के बंगाल क्षेत्र में एक मंजिला चौड़े बरामदे वाले घर गर्मी के मौसम के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं,
0: जी।
1: तो उन्होंने भी अपने रहने के लिए इसी प्रकार के मकान बनवाए और उन मकानों को उन्होंने बंगलो कहना शुरू किया। धीरे धीरे ये शब्द पूरे ब्रिटिश साम्राज्य और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तो श्रोताओं, जानकारी ये थी कि बंगला शब्द बांग्ला शब्द से निकला है।
0: जी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अनेक देशों में आज भी जहाँ जहाँ ब्रिटेन का प्रभाव रहा, एक मंजिला स्वतंत्र मकान को बंगलो ही कहा जाता है।
1: आशा है श्रोताओं कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर बड़ी रोचक लग रही होगी, है ना? आइए अब सुनते हैं एक और नया शब्द और वो शब्द है खाकी। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस और सेना की वर्दी का प्रसिद्ध रंग खाकी कहाँ से आया?
0: तो हम आपको बता देते हैं, ये शब्द फारसी उर्दू के खाक शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धूल, मिट्टी या राख। तो जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में खाकी शब्द कहाँ से आया।
1: होता ये था कि भारत में अंग्रेज सैनिकों की सफेद वर्दी बहुत जल्दी गंदी हो जाती थी।
0: जी,
1: इसीलिए उन्होंने धूल जैसे भूरे रंग की वर्दी पहननी शुरू की। ये रंग इतना उपयोगी सिद्ध हुआ कि बाद में पूरी ब्रिटिश सेना और फिर अनेक देशों की सेनाओं तथा पुलिस ने भी इसे अपना लिया।
0: जी,
1: इसलिए आज खाकी केवल एक रंग ही नहीं बल्कि अनुशासन और सेवा का प्रतीक भी माना जाता है।
0: और अब बात करते हैं एक और बहुत प्रचलित शब्द की। शब्द है लूट। अंग्रेजी का लूट शब्द भी भारत से गया है। ये शब्द हिंदी के लूट या संस्कृत के लुंट शब्द से संबंधित है। इसका अर्थ है छीन लेना या लूट लेना।
1: श्रोताओं, अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज लोग अधिकतर जज, सैनिक या प्रशासनिक अधिकारी होते थे।
0: जी।
1: न्याय करने की प्रक्रिया में या प्रशासनिक मसलों में अंग्रेज अक्सर ये शब्द भारतीयों द्वारा सुनते थे।
0: जी।
1: उन्होंने इस शब्द को यानी लूट शब्द को अपनी भाषा में अपना लिया।
0: जी।
1: आज अंग्रेजी समाचारों, फिल्मों और पुस्तकों में लूट शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में होता है।
0: और अब लेते हैं दो और शब्द जिनसे सभी परिचित हैं। वो शब्द हैं योग और गुरु। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ योग शब्द न सुना हो। योग शब्द संस्कृत धातु युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना।
1: श्रोताओं, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की जीवन पद्धति है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, जिसके बाद ये शब्द पूरी दुनिया में और अधिक लोकप्रिय हो गया। इसी प्रकार से गुरु शब्द भी संस्कृत से आया है।
0: आज भारतीय अंग्रेजी में ये प्रचलन हो चला है कि किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी गुरु,
1: मार्केटिंग गुरु
0: या म्यूजिक गुरु।
1: श्रोताओं, दूसरी भाषाओं में शब्दों का यह स्थानांतरण भारत की ज्ञान परंपरा का विश्व पर गहरा प्रभाव दर्शाता है।
0: जी, तो प्रिय श्रोताओं, भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती बल्कि संस्कृति की वाहक भी होती है। जब किसी देश के शब्द दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचते हैं तो वे अपने साथ उस देश का इतिहास, संस्कृति और जीवन दर्शन भी लेकर जाते हैं। जिस भाषा के शब्द दुनिया अपनाने लगे, समझिए उस संस्कृति ने दुनिया को कुछ अमूल्य दिया है।

0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। तो अब हो जाइए तैयार आज के प्रश्न के लिए। हमारा आज का प्रश्न है, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
0: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: जी
0: श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, नदी का सफर।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में नदी की यात्रा के बारे में बताते हुए उसके उद्गम, प्रवाहित होने के क्षेत्रों, जलप्रपात बनने और अंततः समुद्र में मिल जाने के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है।
2: नमस्कार साथियों, कल कल करती नदियाँ धरती की नसों में बहता हुआ जीवन है जो हर प्राणी को जीवन दान देती है।
3: नदियाँ प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं, जिनकी गोद में न जाने कितनी मानव सभ्यताएं पनपी, फूली फली और विकसित हुई। नदियाँ न केवल जल का स्रोत हैं, बल्कि जीवन, संस्कृति और सभ्यताओं की आधारशिला हैं। अक्सर एक जिज्ञासा हमारे मन में उठती है कि नदियों का उद्भव कैसे हुआ, तो आइए सुनते हैं एक रोचक कहानी, नदी का सफर।
2: एक समय था जब पृथ्वी पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ये लगभग 20 लाख वर्ष पहले की बात है। इस काल को हिमयुग यानी आइस एज कहते थे। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ा, बर्फ पिघलने लगी थी और पेड़ पौधे भी उगने लगे थे।
3: इस तरह से हजारों वर्ष बीत गए। हिमालय पर्वत पर कहीं एक बर्फ की चोटी थी और वहीं रहती थी एक चंचल और चमकदार बर्फ की बेटी, नाम था हिमशिला। वो बहुत बड़े ग्लेशियर यानी हिमनद में रहती थी।
2: एक दिन सूरज ने मुस्कुरा कर कहा,
4: पुत्री हिमशिला, अब तुम्हें धरती पर उतरना होगा। वहां नीचे बहुत से जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें तुम्हारे जल की आवश्यकता है।
5: क्यों, मैं क्यों नीचे जाऊं? मैं तो यहाँ ऊपर बहुत खुश हूँ। बादल मेरे साथ आँख में चौली खेलते हैं। यहाँ सब कुछ कितना शांत है, मैं नीचे क्यों जाऊं?
4: पुत्री, ऊपर रहोगी तो केवल ठंडी बर्फ बनकर यहीं पड़ी रह जाओगी। हमें यूं ही पड़े नहीं रहना चाहिए, किसी के काम भी तो आना चाहिए।
5: अच्छा,
2: वो सोच में पड़ गई। फिर सूरज ने अपना ताप और बढ़ाया। फिर धीरे धीरे हिमशिला ने मन बना ही लिया पर्वत से उतरकर नीचे जाने का। वो एक छोटी सी धार बन गई और बहने लगी तीव्र गति से ढलान की ओर।
3: रास्ते में कई भूमिगत जलधाराओं ने भी यात्रा में उसका साथ दिया। उसकी गति और बढ़ गई। अचानक उसने महसूस किया, कोई उसे खींच रहा है। वो डर गई और बोली,
5: अरे, अरे ये कौन मुझे नीचे खींच रहा है?

0: पर्वत पर तपस्या करने वाले एक बूढ़े साधु ने हंसकर कहा,
1: पुत्री, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। डरो नहीं, धरती माँ तुम्हें अपने पास नीचे बुला रही है ताकि उसे जीवन मिल सके।
2: वो खुशी खुशी बहने लगी।
3: देखो देखो देखो देखो, जरा देखो, अरे ये क्या, और भी इतनी सारी छोटी छोटी धाराएं बहती हुई आ रही हैं मेरी तरफ। हाँ देखो ना, मेरी तरफ।
2: ये सभी आपस में मिल गईं और सभी मिलकर बहने लगी। अब उन्होंने नदी का रूप धारण कर लिया था। कहने लगी,
0: सखी, अब हम सब मिलकर बहेंगी, हम सब एक दूसरे की सहायक हैं।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब मिलकर बहेंगी।
0: हाँ।
2: अब मिलकर बहने के कारण उनकी बहने की ऊर्जा और बढ़ गई। फिर क्या था, छोटी सी जलधारा ने अब एक विशाल नदी का रूप धारण कर लिया। मार्ग में कई पत्थर मिले, चट्टाने मिली, मार्ग रोकने की भी कोशिश की, लेकिन नदी को तो अब बस एक ही धुन थी,
3: मुझे तो बस आगे बढ़ना है, आगे और आगे।
2: एक दिन की बात है, बहते बहते नदी एक बहुत ऊंची चट्टान के पास आ गई। नीचे देखा तो बहुत गहराई थी, उसे बहुत डर लगा। क्षण भर के लिए वो रुक गई और सोचने लगी,
3: हाँ अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं।
2: उसने दाएं बाएं देखा, तब पर्वत ने कहा,
1: कूद जाओ ना।
3: कूद जाऊं?
1: डरो मत।
3: हाँ?
1: धरती माता तुम्हें अपनी बाहों में ले लेंगी।
3: अच्छा, तो कूद जाती हूँ। कूद गई।
2: लोगों को खुश देखकर नदी को बड़ी खुशी हो रही थी। और हाँ, एक बात और है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो रुकी नहीं, अपने लक्ष्य की ओर बहना जारी रखा। कई बार रास्ते में या पहाड़ों पर वर्षा हुई तो उसका जल प्रवाह और भी बढ़ गया।
0: फिर क्या था, भला भूमिगत झरने भी क्यों चुप रहते, उन्होंने भी पूरा योगदान दिया और वो भी शामिल हो गए नदी की इस रोमांचक यात्रा में।
2: वो आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसने कई गांव देखे जहां लोग और पशु पक्षी प्यासे थे। पेड़ पौधे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सारे खेत सूख गए थे। नदी बोल उठी,
3: अब समझी, सूरज दादा ठीक ही कहते थे, मेरा बहना दूसरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां जहां मैं जाती हूँ वहां हरी हरी घास उगाती है, पेड़ खुशी से झूमने लगते हैं, पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं, लोग मुझे माता कहते हैं, मेरी पूजा करते हैं। न जाने कितनी सभ्यताओं को मैंने अपनी गोद में

0: माँ धरती का गुरुत्वाकर्षण मुझे यहाँ तक बहा कर ले आया।
1: पुत्री, तू बहती रही, इसीलिए जीवन चलता रहा।
0: अच्छा,
1: तू रुकती तो हाँ? जीवन चक्र ही रुक जाता। चलती रहो।
0: मैं चलती रहूंगी। हाँ, मैं हमेशा चलती रहूंगी।
2: चरैवेति, यही तो जीवन है।
3: चरैवेति, नदियों का संदेश यही महान। चलते रहना कर्तव्य पथ पर, हो यही बस तुम्हारे जीवन की पहचान।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम नदी का सफर। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विनीत कुमार शर्मा, कलाकार पूनम एस कुदुसिया, सुनील लोहिया, शशांक शर्मा और बबीता त्रिपाठी, आलेख अजीत होरो, संपादन एवं निर्माण कुसुमलता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: शिक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है हेलेन केलर।
2: इस कार्यक्रम में दिव्यांग अमेरिकी महिला हेलेन केलर के जीवन और दिव्यांगता से उनके संघर्ष और विजय की गाथा का सप्रसंग उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार वे विश्व की करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं।

0: आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका नाम है हेलन केलर।
1: हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब ये 2 साल की हुई तो बहुत बीमार पड़ी और
2: डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना?
3: मिसेस केलर, मुझे बेहद अफसोस है, पर हेलन अब कभी देख, बोल और सुन नहीं पाएगी। हिम्मत रखिए मिसेस केलर, हिम्मत रखिए।
0: हेलन की शिक्षा उसकी मां के लिए अब एक चुनौती बन गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेलन की देखरेख और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अनुभवी अध्यापिका को चुना, जिनका नाम था मिस सेलिवन।
4: आओ हेलन, मेरे पास आओ। हाँ, इधर। मैं हूँ सेलिवन। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, बहुत सारे काम एक साथ करेंगे। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, देखो मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, ऐसे। दोस्त हूँ ना तुम्हारी। शाबाश।

0: इस तरह एनी सेलिवन ने हेलन को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो भी शब्द हेलन को सिखाना होता वो उसके हाथ पर लिख देती थी। इस तरह पढ़ते हुए हेलन ने सबसे पहले गुड़िया शब्द सीखा।
1: हेलन, आओ आज तुम्हें एक शब्द लिखना सिखाती हूँ। हेलन है गुड़िया जैसी, तो हम लिखते हैं तुम्हारे हाथ पर गुड़िया। लाओ हाथ दो। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया।
2: अचानक एक दिन बाग की सैर करते हुए पानी का नल देखकर मिस सेलिवन के मन में एक विचार आया।
1: अरे ये पानी का नल, हाँ, अगर पानी का स्पर्श कराकर हेलन के दूसरे हाथ पर पानी लिखूं तो कितना अच्छा होगा। अभी देखती हूँ। ये रहा पानी का नल। हेलन, हेलन, अपना हाथ मुझे दो। हाँ, शाबाश। अच्छा, अब अपनी हथेली खोलो। ऐसे, हाँ। अच्छा, अब मैं एक शब्द लिखूंगी तुम्हारी हथेली पर। देखो मैं लिख रही हूँ, पानी। हाँ हाँ, शाबाश। पानी, पानी। हाँ, नी। हाँ, पानी। एक बार फिर कोशिश करो। हाँ,
0: यूं शुरू हुआ हेलन का पढ़ना। अब तो वो चीजों को छू छू कर इशारे से उनके नाम पूछने लगी।
2: जल्दी ही वो अपनी अध्यापिका के मुंह और गले को छूकर बोलना भी सीख गई, यहाँ तक कि वो संगीत का भी आनंद लेने लगी।
1: मिसेस केलर
3: जी,
1: हेलन तो अब बहुत कुछ सीख गई है। संगीत का आनंद भी लेने लगी है। आप तो खुद इतना अच्छा पियानो बजाती हैं। आज हेलन के लिए मेरे लिए पियानो बजाइए ना।
3: जरूर, मैं अभी बजाती हूँ।

0: सिर्फ इतना ही नहीं, हेलेन उभरे अक्षरों यानी ब्रेल लिपि को पढ़ने लगी। वो अंग्रेजी के अलावा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीख गई।
1: यही नहीं, वो तैराकी, घुड़सवारी और नाव चलाने में भी रुचि लेती। हेलेन ने अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय रेडक्लिफ से स्नातक परीक्षा विशेष सम्मान से उत्तीर्ण की।

0: हेलेन ने आत्मकथा लिखी जो एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपी। दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है।
1: बाद में उन्होंने 10 किताबें और लिखी। वो अंधेपन, बहरेपन और उनसे जन्मी समस्याओं के बारे में अखबारों में लेख लिखती रहीं। अमेरिका और विदेशों में अंधेपन के लिए काम करने वाली संस्थाओं से वो जुड़ गईं।
0: उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की। सभी जगह हेलेन केलर को भारी सम्मान मिला। सन 1955 में वो भारत आईं। दिल्ली में विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया गया।
1: '64 में हेलेन केलर को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया।

0: हेलेन केलर की सफलता का रहस्य था तमाम कठिनाइयों के बीच आनंद की तलाश। हेलेन अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत थी, है और हमेशा रहेंगी।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम हेलेन केलर, और श्रोताओं इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 होने को हैं। आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

0: दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। इस सुविचार के साथ करते हैं आज के जोहार रांची कार्यक्रम की शुरुआत। और आज के सफर में मैं हूँ आपकी दोस्त रजनी और मेरे साथ है
1: छवि।
0: हमारा प्यार भरा जोहार नमस्कार। श्रोताओं, आज बड़ा ही पावन दिन है। आज हम मना रहे हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती। इस दोहे के साथ के द्वारा गोस्वामी जी ने हमें ये समझाया है कि दया ही सभी धर्मों और अच्छे कर्मों की जड़ है, जबकि अहंकार सारे पापों की जड़ है। तुलसीदास जी कहते हैं, जब तक शरीर में प्राण है तब तक हमें दया का भाव नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं ना छवि?
1: बिल्कुल। और अर्थात हमें किसी भी प्रकार के घमंड, अहंकार या अवगुणों के से दूर रहते हुए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए।

0: चाहिए और दया के भाव को अपने दिल में बनाए रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, यानी कि अगर हम अपने दिल में दया रखेंगे सभी प्राणियों के प्रति, चाहे वो जीव जंतु हों या फिर इंसान हो, पेड़ पौधे हों, तो हमारे में परमात्मा के द्वारा दी हुई शक्ति का एक संचार होगा और उस शक्ति के द्वारा हम अपने जीवन की जितनी भी कठिनाइयां हैं उसको पार करने की शक्ति प्राप्त करेंगे।

0: इस प्यारे से गाने के बाद आइए श्रोताओं, अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने आज के दिन जन्म लिया था। हर जन्म अपने साथ एक नई कहानी लेकर आता है और कुछ जन्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी ही नहीं बल्कि समाज और देश की दिशा को भी प्रभावित करते हैं।
1: बिल्कुल, और आज के दिन किन किन महान हस्तियों ने इस दुनिया में कदम रखा और अपने कर्मों से इतिहास में अपनी जगह बनाई, तो आइए जान लेते हैं इनके बारे में।
0: आज के दिन 1946 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का जन्म हुआ था। सत्य नडेला भारतीय अमेरिकी व्यवसायी और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, इनका जन्म भी आज के दिन 1967 में हुआ था।
1: आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म भी आज के दिन यानी 19 अगस्त को हुआ था। ये महान हिंदीकार और विद्वान थे।
0: ऑर्विल राइट, अमेरिकी विमानन अग्रणी जिन्होंने पहले सफल हवाई जहाज का सह आविष्कार किया था। कोको शनेल, प्रसिद्ध फ्रांसीसी फैशन डिजाइनर और व्यवसायी और महिला। साथ ही आज सुधा मूर्ति जी का जन्म दिवस भी है। 1950 ईस्वी में इन्होंने आज ही के दिन जन्म लिया था, जो कि एक प्रख्यात भारतीय शिक्षाविद, लेखिका और परोपकारी भी हैं।
1: और साथ ही डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका भी जन्म आज ही के दिन यानी 19 अगस्त 1918 को हुआ था। ये भारत के 9वें राष्ट्रपति थे।
0: बहुत ही अच्छी जानकारी। मधुरिमा तुली 1988 ईस्वी में जन्मी भारतीय टेलीविजन और फिल्म की अभिनेत्री हैं। नंदना सेन 1967 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ये भी भारतीय अभिनेत्री और लेखिका है। साथ में जोहार रांची कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया कि आज हम मना रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास की जयंती और उनकी ये 529वीं जयंती है, तो सभी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा था। तो सबसे खयाम, जो कि 2019 ईस्वी में इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था, ये भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध और दिग्गज संगीतकार थे।
1: साथ ही जगन्नाथ मिश्रा, भारतीय राजनीतिज्ञ और बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, इनका भी निधन आज के दिन हुआ था। और
0: ऑगस्टस सीजर, रोम के पहले सम्राट और रोमन साम्राज्य के संस्थापक, इनका जन्म भी इन्होंने भी आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा था। ब्लेज पास्कल, जो कि प्रसिद्ध फ्रांसीसी गणितज्ञ, भौतिकविद और दार्शनिक थे, इन्होंने भी आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। और एक फिल्मों के जाने माने कलाकार और हास्य अभिनेता, बहुत ही बहुमुखी आया प्रतिभा के धनी उत्पल दत्त, इनका निधन भी 1993 ईस्वी में आज ही के दिन हुआ था। ये हिंदी तथा बंगला फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और नाटककार थे। इनका जन्म 29 मार्च 1929 ईस्वी को हुआ था। ये मुख्य रूप से बंगाली थिएटर में काम करते थे और बंगाली एक्टर थे, फिर उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम करना शुरू किया। इन बहुत सारे इनकी फिल्में हैं छवि, जो हमें बहुत ही गुदगुदाते रही हैं,
1: बहुत ही गुदगुदाते हैं।
0: जैसे कि
1: एक और फिल्म जो कि बहुत ही हास्य वाली फिल्म थी, वो उनका नाम था गोलमाल,
0: और वो 1979 में जो आई थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये खास लोकप्रिय फिल्म रही है और आज तक उस फिल्म को पसंद किया जाता है।
0: हाँ बिल्कुल,
1: किरदार को, उस फिल्म में उनके किरदार को
0: आज भी पसंद किया जाता है। मतलब जिस भी फिल्म में ये उत्पल दत्त साहब आते थे ना, अपनी हास्य जो टाइमिंग है, कॉमिक टाइमिंग के कारण पूरी फिल्म प्रसिद्ध हो जाती थी और हमें बहुत ही ज्यादा उनकी फिल्में गुदगुदाती। आज भी अगर वो फिल्में उनकी देखने बैठे ना, तो मैं कहती हूँ कि हंसते हंसते हम लोटपोट
1: हो जाएंगे। तो आज भी अच्छे लगते हैं।
0: हाँ, हम उन्हें याद करते हैं आज भी, तो क्यों ना उन्हीं की फिल्म गोलमाल से हम एक गाना सुनाए अपने श्रोताओं को।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर।

0: बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: विराम के बाद सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है कार्यक्रम जुहार रांची में। तो अब छवि, कुछ अपने श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगी अब आप?
3: अब श्रोताओं को आज के कार्यक्रम में हम आज का इतिहास बताना चाहते हैं।
2: बिल्कुल।
3: और देखिए, इतिहास हर तारीख अपने भीतर इतिहास की कोई न कोई कहानी समेटी होती है।
2: हाँ बिल्कुल, ये सही कहा आपने।
3: कुछ घटनाएं हमें गौरव का एहसास कराती है तो कुछ हमें बीते समय से सीख लेने की प्रेरणा देती है। तो क्यों ना आज जोहार रांची के इस खास अंक में खोलते हैं इतिहास के पन्ने और जानते हैं आज यानी 19 अगस्त का दिन इतिहास के लिए क्यों है खास। तो मैं बता दूं, 19 अगस्त 1666 को छत्रपति शिवाजी महाराज के आगरा से निकलने की घटना इतिहास में दर्ज है। समकालीन दस्तावेजों में 18 अगस्त को उनके आगरा से निकल जाने की खबर दर्ज होने का उल्लेख मिलता है, जबकि कुछ ऐतिहासिक विवरण 19 अगस्त की तारीख बताते हैं।
2: 1919 ईस्वी में ही अफगानिस्तान ने ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की पूर्ण घोषणा की थी। 1942 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तर प्रदेश का बागी बलिया जिला अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ था और भुवनेश्वर आधिकारिक तौर पर उड़ीसा राज्य की राजधानी सन 1949 ईस्वी में आज ही के दिन बना था। 1960 ईस्वी में सोवियत संघ ने स्पुतनिक 5 अंतरिक्ष यान में बेलका और स्त्रेलका नाम के कुत्तों को अंतरिक्ष में भेजा जो सुरक्षित वापस लौटे। बहुत ही गर्व का क्षण। सही कहा आपने कि इतिहास हमें कुछ बीते पन्नों से सीख लेने की प्रेरणा देता है तो कुछ हमें गर्व का एहसास भी कराता है। अब मेरे ख्याल से अपने श्रोताओं को हम मौसम की भी जानकारी दे दें। मैं तो बिल्कुल भींगते हुए ही आई हूँ छवि, आप आ रही थी तो कैसा मौसम था सुबह में?
3: उस वक्त तो मौसम ठीक था, वर्षा रुकी हुई थी, बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि कभी भी बारिश।
2: हाँ बिल्कुल, अभी पिछले 3 दिनों से हम देख भी रहे हैं कि लगातार जमाजम बारिश।
3: आने वाले समय में भी, आने वाले दिनों में भी इसी तरह के अनुमान है भारी बारिश की।
2: बिल्कुल, झारखंड में तो मौसम विभाग जो है उन्होंने भारी बारिश का अलर्ट दिया है।
3: बिल्कुल, और झारखंड समेत झारखंड के जितने भी राज्य हैं उनमें सभी भारी बारिश के येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो सतर्क रहने की आवश्यकता है।
2: हाँ बिल्कुल,
3: और अपने सेहत का ख्याल रखें।
2: बिल्कुल,
3: बारिश से बचें ताकि आप बीमार ना पड़े, ठंड के से बचे और खुले जगहों पर ना रहें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी आप अपने घर से निकले, वरना अपने घर में ही सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भारी बारिश का येलो अलर्ट जब जारी किया जाता है तो लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता
2: है,
3: क्योंकि मैसेज में भी आते हैं, टीवी में भी आपने देखा होगा कि लोगों से अपील की जाती है कि जहाँ तक हो सके अपने घर।
2: हाँ बिल्कुल, हमारी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ये अलर्ट जारी किया जाता है, तो हमें अलर्ट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रांची में बारिश के साथ साथ मौसम विभाग ने यह भी कहा कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा चल सकती है और पिछले दिनों बारिश से सड़कों पर जब पानी भर गया था उसके कारण उन्होंने भी अलर्ट जारी किया है। तो हमें जो है छाता रेनकोट को साथ लेकर चलना है और जब बिजली चमक रही है तो हमें पेड़ के नीचे नहीं रुकना चाहिए। ये सब बहुत ही जरूरी बातें हैं और अपने साथ साथ हमें अपने पशु पक्षियों मवेशियों का भी ध्यान रखना चाहिए। उस वक्त ये कोशिश करके खुले क्षेत्र में हम ना रहे, खेतों में ना रहे, वरना बिजली गिरने की घटनाएं काफी होती हैं, तो हमें इसका ध्यान रखना है। अगर हम इन सब बातों को ध्यान रखें ना तो हर मौसम बड़ा ही सुहावना लगता है और बड़ा ही प्यारा लगता है।

0: बहुत ही खूबसूरत सा गाना हमने सुना और अपने श्रोताओं को सुनाया मौसम पे। मैंने पहले भी कहा था कि मौसम में अगर हम ध्यान रखें ना तो सारा मौसम हमें बहुत ही सुहावना लग सकता है और हम एंजॉय हाँ, कर सकते हैं।
1: मौसम बने भी तो इसलिए है आनंद लेने के
0: आनंद
1: लिए
0: लेने के लिए।
1: तो रजनी एक बात मैं बताऊं अपने श्रोताओं को और आपको भी, देखिए रांची में बारिश और उमस के मौसम में स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना जरूरी
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल।
1: इस मौसम में मच्छरों से होने वाली बीमारियों, दूषित पानी से होने वाले संक्रमण और त्वचा संबंधी परेशानियों का जोखिम बहुत बढ़ सकता है, यानी कि बढ़ ही जाता है। सरकारी स्वास्थ्य सलाह भी देते हैं कि साफ पानी, स्वच्छ भोजन और मच्छरों की रोकथाम करनी चाहिए।
0: हाँ, क्योंकि मच्छरों से इस वक्त
1: हाँ,
0: बहुत सारे रोग होने की संभावना
1: बहुत ज्यादा
0: रहती है।
1: और नए नए हो भी रहे हैं। और देखिए बारिश के मौसम में हमें क्या नहीं करना चाहिए, साफ और सुरक्षित पानी तो पीने ही चाहिए। पानी की गुणवत्ता पर अगर संदेह हो तो उसे उबाल कर और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करें। घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। कूलर, गमले, पुराने टायर, डब्बे आदि नियमित रूप से खाली और साफ करें। मच्छरों से बचने के लिए पूरी बांह के कपड़े और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। भोजन ढक कर रखें और फल सब्जियों को अच्छी तरह धो कर खाएं। बारिश में भीग जाए तो गीले कपड़े ज्यादा देर ना पहने और शरीर को पूरी तरह से सुखा के तभी सूखे कपड़े पहने और पूरी नींद ले। संतुलित भोजन करें और ताजा भोजन करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिए।
0: और साथ में मैं अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहेंगे कि अभी स्ट्रीट फूड से खास करके वो दूर रहें।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: और साथ में अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का पूरा प्रयास करें। इसके लिए वो हल्दी, अदरक या विटामिन सी युक्त चीजें जैसे नींबू, खट्टी चीजें, आंवला वगैरह ले सकते हैं। और एक और बात है छवि कि जब भी अक्सर हम देखते हैं कि बारिश में कितना भी बचाव कर लें, हम रेनकोट लें या छाता लें, हम थोड़ा बहुत भींग ही जाते हैं। तो अगर हम भींग जाते हैं तो घर आने के बाद हमें हाथ पैर को साबुन से अच्छी तरह धो लेना चाहिए और गुनगुने पानी से एक बार नहा ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गीले, क्योंकि गीले कपड़े ज्यादा देर तक पहनकर रखने भी नहीं चाहिए। तो इसमें क्या होता है ना कि चाहे बच्चे हो या बड़े हो, किसी को भी सर्दी होने की और फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा हो ही जाता है,
1: ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपको देखिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। खुले में रखा और संदिग्ध जो साफ सफाई वाला खाना है नहीं खाना,
0: मतलब
1: चाहिए।
0: जिसमें डाउट है कि चलो हाँ, ये सफाई है कि नहीं है, खुला में रखा हुआ
1: वो
0: है।
1: डाउट वाले खाने कहाँ हमें मिलते हैं, जैसे बरसात के दिनों में ऐसा
0: स्ट्रीट
1: होता है,
0: फूड स्ट्रीट वगैरह में
1: नजर जाते हैं और वो एक तरह से हमें अट्रैक्ट भी करते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल। उनकी रंग, उनकी जो रंग होती है ना, रंग बिरंगी और खुशबू, सही में आप घर में वो खाना बनाया तो उसकी खुशबू नहीं आएगी लेकिन बाहर वो अट्रैक्ट हो जाता है,
1: वो बहुत ज्यादा आने लगते हैं तो हम अपने आप को
0: रोक नहीं पाते
1: हैं। तो ऐसे में अपने आप को थोड़ा सा ये संयम बनाए रखिए और घर के आसपास कई दिनों तक पानी तो जमा ना ही होने दे। तेज बुखार या अस्वस्थ लगातार
0: अगर आप हैं तो उसे नजरअंदाज
1: ना करें। डेंगू में अचानक तेज बुखार, सर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, शरीर जोड़ों में दर्द, उल्टी आदि हो सकते हैं। ऐसे लक्षण हो तो हमें क्या करना चाहिए रजनी?
0: हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और अपने श्रोताओं को भी ध्यान रखना चाहिए, तभी तो हमारे कार्यक्रम को सुन पाएंगे। तो श्रोताओं इन बातों को ध्यान रखिए। आज हमारे पास समय की कमी है क्योंकि आज का साथ हमारा यहीं तक है। तो आप अपना ध्यान रखें, स्वच्छता बनाए रखें, सफाई बनाए रखें और इसी के साथ मुझे यानी रजनी और छवि को दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।

मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए। इसमें आज आप सुनेंगे भेंटवार्ता दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन के रांची डिवीजन के डीआरएम, साथ ही ये संभागीय रेलवे प्रबंधक भी हैं, श्री करुणा निधि सिंह। इनसे बातचीत कर रही हैं सिंधु मिश्रा। प्रस्तुति है प्रभु शरण की। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

श्रोताओं, आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं डीआरएम रांची श्री करुणानिधि सिंह सर का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कार्यक्रम

0: में नमस्कार सर।
1: नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरा जोहार। और रांची में, क्योंकि मैं रांची में आया हुआ हूँ, तो बहुत ही एक अच्छा जगह है रांची। तो मैं झांसी के सभी लोगों को, जितने भी श्रोता हैं हमारे आकाशवाणी के, सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो अपना समय निकाल के इसको सुन रहे हैं।
0: सर, रेलवे की जिम्मेदारियां आपके कंधों पे हैं और इससे जुड़ी हर उन चीजों को आपको देखना है, चाहे वो सुरक्षा की बातें हों या फिर उससे डेवलपमेंट की बातें हों। ये सारी चीजें आपकी जिम्मेदारियों के अंतर्गत आता है। लेकिन आज कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में। आपकी जन्मस्थली क्या रही और शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई?
1: देखिए, बहुत ही लंबा सफ़र है। मैं बिल्कुल भारत के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ हूँ, बिहार में वैशाली। आपने नाम सुना होगा, उस
0: जी।
1: वैशाली जिले का एक छोटा सा गांव है भगवानपुर करके, वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई। इनिशियल 5 साल जो है मैं गांव में ही रहा, और फिर बाद में मैं चला गया पढ़ाई लिखाई करने के लिए। मुझे अडॉप्ट किया गया था, अडॉप्टेड फादर थे मेरे, उन्होंने मुझे भिलाई में मिले गए अपने पढ़ाई लिखाई के लिए। मैं वहाँ पर रहा,
0: जी।
1: और पूरी जो मेरी स्कूलिंग है वो पूरी भिलाई की है, भिलाई स्टील प्लांट की है। मैं बहुत बड़ा ऋणी हूँ भिलाई स्टील प्लांट का, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी वहाँ पे, और जिसके कारण से कि मैं आगे बढ़ पाया। उसके बाद फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो थी इंदौर से की, एंड उसके बाद फिर MBA भी किया मैंने IIM बेंगलोर से। तो ये मोटा मोटी मेरा पढ़ाई लिखाई का, मैं ये कहूँगा कि मौका मिला मैं
0: जी।
1: इस, और जिसमें कि मैं कहता हूँ कि सरकारी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट हम सरकारी स्कूल में पढ़े,
0: जी।
1: पूरा का पूरा जो है 12वीं तक हमारा सरकारी स्कूल में ही निकला, और जो कॉलेज भी था वो भी अनुदान पे ही चलता था सरकार के। तो मैं कहूँगा कि सरकार का हम लोग को बनाने में पूरा का पूरा सहयोग जो है वो सरकार का है, और डेफिनेटली समाज का तो है ही है, माँ बाप हैं उसके पीछे। इन सब लोगों ने मिलके हमें यहाँ तक बनाया। इनफैक्ट हम जब बचपन में तैयारी करनी होती थी कुछ चीज़ों की, तो हम रेडियो को बहुत सुनते थे। इनफैक्ट BBC में सुनना और आकाशवाणी का न्यूज़ जो था हमारा बिल्कुल फैट आइटम था, बिल्कुल शायद ही कुछ चीज़ मिस हो जाती थी कभी भी।
0: बहुत बड़ी बात है और आकाशवाणी से लगाव आपका शुरू से रहा, ये जान के भी बेहद खुशी हुई। यहाँ पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि तरफ झुकाव आपका कैसे हुआ, इस ओर आने के लिए आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे?
1: मैं आपको ना बड़ी छोटी सी, क्योंकि हमारे गांव में काफ़ी लोग बाहर गए थे नौकरी करने, क्यों इसलिए गए थे क्योंकि हमारे गांव में एक इंटरगेज की लाइन थी जो कि सोनपुर, या कह ले उस जमाने में वो चलती थी गुवाहाटी से लेकर के सोनपुर, और सोनपुर के आगे बनारस तक जाती थी वो पूरी की पूरी लाइन। और उस एक लाइन ने जो है सभी लोगों को इस कंट्री के किसी किसी कोने में पहुंचाया काम करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, आज से करीब करीब 30 मैं 50 वर्ष का हो गया हूँ, 52 साल का हूँ, तो मैं आपको करीब करीब आज से 48 साल पहले की बता रहा हूँ बात। तो हमको उस ट्रेन से भिलाई जाने में, मुझे याद है कि हम पहले अपने गांव से हम जाते थे, पहले जाके जगह होता था वहाँ तक हम ट्रेन से जाते थे, स्टीम इंजन के ज़माने में मीटर गेज की ट्रेन से। फिर वहाँ से हम स्टीमर पकड़ते थे, और स्टीमर से फिर गंगा क्रॉस करके हम लोग पटना आते थे, और पटना से फिर हम दिन भर बैठते थे, और शाम को एक साउथ बिहार एक्सप्रेस चला करती थी वो भी स्टीम इंजन से। वो पटना से हमको टाटा लेके आती थी, टाटा में फिर हम सुबह से लेके शाम तक बैठते थे। फिर कलकत्ता से ट्रेन आती थी शालीमार मुंबई एक्सप्रेस, उसमें बैठ के फिर हम शाम को बैठते थे, फिर और सुबह पहुंचते थे हम भिलाई। तो करीब करीब 52 घंटे की हमारी ये जर्नी होती थी।
0: सही बात।
1: आज के डेट में वो जर्नी रह गई है मात्र 17-16 17 घंटे की। आप सीधे, और ट्रेन जो साउथ बिहार पहले इतने चंक में चलती थी, वो आज सीधे सीधे दुर्ग से लेकर के पूरी की पूरी आरा तक चलती है। तो आप बैठ जाइए एक बार, कहीं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, और आ जाइए। तो मेरा ये कहना कि रेलवे या कोई भी जो नेटवर्क होता है वो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
0: जी।
1: जब तक कि हम अल्टीमेटली हम मोबाइल नहीं होंगे तो हम दुनिया को देखेंगे कैसे, हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। इन सब को करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि रेल रोड, हमारे जो एयर कनेक्टिविटी है सारे बहुत अच्छे होंगे, तो हमारे लोगों को उतनी मोबिलिटी की आसानी होगी, कम समय में जगह को जा सकेंगे। तो रेलवे से मेरा बहुत खासा प्यार रहा शुरू से ही, क्योंकि मुझे लगा कि रेलवे के कारण ही हम जो है पहुंच पाए। हमारे पिताजी जो थे वो भिलाई से पहुंच भिलाई पहुंच पाए, वहाँ पे काम किया, और क्योंकि वो वहाँ पहुंचे

0: तो हम पहुंच पाए वहां पे आसानी से। और आज इतने सालों में, 40 सालों में कहां से कहां चला गया सिस्टम। अभी वो मीटर गेज भी खत्म होकर सारे ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो गए। अभी पहले वो हॉल्ट था, आज वो प्रॉपर स्टेशन बन गया है मेरे गांव का। सो इन 50 सालों में जो डेवलपमेंट हुए हैं, आज के बच्चों को शायद लगेगा कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं पूरे अपने मैप को देखता हूँ 50 साल में तो बहुत परिवर्तन हुआ है। एंड मैं विश्वास मानिए, मेरा मानना है कि आने वाला 50 साल भी जो भारत का बहुत अच्छा होगा। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे प्रधान माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो 2047 का जो कह रहे हैं कि विकसित भारत को ले जाएंगे, वो डेफिनेटली हम लोग बहुत बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे।
1: बिल्कुल। और सर मुझे तो लगता है जितनी तेजी से हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से जो सरकारी योजनाएं हम तक लाई जा रही हैं, पहुंचाई जा रही हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए भी हम उत्तरोत्तर लगे हुए हैं और निरंतर प्रयास जारी है। सर यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी कि अमृत भारत स्टेशन के लिए भी सरकारी योजनाओं के तहत कुछ स्टेशनों को चुना गया है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ी सी जानकारी दें।
0: देखिए ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है एक बहुत ही जो स्टेशन, उनका ये है कि स्टेशन उनका मानना था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक हब होता है और वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उस तहत उन्होंने पूरे भारतवर्ष में जो है सभी स्टेशन, कई स्टेशन को सिलेक्ट किया जहाँ पे उन्होंने कहा कि इसमें सारी बेसिक सुविधाएं जो होनी चाहिए वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अब सुविधाएं क्या क्या हो, मतलब स्टेशन का बिल्डिंग अच्छा हो, उसमें आने जाने के जो अराइवल और डिपार्चर का जो रास्ता है वो बहुत अच्छा हो, सारे दिव्यांगजन लोग जो हैं उसको यूज कर सके, तो रैंप की पूरी व्यवस्था हो, लिफ्ट हो उस स्टेशन पे, उस स्टेशन पे कम्युनिकेशन का मतलब सारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम बहुत दुरुस्त हो, वेटिंग हॉल हो वहाँ बैठने को, आपको वहाँ पर ठंडा पानी भी मिल सके अच्छे से, सारे प्लेटफॉर्म जो हों बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, बिजली के सारे पंखे चल रहे हों। सो क्योंकि अल्टीमेटली स्टेशन जब तक अच्छा नहीं होगा तो लोग कैसे फील करेंगे कि हम वाकई में जो है हम लोग तरक्की कर और आगे बढ़ रहे हैं। इस तहत रांची मंडल में भी करीब हमने 15 स्टेशन लिए हैं। उसमें से आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है 2 स्टेशन हमारे डिवीजन के 2 स्टेशन का उन्होंने भी उद्घाटन किया, पिस्का और मूरी स्टेशन। उसके पहले ऑलरेडी जो है गोविंदपुर स्टेशन एक ऑलरेडी उन्होंने इनॉग्रेट कर लिया था। तो हमारे 15 में से 3 स्टेशन जो है ऑलरेडी इनॉग्रेट हो चुके हैं और सभी लोगों ने, इनफैक्ट जो वहाँ के जितने लोग थे, अल्टीमेटली हमें काम हमने अच्छा किया है खराब किया वो तो वहाँ के जो यूजर हैं वो उसको बताते हैं। मैं तो कहूँगा कि मेरी चीज़ हमेशा अच्छी है, लेकिन अगर यूजर नहीं कहेगा कि अच्छी है तो हम उस दिन भी गए थे और मीडिया के लोग भी थे और काफ़ी लोग थे, सबने बहुत सराहना की वहाँ के साहब ये स्टेशन अगर आपने पहले देखा होता आज से 2-3-4 साल पहले तो, और आज स्टेशन को देख कर लग रहा है कि एक डिफरेंस दिखता है, मतलब जो वहाँ के लोग हैं उनको एक डिफरेंस दिखता है और उन्होंने बहुत खुशी व्यक्त की। इनफैक्ट उन्होंने सारा वो प्रोग्राम को मैं कहता हूँ कंडक्ट किया, हम तो सिर्फ एक माध्यम बन गए थे। सो 3 स्टेशन हमारे हो चुके हैं, इसके अलावा अभी और जो बचे हुए 12 हैं उसमें से भी 2 स्टेशन का काम कंप्लीट हो गया है, रामगढ़ और लोहरदगा का काम कंप्लीट हो चुका है और बाकी जो बचे हुए 10 स्टेशन हैं वो भी 3-4 जो हैं वो 1-2 महीने के अंदर जो है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। सो कुल मिला के मुझे लगता है 27-28 के अंदर तक सारे के सारे काम हो जाएंगे। 2 इसमें से जो मेजर काम है वो हटिया और रांची के जो स्टेशन का आप देखेंगे वो हम उसको बहुत ही ग्रैंड लेवल पे, वो क्योंकि बहुत ही बड़ा काम है। इनफैक्ट रांची में अभी अगर आप देखेंगे तो आप प्लेटफॉर्म को एक ही साइड से एंटर कर पाते हैं जिसको हम नॉर्थ साइड बोलते हैं, वहीं पे मेन बिल्डिंग है सब कुछ है। अभी जो बन गया है साउथ साइड से भी हमने उतना ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, इनफैक्ट एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं कहूँगा कि 4 गुना क्रिएट किया है और एक बार वो शिफ्ट हो जाएगा तो फिर नॉर्थ का भी काम शुरू होगा। तो आप देख पाएंगे कि रांची में अकेले जो होगा, जो हमारी पार्किंग की पहली प्रॉब्लम क्या थी कि हम कार से जाएंगे तो पार्किंग कहाँ करेंगे, तो अब जो हमने स्पेस क्रिएट किया है उसमें से आप आराम से 500-1,000 गाड़ियों को पार्क करने में दिक्कत नहीं होगी और स्पेस भी हमने छोड़ दिया कि अगर दिक्कत हुई तो हम और भी क्रिएट कर देंगे। दूसरा, जितनी भी सुविधाएं उस स्टेशन की है वो ऑलमोस्ट एयरपोर्ट जैसी हैं सुविधाएं, बहुत ही अच्छे वहां पे वेटिंग हॉल्स हैं, बहुत चौड़े चौड़े प्लेटफॉर्म है, बहुत सुंदर बिल्डिंग है, क्योंकि आप वेट कर रहे हैं तो आपको देख के भी अच्छा लगना चाहिए, बैठने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, टिकटिंग की वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, सारी के सारे प्लेटफॉर्म बहुत चौड़े हैं, लिफ्ट एस्केलेटर वो सब कुछ रहेगा वहाँ पे, खान पान की अच्छी व्यवस्था रहेगी सब कुछ। ये जो करीब 2

0: स्टेशन जो हटिया और रांची है, ये भी ये 2 साल के बाद ये भी कम, क्योंकि बहुत बड़े काम है, तो ये मेरे ख्याल से 28 के एंड तक हो पाएंगे। इसके बाद रांची में जो है मोस्ट 15 स्टेशन हमारे जो होंगे वो बहुत ही विकसित स्टेशन होंगे। करीब करीब हमारे पास 45 स्टेशन हैं, तो आप मान के चलिए हमने 1/3 स्टेशन उसमें पूरा का पूरा ही बिल्कुल नया बना दिया है एक तरह से। और इस तरह से पूरे भारतवर्ष में अगर आप जोड़ लेंगे तो आप समझिए कितना बड़ा स्केल है ये इस कार्य का, अमृत भारत स्टेशन का।
1: सर मैं एक बात और जानना चाह रही हूँ, विशेष तौर से अपने युवाओं के लिए, कि रेलवे की ओर जिनका झुकाव है, जिनका लक्ष्य है कि हम रेलवे में रोजी रोजगार प्राप्त करें, तो ऐसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो इस ओर आ सकते हैं?
0: देखिए रेलवे में आने के लिए आपके पास में कई रास्ते हैं। मैं शुरुआत करता हूं कि रेलवे का आज भी जो अपना जो चयन की प्रक्रिया है वो बहुत ही मैं कहूंगा कि बहुत ही प्रोफेशनल चयन प्रक्रिया है। रेलवे का अपना एक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है
1: जी।
0: और आपने देखा होगा, इनफैक्ट हम साल में अगर देखेंगे तो 4 से 5 बार जो है वैकेंसी क्रिएट मतलब जन पब्लिश करते हैं, उसका प्रॉपर कंप्यूटराइज एग्जाम, हमारा CBT हमने पहले से ही किया हुआ है, हम पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है रेलवे का, और अब हम उसको बहुत लंबे चरण में करते हैं ताकि ऐसा भी ना हो कि क्राउड एक दिन हो जाए। और पूरे इंडिया में हमारे कई सेंटर्स हैं इसको कंडक्ट करने के लिए, ताकि युवाओं को बहुत लंबा न जाना पड़े एग्जाम देने के लिए। सो रेलवे हर वर्ष जो है ये एग्जाम कंटिन्यूअस कंडक्ट करते रहती है, क्योंकि रेलवे में आज भी करीब करीब 12.5 से 13 लाख एम्प्लॉई हैं, और जो रिटायर हो रहे हैं उसको हम फिर वापस उसका रिक्रूटमेंट हमको करना होता है, तो ये प्रक्रिया हमारी चलती रहती है, चाहे वो हमारे ड्राइवर्स हों, चाहे वो हमारा स्टेशन मैनेजर हो, गार्ड हो, TT हो, हमारे टेक्नीशियंस हों, हमारे की मैन हो, हमारे पेट्रोल मैन हो, मतलब रेलवे का पूरा जो महकमा है वो कंटिन्यूअस भर्ती में चलता रहता है। तो एक तो ये है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू आप क्लास 4 और क्लास 3 दोनों में रेलवे में आ सकते हैं। उसके अलावा मैं दूसरा कहूँगा, अगर आप जो रेलवे में आने के बाद भी रेलवे में आप क्लास 4 से और क्लास 3 से भी आके बिल्कुल बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, रेलवे में एक अपना इंटरनल प्रोसेस भी है एग्जाम का, तो मैं उस पर अभी नहीं जाता हूँ। दूसरा जो सिविल सर्विसेज के माध्यम से है वो तो है ही है, जो आप जो उसमें क्लास 1 की जो सर्विसेज हैं वो आप सिविल सर्विसेज में जो सिलेक्शन होता है उसके थ्रू आप आ सकते हैं। देन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू जो है उसमें भी जो लोग आते हैं वो टेक्निकल साइड के जो ऑफिसर्स होते हैं वो उस साइड से आते हैं। इसके अलावा हमने बहुत बड़ा चीज़ जो रेलवे का छोड़ दिया है वो रेलवे की अपनी बहुत सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे इरकॉन हो गई, राइट्स हो गई, कॉनकॉर हो गई, IRCTC हो गई, और भी बहुत से हैं इस तरह के, रेल टेल है, जहाँ पे कि हमको एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है, तो वो भी हम ओपन मार्केट से लोगों को सीधे सीधे लेते हैं।
1: अच्छा।
0: और उसके भी चयन की प्रक्रिया है वो भी चलते रहती है कंटिन्यूअस, तो वो भी एक बहुत बड़ा नंबर है। और वहाँ पे जो जो स्किल्ड लोग हैं, जो कुछ टेक्निकली लॉजिस्टिक में जिनको काफ़ी आइडिया है या कंस्ट्रक्शन में आइडिया है, जो पढ़े लिखे हैं, वो लोग सीधे वहाँ पे अप्लाई करते हैं, वो उनको जॉब मिल जाता है। इसके बाद मैं तीसरा कहूँगा, हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल जो वर्कफोर्स है ये भी बहुत बड़ा है रेलवे का कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कफोर्स। अगर आप जो बहुत जैसे रांची में ही अगर हम ले लें, छोटा सा डिवीजन रांची को ले लें, तो रांची में भी कम से कम 1000 से 1500 के आसपास कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर होगा या स्टाफ होगा जो काम कर रहा होगा, उसमें सुपरवाइजर उसके अगेंस्ट सुपरवाइजर होते हैं, काम करने वाले होते हैं, स्टोर कीपर्स होते हैं, बहुत तरह के, तो उसमें भी आप आ सकते हैं। तो युवाओं के लिए कुल मिलाकर के जो है रेलवे आज भी एक बहुत बड़ा रास्ता खोल के रखी हुई है आने के लिए। इसके अलावा अगर आप किसी क्षेत्र में बहुत अच्छे, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेलवे का अभी भी स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू सिलेक्शन होता है, जैसे आप किसी भी, जैसे अगर आप देख लें, इनफैक्ट रांची को एग्जाम्पल ले लें, तो रांची की भारत की जो हॉकी की कैप्टन है वो हमारी रांची डिवीजन की सीमा टेटे जी हैं। सो 4 जो प्लेयर है वो रेलवे की यहीं की हैं, तो वो सब का सिलेक्शन ही रेलवे में हुआ है बिकॉज दे आर स्पोर्ट्स पर्सन। उसके अलावा कल्चरल कोटा हमारा होता है, अगर आप बहुत अच्छे गाने में हैं, नृत्य में हैं, शास्त्रीय संगीत में हैं, तो उन लोगों के लिए भी हम कंटिन्यूअस लेते रहते हैं, स्काउट एंड गाइड में हैं आप, तो उन सबको भी लेते हैं। तो रेलवे जो है अपने स्पोर्ट्स पर्सन लोगों को, अपने कल्चरल एक्टिविटी वालों को, इन सब के लिए भी रास्ता हर एक जोन ने अपना अपना खुल रखा है, हर साल सिलेक्शन होते रहता है नंबर। तो एक ये भी माध्यम है कि ऐसा नहीं कि कलाकार लोग या प्लेयर्स लोग उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए भी, लेकिन वो उनका सिलेक्शन एग्जाम के ना होकर के उनके टैलेंट के बेस पे होता है। तो और उनको ये सब अपना रेलवे का जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें हमेशा देखना होगा कि कब निकल रहा है, क्या निकल रहा है, और उसके थ्रू आ सकते हैं। तो जितने

0: कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि आपको आकाशवाणी के माध्यम से कार्यक्रम सुनने का भी बहुत शौक रहा है, तो क्या गीत संगीत का भी शौक आप रखते हैं?
1: हाँ बिल्कुल, गीत संगीत का बिल्कुल शौक रखते हैं। और अब ये आज के डेट में तो हम रेडियो नहीं, बट अमीन सयानी जी का जो हम लोग का प्रोग्राम था वो आज भी उनको सुनने में उतना अच्छा लगता है जितना कि उस जमाने में था, हमारे जब हम लोग यंग थे उस जमाने में जो था। तो एक घंटा आधा घंटा समय अपने लिए निकालना, और संगीत तो सबके लिए है
0: बिल्कुल,
1: ये सिर्फ थकान को ही दूर नहीं करता, आपको रिफ्रेश करता, रिचार्ज कर देता है मैं कहूंगा। सो आपको आजकल लोग रीबूट करते हैं, हम लोग को रीबूट करने की जरूरत नहीं, हम लोग को रिचार्ज करने की जरूरत होती है, रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। तो हम लोग म्यूजिक से अच्छा कोई चीज उसके लिए हो नहीं सकता है।
0: बिल्कुल,
1: तो डेली का कम से कम आधा घंटा, 15 से 20 मिनट आधा घंटा अगर हो जाए तो इसमें मैं तो कहूंगा, युवाओं के लिए भी कहूंगा कि बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भी बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उसमें बीच में आपको रिफ्रेश करने का एक तरीका है कि आप कम से कम कोई भी म्यूजिक वगैरह सुन सकते हो आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, भले वो कैसा भी हो।
0: तो मैं चाहूंगी कि कार्यक्रम में अब आपकी पसंद का एक गीत हम यहाँ सुन लें, ऐसा कोई गीत जो आपके जहन में आ रहा हो।
1: बहुत सारे हैं, मतलब क्योंकि ये अपने उत्साह के साथ में ये प्रोग्राम कहा है, तो मैं थोड़ा सा यंग लोगों के हिसाब से कहता हूँ कि

0: सबा बर्बादी करके हमारे शायर थे, उनका उनका एक गजल है और कई लोगों ने गाया इसको, आई थिंक कम से कम 20 लोगों का तो मैंने ही सुना है इसका गाना, सभी जो है कि सादगी तो हमारी जरा देखिए एतबार आपके वादे पे कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए एतबार आपके वादे पर कर लिया, बात तो सिर्फ इकरार की थी मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। अगर आप इस गाने को सुनाएंगे श्रोताओं को तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, बट ये जनरली मैं गजल को अपने संगीत में, गजल मेरा बहुत फेवरेट ये है
1: जी।
0: और मैं काफी सुनता हूँ, इनफैक्ट सुफियाना कलाम एंड कवाली इन सब में भी मुझे काफी इंटरेस्ट है।
1: तो चलिए श्रोताओं, सर की पसंद का ये गजल आज हम कार्यक्रम में सुनते हैं।

0: सर की पसंद का गीत तो हमने सुन लिया। सर से अब मैं चलते चलते ये जानना चाहूंगी कि सर, कई बार देखा जाता है कि जब परीक्षार्थी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनमें अवसाद ग्रस्त होने की भी भावना देखी जाती है। कई बार होता है कि वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन कई बार उन्हें सफलता हासिल नहीं होती है। तो ऐसे छात्रों को, ऐसे बच्चों को आप अपनी ओर से एक मार्गदर्शन के तौर पर क्या देना चाहेंगे?
1: डेफिनेटली एग्जाम्स हमारे टफ हैं, कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, बट हमेशा ना पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। हमें विजुलाइज करना जरूरी है कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये विजुलाइजेशन हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। एंड तो ऑटोमेटिकली आप विजुलाइज करेंगे कि आपका हो गया है, सक्सेस हो गया है, देन आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। जैसे ही आपने नेगेटिव विजुलाइज कर लिया कि मेरा क्या होगा, मेरा कैसे होगा, क्या करूंगा, देन लड़ाई के पहले ही हार जाएंगे। तो लड़ाई की पहली जीत होती है वो विजुलाइजेशन, पॉजिटिव विजुलाइजेशन से है कि मेरा हो रहा है। और ये आपको कि लंबा प्रोसेस लंबा होता है, करीब आपका चलता है 6 महीना साल भर का प्रोसेस है, तो आपको इतने लंबे समय तक अपने आप को पॉजिटिव मूड में रखने के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा ये है कि एक हमेशा एक एग्जिट अपने पास रखना चाहिए। जैसे आपने कोई एग्जाम दे रहे हैं, अगर उसमें एक हमेशा फॉल बैक ऑप्शन जिसको हम लोग बोलते हैं कि चलिए ठीक है ये एग्जाम नहीं हुआ तो मैं दूसरा क्या कर लूंगा। जैसे हम जब सिविल सर्विस की तैयारी करते, दूसरा हमारा फॉल बैक था कि कुछ नहीं होगा तो हम सेल की नौकरी कर लेंगे, और तीसरा ये था कि नहीं तो मास्टर प्रोफेसर बन जाएंगे। ठीक है, सो फॉल बैक ऑप्शन और एक पॉजिटिव विजुलाइजेशन, मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत ज्यादा अपना अटेंशन डाइवर्ट नहीं करने का, मतलब बहुत चीजों पे फोकस नहीं करने का। हम सब चीजों पे फोकस कर जाते हैं और यही भी देखना है, वो भी देखना है, ये करना है, इतना ज्यादा करेंगे तो हमारे पास समय कम है। सो मतलब अटेंशन जो है अपना बहुत लिमिटेड चीजों पे रखिए, और तीसरा जो है हमेशा एक फॉल बैक ऑप्शन रखिए।
0: सर अब चलते चलते DRM रांची होने के नाते आप आम जन से क्या अपील करेंगे स्टेशन की साफ सफाई को लेकर, और साथ ही साथ जो रेल से यात्री यात्रा कर रहे हैं उसकी स्वच्छता को लेकर?
1: बहुत ही आपने जो है बिल्कुल दिल की बात कह दी। हमारी सबसे महत्वपूर्ण, में सभी जितने भी हमारे पैसेंजर्स हैं, हमारे उपभोक्ता है, जो रेलवे से सफर कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं, रेलवे आपकी संपत्ति है, और स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे तो आपको भी उतनी ही खुशी मिलेगी जितनी की हमको मिलेगी। सो मैं कहूँगा कि सबसे पहला काम, रेलवे में आप जाएं तो कूड़ा हमेशा वहीं डालें जहाँ पे उसके लिए नॉमिनेट किया हुआ है। अभी हम लोगों ने सारे स्टेशन पे सेग्रीगेट करने का एक वो रखा हुआ है, तो सबको उस पर डालें। हम अपना काम कर रहे हैं बट आप अगर उसको सहयोग करेंगे तो हम दोनों को बहुत अच्छा लगेगा।
0: ठीक है।
1: दूसरा कि जो हमारे जो जितने भी बेड रोल्स वगैरह होते हैं, हमारे जितने भी ट्रेन में होते हैं, उन सबको हम ठीक से रखें, क्योंकि वो हम सबकी संपत्ति है। अगर हम नहीं उसको रखेंगे ठीक से तो फिर वापस वो रिसाइकल होके फिर आप ही कहेंगे कि ये खराब हो गया है, गंदा हो गया है, सब कुछ है। तो जो भी जो एसेट है, जो भी हमारी चीजें यूज करने की चीज ट्रेन के अंदर है, उन सबको आप भी संभाल के रखें, हमारे पैसेंजर को भी संभाल के रखना होगा। रेलवे अपना काम कर रही है।

0: क्योंकि जब तक दोनों नहीं करेंगे काम होगा नहीं। अगर आप देखेंगे हटिया से लेकर रांची और नामकुम के बीच में बिल्कुल थोरोफेयर बन गया है, काफी हद तक लोग ट्रेवल करते हैं। तो मेरा ये मानना, हम तो अपने साइड की कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको बाउंड्री बन के घेर दें, लेकिन जान बहुत कीमती है और हर एक को अपनी ड्यूटी भी निभानी है। तो मैं ये कहूँगा कि रेलवे में पटरी को क्रॉस ना करें, जो प्रॉपर गेट बना है वहीं गेट से जाएं, या सबवे बना हुआ है वहां से जाएं, यहां से वहां लोग बिना मतलब, क्योंकि आप कई बार ना आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, आप ट्रैक क्रॉस कर रहे हैं, कोई भी पीछे से ट्रेन आ जाएगी, उसके बाद फिर जिंदगी वापस नहीं आ सकती है। तो उसकी जिम्मेदारी हम सबको लेनी होगी कि हम ट्रैक को क्रॉस ना करें। चौथा, हमारा जो गेट है, रेलवे का गेट है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ रांची में बहुत खास करके कि समस्या तो है। मैं नहीं कहूँगा कि व्हीकल बहुत है रोड पे, हर किसी को जल्दी पहुँचना है लोग, लेकिन जो है गेट को बिल्कुल जल्दी जल्दी क्रॉस करने में गेट बंद हो रहा था और लोग घुसने की कोशिश करते हैं उसमें, कई लोग जो है वो ऊपर से आके लग गया, उनको बैरियर जो है गिर गए हैं और फिर बाद में चोट लग गया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि रुक जाए, एक मिनट रुक जाने से कुछ भी नुकसान नहीं होगा। एक बार गाड़ी चले जाए, गेट खुल जाए, फिर आप वापस इस्तेमाल करिए रास्ते का। तो सेफ्टी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और जब भी आप ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन में, तो अपने जो को पैसेंजर्स हैं उनके साथ भी बहुत अच्छे से व्यवहार करें, और कोई भी आपको संदिग्ध चीजें दिख रही हैं तो रेलवे को कृपया करके इन्फॉर्म करें।
1: बिल्कुल सही बात है। और सर, मैं तो समझती हूँ कि रेलवे ने जितनी सुविधाएं हमें दी हैं, अगर हम उसे तत्परता से उसे उपयोग में ला रहे हैं, तो हमारी ये महती जिम्मेदारी है कि हम उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी रख रखाव को लेकर भी सतर्क रहें, सजग रहें। सर, कार्यक्रम में आने के लिए और अपना बहुमूल्य वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए। इसमें आज आपने बातचीत सुनी दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के रांची डिवीजन के DRM श्री करुणा निधि सिंह से सिंधु मिश्रा की। प्रस्तुति थी प्रभु शरण की, और इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हो चुके हैं और इस वक्त आप सुनते हैं आपकी पसंद के गाने, कार्यक्रम आपकी पसंद में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म पार्टनर से ये गाना सोनू निगम साजिद और सुनिधि चौहान की आवाजों में। संगीत था साजिद वाजिद का और धुन तैयार किया था जलेश शेरवानी ने। आइए सुनते हैं फिल्म हे बेबी से अगला गाना।

0: अभी आपने सुना फिल्म हे बेबी से सोनू निगम, शान और शंकर महादेवन की आवाज़ों में ये प्यारा सा गाना। संगीत से सजाया था शंकर एहसान लॉय ने और शब्दों में पिरोया था समीर ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और इस गाने की फरमाइश हमारे पास भेजी थी छत्तीसगढ़ भाटापेड़ा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छावेंद्र कुमार वर्मा ने। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर ने। तो इन श्रोताओं की पसंद पर हमने सुना ये गाना। श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा पर लेते हैं ये विराम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: डट पड़े भारतीय सेना।
1: विराम के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद में, और इस प्रसारण को आप सुन रहे हैं हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। श्रोताओं, अगली फरमाइश आई है हमारे पास चतुका किशनपुर से। आलम दिलकश, सबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम और चांदनी नाज की इसी गाने की फरमाइश की है। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश शाबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश ने इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से ये प्यारा सा गाना। अपनी आवाज दी है इस गाने को, अपनी आवाज दी है आतिफ असलम ने, संगीत से सजाया प्रीतम ने और शब्दों में पिरोया है इरशाद कामिल ने। तो आइए सुने अपने प्यारे श्रोताओं की पसंद पे ये प्यारा सा गाना।

आइए श्रोता, अब सुनते हैं फिल्म बंटी और बबली फिल्म से ये गाना सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में। शब्दों में पिरोया है गुलजार ने और इसे संगीत से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने। और इस गाने की फरमाइश की है हमारे इन श्रोताओं ने, नया बाजार बक्सर से राजेश केशरी, पंकज केशरी, रोहन केशरी, गोलाघाट बक्सर से विजय केशरी, गौरी शंकर केशरी और शंभू केशरी ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म बॉडीगार्ड से ये गाना, जिसे अपनी आवाजें दी थी राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल ने। धुन तैयार किया था शबीर अहमद ने और संगीत से सजाया था हिमेश रेशमिया ने। इस गाने की फरमाइश की थी मगनपुर से अमजद अली और अब्बास आलम ने। तो इसी गाने के साथ आज का आपकी पसंद का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे महिलाओं का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: कहते हैं ईश्वर हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया।
1: वाकई कितनी सुंदर बात कही, और इसी खूबसूरत भाव के साथ आप सभी श्रोता बहनों का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। मैं हूँ आपकी सकी निधि और आज मेरे साथ हैं
0: बहनों मैं रानी। स्वीकार कीजिए मेरा भी प्यार भरा नमस्कार और ढेरों मंगल कामनाएं आप सभी के लिए। बहनों माँ महज एक छोटा सा शब्द नहीं, लेकिन अपने भीतर पूरी दुनिया समेटे हुए है। बच्चों की छोटी सी दुनिया में माँ का स्थान कितना खास होता है ये शब्दों में समेटना आसान नहीं, और एक माँ के जीवन में भी उसके बच्चे की जगह क्या है इसे भी शब्दों में बताना संभव तो नहीं है ना निधि?
1: बिल्कुल सच्ची बात बताई तुमने रानी। किसी बच्चे की दुनिया में आने से पहले ही माँ जो है ना उसके लिए सपने बुनना शुरू कर देती है, और माँ बच्चे की पहली दोस्त होती है, पहली शिक्षक होती है और उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। बच्चे की हर मुस्कान में माँ की खुशी होती है और उसकी छोटी सी परेशानी भी माँ को बेचैन कर देती है, क्यों?
0: बिल्कुल, लेकिन माँ होना या माँ की भूमिका सिर्फ बच्चे को प्यार और सुरक्षा देने तक सीमित नहीं है। बच्चों का पालन पोषण

0: सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक ऐसी यात्रा है जिसमें माँ भी हर दिन अपने बच्चे के साथ कुछ नया सीखती है।
1: और बहनों, जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसे कुछ भी नहीं पता होता, न रिश्तों की समझ होती है, न सही गलत का फर्क, न दुनिया को देखने का नजरिया। तो ये सब काम जो उसके लिए कोई व्यक्ति करता है तो वो है उसकी माँ।
0: बिल्कुल, धीरे धीरे वो अपनी माँ की आवाज, उसके स्पर्श को पहचानता है, महसूस करता है। माँ की गोद बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह होती है और उसके व्यवहार, उसके सीख से वो दुनिया को समझना शुरू करता है।
1: हाँ, तभी तो हम कहते हैं ना रानी कि बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ होती है, और माँ के शब्द, उसका व्यवहार, उसकी आदतें, उसका संस्कार, ये सब बच्चे के व्यक्तित्व पर गहरी छाप छोड़ते हैं।
0: हाँ, और यही कारण है बहनों कि बच्चों के पालन पोषण में माँ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बच्चों का पालन पोषण, जिसका अर्थ केवल बच्चे की जरूरतें पूरी करना या उससे बड़ा करना नहीं, बल्कि उसके शरीर के साथ साथ उसके मन, सोच, व्यवहार और व्यक्तित्व को संवारना है।
1: और उसे सही गलत का फर्क समझाना, अच्छे संस्कार देना, उसकी भावनाओं को समझना और उसे इतना आत्मविश्वासी बनाना कि वो आगे चलकर अपने जीवन के सही फैसले खुद ले सके और आत्मनिर्भर बन सके।
0: बिल्कुल निधि, बच्चा सबसे पहले अपने घर से ही बोलना, व्यवहार करना, सम्मान देना और सही गलत को समझना सीखता है। और अगर घर में बातचीत सम्मान और धैर्य से होगी तो बच्चा भी वही सीखेगा, क्योंकि बच्चे शब्दों से ज्यादा व्यवहार से सीखते हैं। क्यों?
1: सच। और आज समय बदल रहा है, देखो माता पिता की व्यस्त जीवन शैली से तो हम सभी परिचित हैं।
0: हाँ।
1: और बच्चों की बढ़ती डिजिटल दुनिया ने बच्चों के पालन पोषण को थोड़ा और चुनौतीपूर्ण भी बना दिया है।
0: बिल्कुल, मोबाइल और इंटरनेट आज बच्चों की जिंदगी का हिस्सा है और इन्हें पूरी तरह रोकना भी इसका समाधान नहीं है, है ना निधि? बल्कि बच्चों को इनके सही, सुरक्षित और संतुलित इस्तेमाल की समझ देना ज्यादा जरूरी है।
1: हाँ, और इसके साथ बच्चों को किताबों, खेल, परिवार के साथ बातचीत से जोड़ना भी उतना ही जरूरी है, और उनके सही खान पान, नींद और दिनचर्या, इन सभी बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। आजकल पढ़ाई और सफलता का दबाव भी बच्चों पर काफी बढ़ गया है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि प्रतिस्पर्धा का दौर है, ये तो हम सभी जानते हैं। और ऐसे में उनकी तुलना दूसरे बच्चों से जब हम करते हैं तो उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और हमें उनकी रुचि और क्षमता को पहले समझ लेना चाहिए।
0: बिल्कुल, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, खास होता है बहनों। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है तो कोई किसी खेल में, कोई संगीत में तो कोई किसी कला में। और सबसे जरूरी है बहनों, बच्चों से संवाद और उसके लिए सही शब्दों का चुनाव। उसकी गलती पर सिर्फ डांटने के बजाय उसकी बात सुनना, उसकी भावनाओं को समझना और उसे ये भरोसा देना कि तुम अपनी बात हमसे बेझिझक कह सकते हो, बिना किसी डर या शर्म के। क्योंकि बच्चे के व्यक्तित्व को मजबूत करने के लिए उसकी गलती को नहीं बल्कि उसके व्यवहार को सुधारना ज्यादा जरूरी है। क्यों?
1: हाँ, बिल्कुल सही बात है ये, और यही तो पालन पोषण की खूबसूरती है रानी।
0: हाँ।
1: ममता से सुरक्षा, संस्कारों से दिशा और विश्वास से हौसला, ये सभी बच्चे को मिलता है और ये माँ से मिलता है। बच्चे को अपने जैसा नहीं बल्कि एक अच्छे और बेहतर इंसान बनाने में मदद करना है।
0: बिल्कुल, बच्चे को सिर्फ सुविधाएं नहीं चाहिए होती है बहनों, उन्हें चाहिए समय, समझ, भरोसा और ढेर सारा प्यार, ताकि बच्चा सिर्फ बड़ा और सफल ना बने बल्कि एक समझदार, संवेदनशील और जिम्मेदार इंसान बने।
1: बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति में माँ का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। कहा गया है मातृ देवो भव, यानी माँ को देवतुल्य माना गया है और उनका सम्मान भी हमें उसी प्रकार करना चाहिए।
0: बिल्कुल, और एक माँ के लिए इससे खूबसूरत सम्मान और क्या होगा ना निधि, कि उसकी ममता और संस्कारों से एक नन्ही सी जान बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने।
1: हाँ, बिल्कुल सही बात तुमने कही रानी, और ये सब तो तभी संभव हो पाएगा जब एक माँ शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होगी।
0: बिल्कुल,
1: हम कहते हैं ना कि एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है, उसका पालन पोषण कर सकती है।
0: बिल्कुल,
1: तो महिलाएं जो है वो खुद के लिए भी समय निकालें, क्योंकि थकी हुई और तनावग्रस्त माएं जो हैं उनके व्यक्तित्व का कहीं ना कहीं गलत प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, और उन्हें काफी धैर्य भी बनाए रखना पड़ता है बच्चों के पालन पोषण में।
0: बिल्कुल, बिल्कुल, और एक माँ का अपना ख्याल रखना स्वार्थ नहीं है, कोई गलत नहीं है, ये परिवार की जरूरत है। जब माँ शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहती है तो वो बच्चों को भी अधिक धैर्य, प्रेम और समझ दे पाती है।
1: हाँ।

0: माँ का प्यार बच्चे की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यही प्यार कहीं उसकी कमजोरी भी ना बन जाए, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए उनकी हर मुश्किलों को अपने हाथों से दूर करने की कोशिश ना करें। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो उसे आप थोड़ा आत्मनिर्भर भी छोड़ दें, ताकि छोटी छोटी समस्याओं को वो खुद सुलझाने में तत्पर हो सके और सक्षम हो सके।
1: बिल्कुल। कुछ मुश्किलों को उन्हें भी समझने और सुलझाने का मौका दे। जब जरूरत हो उनका हाथ थामे, साथ खड़ी रहें, क्योंकि अच्छी परवरिश का मतलब बच्चे के लिए हर रास्ता आसान कर देना तो नहीं है निधि, बल्कि उसे उन रास्तों पर चलने के काबिल बनाना है। और माँ की ममता का सबसे सुंदर रूप यही है बहनों, बच्चे को अपनी आंचल की छांव देना और फिर धीरे धीरे उसे धूप में भी चलना सिखाना।
0: क्यों? क्योंकि जिंदगी तो संघर्ष से भरा है, ये हम जानते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो तुमने ये बहुत ही सही मुद्दा उठाया है कि प्यार और दुलार के साथ साथ हमें अनुशासित भी बच्चे को करना चाहिए।
1: बिल्कुल।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल
4: 10,00,000 की लॉटरी मुझे।
5: फर्जी ऑफर से सावधान।
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: बच्चे
8: बहनों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और आज की कड़ी संस्कार के अंतर्गत हम बातें करेंगे कि बच्चों में किस तरह से साझा और सहयोग की भावना को विकसित किया जाए। तो एक अभिभावक के विचारों को जानने के लिए हमारे बीच हैं अवधेश कुमार। अवधेश जी, स्वागत है आपका।
9: नमस्कार, और हमारे जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार।
8: और मेरी प्यारी सखी रानी तो हैं ही हमारे इस गृहलक्ष्मी के सफर में।
10: बिल्कुल।
8: तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि बच्चों में संस्कार की नींव को किस प्रकार हम डाल सकते हैं।
9: बिल्कुल। जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा विषय है कि बच्चों में साझा और सहयोग की भावना, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और बच्चों में ये भावना और इस तरह के साझा और सहयोग की जो भावना है वो बचपन से ही उनके अंदर बिल्डअप करना चाहिए, उनके अंदर होना चाहिए। और हम सब जो पेरेंट्स हैं अक्सर चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, आत्मविश्वासी बने, आगे बढ़े और जीवन में सफल हो। लेकिन एक अच्छे भविष्य के लिए केवल पढ़ाई और सफलता ही पर्याप्त नहीं होती है। बच्चे के अंदर दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने, अपनी चीजें साझा करने और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करने और टीम के साथ काम करने की भावना भी उनके अंदर होनी चाहिए।
8: हाँ बहनों, कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वे मासूम होते हैं, उनका मन बिल्कुल आईने की तरह साफ होता है। और ये हम ये भी जानते हैं कि वे गीली मिट्टी के समान हैं, आप उन्हें जैसा चाहे आकार दे सकते हैं, क्यों रानी?
10: हाँ बिल्कुल। और आकार जितनी कम उम्र में दी जाए बहनों, उतनी ही पक्की उसकी नींव हो जाती है। और क्या होता है ना निधि, बच्चों की जो दुनिया होती है वो अक्सर एक छोटे से शब्द मेरी के इर्द गिर्द घूमती रहती है।
8: बहुत जरूरी बात।
10: मेरे खिलौने, मेरी किताब, मेरी टॉफी, यहाँ तक कि मेरी मम्मी, मेरे पापा, है ना?
8: बिल्कुल बिल्कुल।
10: बचपन में मेरी कहना स्वाभाविक है, लेकिन इसे धीरे धीरे मेरी को हमारी बनाना हमारी भी तो जिम्मेदारी है।
8: हाँ, और ये धीरे धीरे ही होगा। और जैसा हमने कहा ना कि जितनी कम उम्र से हम उन्हें इन सब बातों के बारे में सिखाएंगे तो इनकी जड़ें उतनी ही मजबूत होंगी। और आज हम बच्चों को शिक्षित करने में, उन्हें रोजगार के लिए तैयार करने पर इतना बल देते हैं, लेकिन एक बात है जो सबसे जरूरी है, वो है नैतिक शिक्षा।
10: बिल्कुल।
9: और जहाँ तक संस्कार की बात है, तो संस्कार की बात जो है वो बच्चों को बचपन में ही सिखाना होगा, क्योंकि वो बड़े होकर के वो फिर उतना नहीं सीख पाएंगे। तो साझा करना बच्चों को छोटी उम्र में ही सिखाया जा सकता है, और शुरुआत घर से ही होती है, जैसा कि हम सब बात भी कर रहे हैं। अगर बच्चे के पास कोई खिलौना है, जैसा कि अभी रानी जी ने कहा कि बच्चों के पास अगर कोई खिलौना है, रंग है, किताब है या खाने की कोई चीज है, तो उसे जबरदस्ती किसी को बांटने के लिए मजबूर नहीं करना है, बल्कि उनको प्यार से बताएं, उनको प्यार से समझाएं कि हम सब अगर एक दूसरे के साथ मिलकर इसको बांटेंगे तो एक जो खुशी आएगी, जो खुशी के साथ हम बांटते हैं, तो वो खुशी और दुगनी हो जाती है। मसलन घर में अगर दो बच्चे हैं और उनके पास एक खिलौना है, ऐसी स्थिति में अगर दोनों बच्चे उस खिलौने के लिए झगड़ने लगे, जो अक्सर होता है, हम सबके घरों में होता है, तो हमें तुरंत किसी एक बच्चे को डांटने के बजाय उन्हें बारी बारी से खेलने की आदत डलवानी चाहिए। और हम कह सकते हैं कि पहले तुम खेल लो, फिर भाई या बहन खेलेगा उससे। और इस तरह बच्चे धीरे धीरे इन बातों को समझने में लगते हैं, और हर चीज पर केवल उनका अधिकार नहीं है और दूसरों की जरूरत का भी उनको ध्यान रखना जरूरी है।

0: बच्चा अपनी चीज किसी के साथ बांटे तो उसकी तारीफ भी जरूर करे बहनों, उसे बताएं कि बांटने से चीजें कम नहीं होती, खुशियां बढ़ती हैं। क्यों?
1: बिल्कुल,
2: इसी तरह से बच्चों में सहयोग की भावना भी घर के छोटे छोटे कामों में भी विकसित की जा सकती है। उदाहरण के लिए बच्चा अपना खिलौना खेलने के बाद खुद उठा करके रखे, अपनी किताबें सही जगह पर रखे, खाने के बाद अपने प्लेट उचित स्थान पर रखे, घर के किसी छोटे मोटे काम में माता पिता की मदद करे और इन कामों को बोझ की तरह नहीं समझे, बल्कि परिवार के साथ मिलकर की जाने वाली जो जिम्मेदारी की तरह उसे समझना चाहिए। कई बार ये भी होता है कि हम बच्चों को हर काम खुद कर देते हैं, बच्चों का काम माता पिता खुद कर देते हैं, ये समझते हैं कि बच्चा अभी छोटा है और हमें लगता है कि और ऐसा सोचने में कि उनकी परेशानी को हम क्यों बढ़ाएं, उनकी परेशानी को हम कम कर दें, लेकिन ऐसा करते करते क्या होता है कि बच्चा दूसरे की मदद लेने का आदि हो जाता है।
0: बिल्कुल
1: हाँ, और सबसे जरूरी बात ये है कि बच्चों को आदेश और शिक्षा देने से अधिक जरूरी है कि हम खुद उनके सामने उदाहरण बनकर पेश हों। अगर घर के बड़े किसी विचार का समर्थन करते हैं तो बच्चे ज्यादातर उसका अनुकरण करते हैं।
0: बिल्कुल बहनों, क्योंकि बच्चे सिर्फ हमारी बातें सुनकर नहीं, हमारे व्यवहार को देखकर भी सीखते हैं। अगर घर में माता पिता एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसा कि निधि ने कहा, चीजें साझा करते हैं और जरूरत के समय साथ खड़े होते हैं, तो बच्चा भी वही सीखता है, है ना।
2: और बच्चों को ये भी समझाना जरूरी है कि सहयोग का मतलब सिर्फ काम अपने ऊपर लेना नहीं है। अगर कोई बच्चा अपना होमवर्क नहीं करना चाहता है और वो अपने भाई या दोस्त से कहता है कि उसका काम कर दो, तो उसका काम कर देना सहयोग नहीं है। सहयोग ये है कि सही सहयोग ये है कि उसे ये समझाया जाए कि काम कैसे करना है, लेकिन उसे ये काम खुद करवाना है कि आप खुद से करो, सही, हम तुम्हारी मदद कर देंगे।
0: बिल्कुल
1: सही कहा, आदेश देना ही काफी नहीं होता, सिर्फ किसी बात पर जोर देने से या सख्ती बरतने से बच्चे उदंड भी होने लगते हैं, ऐसा हम देख रहे हैं। और अगर घर के सदस्य आपस में अपनी चीजों को बांटते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का भी आदान प्रदान करते हैं, तो स्वतः बच्चे भी इन सब बातों को धीरे धीरे सीखने लगते हैं।
0: बिल्कुल, बच्चों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए उन्हें खेलकूद, परियोजना कार्य वगैरह के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। खेलकूद में वे एक टीम में कार्य करना सीखते हैं, साथ ही अपनी जो जीत होती है हार होती है उसे ज्यादा महत्व ना देते हुए टीम को महत्व देते हैं, है ना। इस तरह से वे सहनशील और समझदार भी बनते हैं।
2: बच्चों में अक्सर ये भी देखा जाता है कि अगर कुछ बच्चे कमजोर हैं और जो बच्चे तेज हैं, तो वो तेज बच्चे कमजोर बच्चों का मजाक उड़ाते हैं, तो हमें उसे समझाना चाहिए कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता होती
1: हाँ,
2: है
1: और कुछ बच्चों की अच्छा प्रतिभा जो होती है ना दूसरे बच्चों के वजह से दब जाती है
2: तो हाँ। कोई पढ़ाई में भी अच्छा हो सकता है, कोई खेल में अच्छा हो सकता है, कोई संगीत में, कोई चित्रकारी में अच्छा कर सकता है, तो हमें दूसरों की कमियों पर हंसने के बजाय उनकी मदद करनी चाहिए और ये सीख बचपन से ही बच्चों को देनी चाहिए। और आज के समय में जो प्रतियोगिता बढ़ गई है, बहुत प्रतियोगिता बढ़ गई है और हर माता पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा सबसे आगे हो और ये स्वाभाविक भी है, लेकिन हमें बच्चों को ये भी सिखाना होगा कि आगे बढ़ने का मतलब दूसरों को पीछे धकेलना नहीं है, आगे बढ़ने का मतलब दूसरों की लकीर को छोटा नहीं करना है, बल्कि एक लंबी लकीर उसके आगे खींचनी पड़ती है और ये बच्चों को पहले से बताना है।
1: हाँ, ये सही प्रयास होगा और बच्चों के छोटे छोटे जो प्रयास हैं, मेहनत है और उपलब्धियां हैं, उनकी सराहना भी करनी चाहिए। इस तरह से उनमें आत्मविश्वास जगता है, आत्मसम्मान की भावना भी विकसित होती है और बहुत ज्यादा नकारात्मक टिप्पणी करने से, बार बार गलतियों पर सजा देने से इन सभी का बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
0: बिल्कुल, दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना, मिलजुल कर किसी त्योहार का आयोजन करना, इन सब बातों से बच्चों में सहयोग करने की क्षमता बढ़ती है। और हम क्या करते हैं कि बच्चों को सिखाते हैं, बोलते हैं कि अपना काम खुद करो, लेकिन अब जरूरत है कि बच्चों को ये भी सिखाएं कि अगर सामने वाले को जरूरत है तो उसका भी हाथ थामो, उसकी भी मदद करो, वो भी सही तरीके से।
2: तो और अभिभावक बच्चों को छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से साझा और सहयोग की भावना भी सिखा सकते हैं। परिवार के साथ मिलकर पौधे लगाना, घर की सफाई करना, खाना बनाना और इस तरह की जो छोटी छोटी तैयारियां होती हैं, ये सब बच्चों को सिखाना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो अब रानी क्या ख्याल है तुम्हारा, इस विषय पर हम और बातें करेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं ये गीत।
0: बिल्कुल।

0: बहनों, हर माता पिता की यही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा जीवन में आगे बढ़े, खुशहाल रहे और सबसे बढ़कर एक अच्छा इंसान बने। और सब हम सब ये भी जानते हैं कि बच्चों के बिना घर अधूरा लगता है ना। वही तो खुशियों की असली वजह होते हैं, उनकी मासूम मुस्कान, छोटी छोटी शरारतें, उनकी मीठी मीठी बातें पूरे घर का माहौल बदल देती है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए बच्चों की परवरिश भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ सिर्फ शिक्षा और सुविधा होनी चाहिए, वो तो खैर, और उसके साथ साथ उस सकारात्मक माहौल की जहाँ प्यार, अपनापन, संस्कार हो। क्यों?
2: बिल्कुल। हमारे बच्चों का भविष्य केवल उनके अंकों से नहीं बल्कि उनके व्यवहार और संस्कारों से भी तय होता है। इसलिए आज से ही उनके अंदर ये भावना विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूँ, हम सब साथ हैं।
1: हाँ, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनमें सहयोग करने की भावना तभी विकसित होगी जब हम एक खुद उदाहरण बनकर उनके सामने पेश होंगे। मतलब उनके घर के जो बड़े हैं, अभिभावक हैं, वो खुद उस चीज को करके दिखाएं ताकि बच्चे उनका अनुकरण कर सके। क्योंकि ज्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि उन्हें कड़ी आदेश दी जाती है और उनके साथ सख्ती बरती जाती है, जिसके कारण बात मानने की बजाय वे थोड़ा उसके खिलाफ चले जाते हैं।
2: बिल्कुल, और हमें भी इसका अनुसरण करना चाहिए।
1: तो अब हम एक जो हमारा जो अगला विषय है उस पर हम चर्चा करते हैं और वो है विश्व फोटोग्राफी।

0: फोटोग्राफी दिवस और फोटोग्राफी में महिलाओं का जो योगदान है उसके बारे में भी हम बताएंगे अपनी बहनों को। तो बहनों, हर वर्ष 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। यह दिन फोटोग्राफी की कला, इसके इतिहास और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का सम्मान करने के लिए होता है।
1: बिल्कुल।
0: और जैसा कि हम जानते हैं कि महिलाएं जो हैं आजकल फोटोग्राफी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, तो हम बता दें कि पहली स्थायी तस्वीर जोसेफ नाइसफोर नाइप्स ने 1826 में बनाई थी। फ्रांस सरकार ने 19 अगस्त 1849 को फोटोग्राफी की तकनीक को दुनिया के लिए घोषित किया था और इसी स्मृति में हर साल 19 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। फोटोग्राफी कला, विज्ञान और भावनाओं को जोड़ने का काम करती है बहनों। तस्वीरें पुरानी यादों और इतिहास को संभाल सकती है ना?
0: और बहनों, फोटोग्राफी के क्षेत्र में महिलाओं ने कैमरे के सामने और पीछे दोनों जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अतीत से लेकर आधुनिक युग तक महिला फोटोग्राफरों ने अपनी अनूठी कला और नजरिए से वन्य जीव, फैशन, पत्रकारिता और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है। और भारत की होमई व्यारावाला देश की पहली महिला फोटो पत्रकार थी। इन्होंने अपने कैमरे में ऐतिहासिक पलों को कैद किया और म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट और नेशनल म्यूजियम ऑफ वुमेन इन द आर्ट्स जैसे बड़े संस्थान समय समय पर पिक्चर्स बाय वुमेन जैसी प्रदर्शनियों के माध्यम से महिला फोटोग्राफरों को उत्साहित करते रहते हैं। और आज झारखंड और देश के अन्य हिस्सों में जो युवतियां हैं हमारी, वो भी प्रकृति, लोक संस्कृति और अपने आसपास के परिवेश को अपने लेंस के जरिए एक कलात्मक रूप दे रही हैं। तो वाकई रानी, हम कह सकते हैं कि महिलाएं जो हैं हर क्षेत्र में तो आगे बढ़ी रही हैं, लेकिन फोटोग्राफी के क्षेत्र में भी वे पीछे नहीं हैं। हाँ। और ये जानकर हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। और अब बातों बातों में वक्त हो चला है अपनी बहनों से विदा लेने का। तो चलते चलते हम ये बता दें बहनों कि आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। अभी के लिए दे इजाजत अपने सखियों निधि और
1: रानी को।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: गृहलक्ष्मी।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्मी गीत संगीत का कार्यक्रम। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

फिल्मी गीत संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते एक धमाकेदार गीत के साथ। फिल्म है आजा नचले, इस गाने को आवाज दी सुनिधि चौहान ने, धुन तैयार किया पीयूष मिश्रा ने और संगीत से सजाया सलीम सुलेमान ने।

Chanak,

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ಸ್ವಯಂ ಈ ಕಟ್ಟಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: विराम के बाद आप सभी श्रोताओं को स्वागत है. आप सुन रहे हैं कुछ फिल्मी गीत संगीत हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से. श्रोताओं, विराम पर जाने से पहले आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में आशिकी 2 से फिल्म से ये गाना. संगीत दिया था मिथुन ने. श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए फिल्म बजरंगी भाईजान से ये गाना, जिसे अपनी आवाजें दी हैं मोहित चौहान, प्रीतम, पलक मुच्छल ने. और इन आवाजों को संगीत का साथ मिला है प्रीतम का, और शब्दों में पिरोया है मयूर पुरी ने.

और इसी गाने के साथ आज का फिल्मी गीत संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में क्रमशः हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
2: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4थी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की। दिल्ली सरकार

0: इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियाती तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है, उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामेली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता तथा वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। बैडमिंटन में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की भारतीय जोड़ी BWF विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 315 अंक गिरकर 76,921 पर और निफ्टी 97 अंक गिरकर 24,058 पर था। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़ में दिन में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw has said that India's economic growth is now recognized globally and the country is growing at a growth range of 6-8%. He said this growth story is driven by four key pillars: investment in social, digital and physical infrastructure, inclusive growth and a strong focus on manufacturing. Addressing the Uttar Pradesh Japan Investment Summit 2026 in New Delhi today, Mr. Vaishnaw said investment is an important part of the country's growth journey, with India investing around $130 billion every year.
2: We have been growing at a very sustained pace of 6-8% growth band, with moderate under control inflation, with very good balance sheet, and making sure that the entire country grows together. This is possible because of the four pillars of our growth story: investment in social, digital and physical infrastructure.
1: The Enforcement Directorate or ED has conducted searches at 10 premises in Rampur and Saharanpur in Uttar Pradesh and Delhi in connection with a money laundering investigation involving the Maulana Muhammad Ali Johar Trust and Muhammad Ali Johar University in Rampur. The ED said the searches were carried out under the Prevention of Money Laundering Act 2002. It added the investigation relates to the alleged diversion of government contract funds through private contractors and their subsequent use, including for creation of assets for the university or the trust. The ED said that the searches were aimed at tracing the alleged proceeds of crime and recovering financial records, documents and digital evidence related to the diversion and utilization of government funds.

झारखंड भाजपा के नेताओं संग करेंगे बैठक, छात्र आंदोलन पर भी होगी चर्चा। झारखंड में नक्सलवाद के कमजोर होने के बाद पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद से आ रहे सकारात्मक परिणाम। और राज्य में हो रही बारिश से कई नदियां उफान पर, स्वर्णरेखा और खरकई नदी में बाढ़ की स्थिति गंभीर, सैकड़ों घर हुए प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार ने गंभीर अनियमितताओं के कारण रद्द और सीआईडी जांच वाली कुल 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की है। रद्द परीक्षाओं में जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षाएं, सीडीपीओ, ड्रग इंस्पेक्टर, सिविल जज, सहायक वन संरक्षक, सहायक प्राध्यापक और अन्य भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। कल देर रात जारी 8 अधिसूचनाओं में कहा गया है कि अनियमितता से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से फास्ट ट्रैक अदालत गठित करने का अनुरोध किया जाएगा। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति 2 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं के रद्द किए जाने के बाद सफल अभ्यर्थियों ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रोजेक्ट भवन के पास अभ्यर्थी सरकार के निर्णय के खिलाफ नारेबाजी कर रहे और कोर्ट का हवाला देते हुए फैसले को जल्द वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

0: की जनता बीजेपी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है।
1: जिम्मेवारी मेरे कंधों पे दी गई है कि उस जिम्मेवारी का निर्वहन मैं अपनी क्षमता से करूं, इस शासन में इस

0: गड़बड़ी की जांच की आवश्यकता पर विचार किया और अगली सुनवाई 24 अगस्त को निर्धारित की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज और न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNewsRanchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में नक्सलवाद के कमजोर होने के बाद पुलिसिंग का तरीका बदल रहा है। पुलिस ग्रामीणों के साथ बेहतर संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। कई दशकों तक नक्सलवाद की चपेट में रहे पलामू जिले के एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि जिले के सभी थाना प्रभारियों की आम लोगों से मुलाकात का समय निर्धारित किया गया है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।
1: पलामू जिले के जनता के लिए थाना प्रभारी प्रतिदिन 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ऑफिस में बैठेंगे। आम जनता जो ओडी पदाधिकारी से या थाने में किसी प्रकार की समस्या लेने आती है और जिनको थाना प्रभारी से मिलना है वो इस समय के बीच में थाना में जाकर थाना प्रभारी से मिल सकते हैं। सबसे ज्यादा प्राथमिकता जनता की समस्या सुनने के लिए दें जिससे कि आम जन की समस्या थाना स्तर पर भी निदान करने की कोशिश हमारे द्वारा की जाएगी।
0: हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। यह दिन संकट और आपदाओं के बीच मानवीय सहायता के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं के साहस और बलिदान को सम्मान देने के लिए समर्पित है। डाक विभाग की ओर से सिमडेगा के विभिन्न विद्यालयों में राखी बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। सिमडेगा के जूनियर कैम्ब्रिज स्कूल में विद्यार्थियों ने अपने हाथों से राखियां बनाई जिन्हें डाक विभाग देश के वीर सैनिकों के पास भेजेंगे। सिमडेगा पोस्ट ऑफिस के डाक सहायक राजू कुमार ने बताया कि डाक विभाग ने रक्षाबंधन को लेकर वाटरप्रूफ लिफाफा उपलब्ध कराया है।
2: राखी बनाओ प्रतियोगिता रखा गया है डाक विभाग से, सैनिक भाइयों के पास भेजा जा रहा है। किसी का बहन नहीं है, राखी नहीं पहुंच पाते हैं, डाक विभाग ने एक स्कूल से कंपटीशन के रूप में शुरू किया है। बच्चे लोग बहुत खुश हैं, हाथ से बना करके भेजा जा रहा है।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,44,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है जबकि चांदी की कीमत 2,40,000 रुपए प्रति किलो है। झारखंड में हो रही बारिश से राज्य की नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के चांडिल डैम, बोकारो जिले के तेनूघाट डैम, धनबाद स्थित मैथन डैम के कई फाटक भी खोले गए हैं। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा और खरकई नदी में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हमारे संवाददाता ने बताया कि नदियों के किनारे बसे घर प्रभावित हुए हैं।
3: जमशेदपुर में स्वर्णरेखा और खरकई नदी के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। दोनों नदियां

पर रद्द और सीआईडी जांच वाली 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं के रद्द होने के बाद नौकरी कर रहे सफल अभ्यर्थियों में आक्रोश, राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री खनिज संशोधन बिल पर झामुमो समेत अन्य दलों के विरोध से निपटने की रणनीति पर झारखंड भाजपा के नेताओं संग करेंगे बैठक, छात्र आंदोलन पर भी होगा चर्चा। झारखंड में नक्सलवाद के कमजोर होने के बाद पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद से आ रहे सकारात्मक परिणाम और राज्य में हो रही बारिश से कई नदियां उफान पर, स्वर्णरेखा और खरकई नदी में बाढ़ की स्थिति गंभीर, सैकड़ों घर हुए प्रभावित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आपने ट्यून इन किया है मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे राग देवगांधार। और आज की हमारे कलाकार हैं गिरिजा देवी।

अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम मनोरंजनी। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में कुछ गजलें सुगम संगीत के अंतर्गत।

अभी आप सुगम संगीत के अंतर्गत कुछ गजलें सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं श्रोताओं। अब हम आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से क्रमशः मिड डे न्यूज तथा दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
1: हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में एक डॉलर के निवेश पर करीब 3.6 डॉलर की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
2: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और जापान सहयोग महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़े हैं।
3: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है,

0: दल में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के नए चांसलरी परिसर की आधारशिला भी रखी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय है। इसके अंतर्गत उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटल क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास तथा सतत विकास सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की जाती है और नए अवसर तलाशे जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में भारत सिंगापुर आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी। सकलैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। NEET UG 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिसमें ये बताया जाए कि राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। NEET UG 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद पूर्व ISRO अध्यक्ष डॉ. के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान तथा उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय DNA और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 8 लाख महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया, जबकि इसके बाद 5 लाख से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों को नया वाहन, चालक और सहायक दिया जाएगा। इसके अलावा ईंधन खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उत्तरी चेन्नई में 300 करोड़ रुपए की लागत से 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के लिए बीमा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की भी घोषणा की। पंजाब पुलिस ने नवनियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है, जो नए भर्ती हुए कर्मियों के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का सत्यापन करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी

0: छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, विदर्भ, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरलम और माहे में भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई हिस्सों में अब भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी भारी मुश्किलें पैदा कर रहा है, खासकर भद्रक जिले में, जहां बैतरणी और सालंदी नदियों के उफान के कारण बड़े इलाके जलमग्न है। वासुदेवपुर, तिहिड़ी, धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली ब्लॉक के गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज 297 स्कूल और 395 आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ओड्राफ के जवानों ने केंद्रापड़ा जिले के कुलसाही गाँव में एक सरकारी आवासीय स्कूल में 4 दिन से फंसे 230 छात्रों को बचाया है। आईएमडी ने शुक्रवार से रविवार तक उड़ीसा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में कल देर रात हुई तेज वर्षा से धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त होने से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाला सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से दारमा, चौदास और व्यास घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय और धारचूला क्षेत्र से कट गया है। प्रशासन ने पुल को जल्द बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। बीआरओ के अनुसार आज शाम तक डायवर्जन रूट का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। वहीं टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट।
3: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहले से पंजीकृत और वैध RFID कार्ड वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं से श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। नए पंजीकरण पर फैसला मौसम और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा का 455 श्रद्धालुओं वाला तीसरा जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पुंछ के राजपुरा गांव के लिए रवाना हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मीनाक्षी।
0: भारत ने गोल में 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में आज श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में नीदरलैंड्स में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने 2 मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मकाऊ की जोड़ी को उन्होंने हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी वॉकओवर मिलने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस ने न्यू मार्केट इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में लगी आग में 9 लोगों की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। मृतकों में 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। 16 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 76,871 पर और निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,045 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी

0: डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधा कृष्ण समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुन रहे थे। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM के 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: कार्यक्रम जय भारती में सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रजनी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जय भारती, हमारे फौजी भाइयों के लिए समर्पित हमारा ये कार्यक्रम। उम्मीद है हमारे फौजी भाइयों को हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आएगा, क्योंकि हम करते हैं अपने देश से प्यार और अपने फौजी भाइयों से प्यार। तो आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला गाना, फिल्म हमसे, जो 1991 में आई थी। इस गाने को अपनी आवाजें दी हैं सुरेश वाडकर, अलिका याग्निक और उदित नारायण ने। संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और धुन तैयार किया है आनंद बख्शी ने।
1: चिक चिक बम बम बम चिक चिक बम।

0: कार्यक्रम आगे जारी रहेगा, लेते हैं ये विराम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ஸ்வயம் நிதி கட்டுப்பாடு பாரதிய சேனா.
1: विराम के बाद एक बार फिर से सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम जय भारती में. विराम पर जाने से पहले श्रोताओं आप सुन रहे थे उषा उत्तव की आवाज में शान का गाना. संगीत दिया था आर डी बर्मन ने और शब्द रचना थी आनंद बख्शी की. तो अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं.

असफलताओं से ना घबराकर फिर से उठकर खड़े होने की आशा, कुछ कर गुजरने की आशा, कठिनाइयों से लड़ने की आशा, अपने और अपनों के चेहरे पर मुस्कान की आशा, हर सुबह जिंदगी की एक नई आशा। जब हर रात को सोने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें जिंदगी की एक नई सुबह मिली है जिसे हम पूरी आशा के साथ जीने की कोशिश करते हैं। हर अपनी जिंदगी में आशा का साथ कभी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हीं आशाओं को अपने में समेटता हुआ हमने लिया है अगला गाना फिल्म इकबाल से। इस गाने को सुनते हैं के और सलीम मर्चेंट की आवाज़ों में। ये गाना सुनिए, संगीत है सलीम सुलेमान का और शब्दों में पिरोया है इरफान सिद्दीक ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्यासा सावन से ये प्यारा सा गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इसी गाने के साथ आज का जय भारती कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राज्य सरकार द्वारा जेपीएससी और जेएसएससी की 22 परीक्षाओं को रद्द किए जाने के खिलाफ सफल अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो गया है। भारी बारिश के बीच प्रभावित कर्मचारियों ने झारखंड मंत्रालय के समक्ष न्याय दो या फांसी दो के नारों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार के इस फैसले ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा और सीजीएल के सफल अभ्यर्थियों को सड़क पर ला दिया है।
1: हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट से लड़े, के बाद हाई कोर्ट का आदेश आया। हम लोगों के ऊपर कोई मंत्री कोई नेता का एहसान नहीं है, हम लोगों के ऊपर कोर्ट है, कोर्ट के आदेश से आए हैं। समझना चाहिए मुख्यमंत्री को, तानाशाही नहीं चलेगा।
2: मेरा वर्क कोई आज रात में एक उठ के ऑर्डर निकाल देता है और बोलता है कि तुम जेन्युइन नहीं हो, तो आपको कौन अथॉरिटी दिया ये सवाल उठाने वाला? 26 सालों का हिसाब दो, जब से झारखंड बना है तब से एक नियुक्ति प्रक्रिया यहां ढंग से नहीं हो पाई है।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने 11वीं, 12वीं और 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने तर्क दिया कि जिस इंटरव्यू बोर्ड में सीआईडी के एडीजी और आईएएस अधिकारी शामिल थे, वहां सीआईडी जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। मरांडी ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के लिए इस मामले को तुरंत सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए।
3: और सबों की एक ही मांग कि वे पूरे मामले को जांच सीबीआई से करानी। जब सीबीआई से जांच कराना स्वाभाविक है, वो लोग बताते हैं किस प्रकार से वहां जो उनकी लोकल एजेंसी है, चाहे सीआईडी है, चाहे लोकल पुलिस प्रशासन है, चाहे वहां के जो पदाधिकारी जिन लोगों ने मिलजुल करके गड़बड़ किया, पर्दा ढांकने का ही काम किया, अपराधियों को बचाने का ही काम किया।
0: 11वीं, 12वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग पर राज्य सरकार की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में केवल राजनीतिक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। तिर्की ने सरकार के कामकाज का बचाव करते हुए विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया।
4: जहाँ तक सीबीआई की लगातार बात उठती है, बाबूलाल मरांडी जी का ये जो गड़ा हुआ नरेटिव है, उनको बतलाना चाहिए कि सीबीआई ने कितने सारे केसेस को संपन्न करके रिपोर्ट जमा किया है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रश्न पत्र लीक रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने और सुरक्षित बुनियादी ढांचा तथा स्थायी तंत्र बनाने पर जोर दिया है। नीट यूजी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय से राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने पर हलफनामा मांगा है। केंद्र ने परीक्षा सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने लिट्टीपाड़ा प्रखंड के झेनागढ़िया उत्क्रमित विद्यालय स्थित बूथ संख्या 95-96 और कमल घाटी पंचायत भवन स्थित बूथ संख्या 75 का जायजा लिया। इसके अलावा हिरणपुर प्रखंड के राजकीयकृत प्लस टू उच्च विद्यालय स्थित बूथ संख्या 127 और 128 का भी निरीक्षण कर एसआईआर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान श्री कुमार ने नो मैप वाले मतदाताओं के घर घर जाकर उनके दस्तावेजों की जांच की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे एचएसी को पटरी पर लाने के लिए संसद की औद्योगिक स्थायी समिति की 6 सदस्यीय टीम सांसद तिरुचि शिवा के नेतृत्व में आज 3 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंच रही है। समिति एचएसी प्रबंधन

0: और श्रमिक संगठनों के साथ बैठक करेगी। कल टीम तीनों प्लांटों का स्थलीय निरीक्षण कर मशीनरी और संसाधनों का जायजा लेगी। साथ ही झारखंड की कैबिनेट सचिव वंदना दादेल के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक होगी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और मॉनसूनी बादलों के कारण राज्य में कल से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। राजधानी रांची में सबसे अधिक 56 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 12 घंटों में मॉनसूनी बादल कमजोर होकर आगे बढ़ जाएंगे। बोकारो के मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता शुरू हुई, जो 29 अगस्त तक चलेगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने तीर चलाकर इसका उद्घाटन किया। राज्यपाल ने वर्ष 2014 के बाद देश की बढ़ी खेल संस्कृति की सराहना की।
1: 2014 में जब मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली है, उन्होंने खेल के प्रति अपनी विशेष रुचि दिखाई और अब खेलों में व्यापक परिवर्तन भी हो रहा है और खिलाड़ियों में आत्मविश्वास की भी बढ़ोतरी हो रही है। खिलाड़ी ने दुनिया में पहचान बनाई है और तीरंदाजी अपने आप में महत्वपूर्ण खेल होता जा रहा है। झारखंड की पहचान तीरंदाजी में हो रही है अच्छे ढंग से और यहाँ की खासतौर से लड़कियों ने अच्छी पहचान बनाई है।
0: प्रतियोगिता में देश भर के 900 से अधिक तीरंदाज भाग ले रहे हैं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। मिडी वे 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग
2: उमंग उमंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं।
2: घड़ी की सुइयां कभी नहीं रुकती, समय भी किसी का इंतजार नहीं करता। जो हर पल का सम्मान करता है, भाग्य भी उसी का साथ देता है। समय बहुत अनमोल है, उसकी कद्र करें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर संदेश के लिए, जिसने सच में हम सबको समय का महत्व समझाया। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता के साथ साथ डिंपल देवांगन।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी।
2: सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से।
3: श्रोताओं एक बार फिर से करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जी
3: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी कुछ ऐसे शब्दों की जो हैं तो हिंदी, संस्कृत और उर्दू के, लेकिन अब वे विश्व की कई भाषाओं में विशेषकर अंग्रेजी में इस्तेमाल किए जाते हैं।
2: आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं कुछ और शब्दों को जो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं, लेकिन अब दुनिया भर में प्रयोग में लाए जाते हैं। श्रोताओं, आपने बंगलो यानी बंगला शब्द अवश्य सुना होगा। शायद ही कोई सोचे कि ये शब्द भारतीय है,

0: अक्सर ऐसा लगता है कि ये शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन तथ्य कुछ और है।
1: जी श्रोताओ, तथ्य ये है कि अंग्रेजी का बंगला शब्द बंगला या बांग्ला से निकला है।
0: जी।
1: इसका अर्थ था बंगाल शैली का मकान। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में जब देखा कि भारत के बंगाल क्षेत्र में एक मंजिला चौड़े बरामदे वाले घर गर्मी के मौसम के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं,
0: जी।
1: तो उन्होंने भी अपने रहने के लिए इसी प्रकार के मकान बनवाए और उन मकानों को उन्होंने बंगलो कहना शुरू किया। धीरे धीरे ये शब्द पूरे ब्रिटिश साम्राज्य और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तो श्रोताओ, जानकारी ये थी कि बंगला शब्द बांग्ला शब्द से निकला है।
0: जी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अनेक देशों में आज भी जहाँ जहाँ ब्रिटेन का प्रभाव रहा, एक मंजिला स्वतंत्र मकान को बंगलो ही कहा जाता है।
1: आशा है श्रोताओ कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर बड़ी रोचक लग रही होगी, है ना? आइए अब सुनते हैं एक और।

0: एक रंग ही नहीं बल्कि अनुशासन और सेवा का प्रतीक भी माना जाता है।
1: और अब बात करते हैं एक और बहुत प्रचलित शब्द की। शब्द है लूट। अंग्रेजी का लूट शब्द भी भारत से गया है। ये शब्द हिंदी के लूट या संस्कृत के लुंट शब्द से संबंधित है। इसका अर्थ है छीन लेना या लूट लेना।
0: श्रोताओ, अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज लोग अधिकतर जज, सैनिक या प्रशासनिक अधिकारी होते थे।
1: जी।
0: न्याय करने की प्रक्रिया में या प्रशासनिक मसलों में अंग्रेज अक्सर ये शब्द भारतीयों द्वारा सुनते थे।
1: जी।
0: उन्होंने इस शब्द को यानी लूट शब्द को अपनी भाषा में अपना लिया।
1: जी।
0: आज अंग्रेजी समाचारों, फिल्मों और पुस्तकों में लूट शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में होता है।
1: और अब लेते हैं दो और शब्द जिनसे सभी परिचित हैं। वो शब्द हैं योग और गुरु। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ योग शब्द न सुना हो। योग शब्द संस्कृत धातु युज से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना।
0: श्रोताओ, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की जीवन पद्धति है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया जिसके बाद ये शब्द पूरी दुनिया में और अधिक लोकप्रिय हो गया। इसी प्रकार से गुरु शब्द भी संस्कृत से आया है।
1: आज भारतीय अंग्रेजी में ये प्रचलन हो चला है कि किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी गुरु,
0: मार्केटिंग गुरु
1: या म्यूजिक गुरु।
0: श्रोताओं, दूसरी भाषाओं में शब्दों का यह स्थानांतरण भारत की ज्ञान परंपरा का विश्व पर गहरा प्रभाव दर्शाता है।
1: जी, तो प्रिय श्रोताओं, भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती बल्कि संस्कृति की वाहक भी होती है। जब किसी देश के शब्द दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचते हैं तो वे अपने साथ उस देश का इतिहास, संस्कृति और जीवन दर्शन भी लेकर जाते हैं। जिस भाषा के शब्द दुनिया अपनाने लगे, समझिए उस संस्कृति ने दुनिया को कुछ अमूल्य दिया है।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। तो अब हो जाइए तैयार आज के प्रश्न के लिए। हमारा आज का प्रश्न है, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
0: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: जी
0: श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, नदी का सफर।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में नदी की यात्रा के बारे में बताते हुए उसके उद्गम, प्रवाहित होने के क्षेत्रों, जलप्रपात बनने और अंततः समुद्र में मिल जाने के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है।
2: नमस्कार साथियों, कल कल करती नदियाँ धरती की नसों में बहता हुआ जीवन है जो हर प्राणी को जीवन दान देती है।
3: नदियाँ प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं, जिनकी गोद में न जाने कितनी मानव सभ्यताएं पनपी, फूली फली और विकसित हुई। नदियाँ न केवल जल का स्रोत हैं, बल्कि जीवन, संस्कृति और सभ्यताओं की आधारशिला हैं। अक्सर एक जिज्ञासा हमारे मन में उठती है कि नदियों का उद्भव कैसे हुआ, तो आइए सुनते हैं एक रोचक कहानी, नदी का सफर।
2: एक समय था जब पृथ्वी पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ये लगभग 20 लाख वर्ष पहले की बात है। इस काल को हिमयुग यानी आइस एज कहते थे। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ा, बर्फ पिघलने लगी थी और पेड़ पौधे भी उगने लगे थे।
3: इस तरह से हजारों वर्ष बीत गए। हिमालय पर्वत पर कहीं एक बर्फ की चोटी थी और वहीं रहती थी एक चंचल और चमकदार बर्फ की बेटी, नाम था हिमशिला। वो बहुत बड़े ग्लेशियर यानी हिमनद में रहती थी।
2: एक दिन सूरज ने मुस्कुरा कर कहा,

0: चिल्ला, अब तुम्हें धरती पर उतरना होगा। वहां नीचे बहुत से जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें तुम्हारे जल की आवश्यकता है।
1: क्यों, मैं क्यों नीचे जाऊं? मैं तो यहाँ ऊपर बहुत खुश हूँ। बादल मेरे साथ आंख में चौली खेलते हैं। यहाँ यहाँ सब कुछ कितना शांत है, मैं नीचे क्यों जाऊं?
0: पुत्री, ऊपर रहोगी तो केवल ठंडी बर्फ बनकर यहीं पड़ी रह जाओगी। हमें यूं ही पड़े नहीं रहना चाहिए, किसी के काम भी तो आना चाहिए।
1: अच्छा, वो सोच में पड़ गई। फिर सूरज ने अपना ताप और बढ़ाया। फिर धीरे धीरे हिमशिला ने मन बना ही लिया पर्वत से उतरकर नीचे जाने का। वो एक छोटी सी धार बन गई और बहने लगी तीव्र गति से ढलान की ओर।
2: रास्ते में कई भूमिगत जलधाराओं ने भी यात्रा में उसका साथ दिया। उसकी गति और बढ़ गई। अचानक उसने महसूस किया, कोई उसे खींच रहा है। वो डर गई और बोली,
1: अरे ये कौन मुझे नीचे खींच रहा है? पर्वत पर तपस्या करने वाले एक बूढ़े साधु ने हंसकर कहा,
0: पुत्री, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। डरो नहीं, धरती माँ तुम्हें अपने पास नीचे बुला रही है ताकि उसे जीवन मिल सके। वो खुशी खुशी बहने लगी।
1: देखो देखो देखो देखो, जरा देखो, अरे ये क्या, और भी इतनी सारी छोटी छोटी धाराएं बहती हुई आ रही हैं मेरी तरफ। हाँ देखो ना, मेरी तरफ।
2: ये सभी आपस में मिल गईं और सभी मिलकर बहने लगी। अब उन्होंने नदी का रूप धारण कर लिया था। कहने लगी,
1: सखी, अब हम सब मिलकर बहेंगी, हम सब एक दूसरे की सहायक हैं।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब मिलकर बहेंगी।
1: हाँ।
2: अब मिलकर बहने के कारण उनकी बहने की ऊर्जा और बढ़ गई। फिर क्या था, छोटी सी जलधारा ने अब एक विशाल नदी का रूप धारण कर लिया। मार्ग में कई पत्थर मिले, चट्टानें मिली, मार्ग रोकने की भी कोशिश की, लेकिन नदी को तो अब बस एक ही धुन थी,
1: मुझे तो बस आगे बढ़ना है, आगे और आगे।
2: एक दिन की बात है, बहते बहते नदी एक बहुत ऊंची चट्टान के पास आ गई। नीचे देखा तो बहुत गहराई थी, उसे बहुत डर लगा। क्षण भर के लिए वो रुक गई और सोचने लगी,
1: हाँ अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं।
2: उसने दाएं बाएं देखा, तब पर्वत ने कहा,
0: कूद जाओ ना।
1: कूद जाऊं?
0: डरो मत।
1: हाँ?
0: धरती माता तुम्हें अपनी बाहों में ले लेंगी।
1: अच्छा, तो कूद जाती हूँ। कूद गई।
4: मनोरम दृश्य, मनोरम

0: खुश देखकर नदी को बड़ी खुशी हो रही थी। और हाँ, एक बात और है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो रुकी नहीं, अपने लक्ष्य की ओर बहना जारी रखा। कई बार रास्ते में या पहाड़ों पर वर्षा हुई तो उसका जल प्रवाह और भी बढ़ गया।
1: फिर क्या था, भला भूमिगत झरने भी क्यों चुप रहते, उन्होंने भी पूरा योगदान दिया और वो भी शामिल हो गए नदी की इस रोमांचक यात्रा में।
0: वो आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसने कई गांव देखे जहां लोग और पशु पक्षी प्यासे थे। पेड़ पौधे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सारे खेत सूख गए थे। नदी बोल उठी,
2: अब समझी, सूरज दादा ठीक ही कहते थे, मेरा बहना दूसरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां जहां मैं जाती हूँ वहां हरी हरी घास उगाती है, पेड़ खुशी से झूमने लगते हैं, पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं, लोग मुझे माता कहते हैं, मेरी पूजा करते हैं। न जाने कितनी सभ्यताओं को मैंने अपनी गोद में फलते फूलते और पनपते देखा है, लेकिन कई बार मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मुझ में कूड़ा फेंकते हैं, शहरों की प्रदूषित नालियां तक मुझ में बहा देते हैं और मैं बीमार हो जाती हूँ।
1: जब वो सागर तक पहुंची तो सागर ने कहा,
3: पुत्री तू इतनी दूर कैसे आ गई?
2: माँ धरती का गुरुत्वाकर्षण मुझे यहाँ तक बहा कर ले आया।
3: पुत्री तू बहती रही, इसीलिए जीवन चलता रहा।
2: अच्छा,
3: तू रुकती तो जीवन चक्र ही रुक जाता। चलती रहो।
2: मैं चलती रहूंगी। हाँ, मैं हमेशा
1: चरैवेति, यही तो जीवन है।
0: चरैवेति, नदियों

0: शिक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है हेलेन केलर।
2: इस कार्यक्रम में दिव्यांग अमेरिकी महिला हेलेन केलर के जीवन और दिव्यांगता से उनके संघर्ष और विजय की गाथा का सप्रसंग उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार वे विश्व की करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं।

0: आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका नाम है हेलन केलर।
1: हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब ये 2 साल की हुई तो बहुत बीमार पड़ी और
2: डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना?
3: मिसेस केलर, मुझे बेहद अफसोस है, पर हेलन अब कभी देख, बोल और सुन नहीं पाएगी। हिम्मत रखिए मिसेस केलर, हिम्मत रखिए।
0: हेलन की शिक्षा उसकी मां के लिए अब एक चुनौती बन गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेलन की देखरेख और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अनुभवी अध्यापिका को चुना, जिनका नाम था मिस सेलिवन।
1: आओ हेलन, मेरे पास आओ। हाँ, इधर। मैं हूँ सेलिवन। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, बहुत सारे काम एक साथ करेंगे। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, ऐसे। दोस्त हूँ ना तुम्हारी। शाबाश। इस तरह एनी सेलिवन ने हेलन को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो भी शब्द हेलन को सिखाना होता वो उसके हाथ पर लिख देती थी। इस तरह पढ़ते हुए हेलन ने सबसे पहले गुड़िया शब्द सीखा। हेलन, आओ, आज तुम्हें एक शब्द लिखना सिखाती हूँ। हेलन है गुड़िया जैसी, तो हम लिखते हैं तुम्हारे हाथ पर गुड़िया। लाओ हाथ दो। गुड़िया।
0: अचानक एक दिन बाग की सैर करते हुए पानी का नल देखकर मिस सेलिवन के मन में एक विचार आया।
1: अरे, ये पानी का नल? हाँ, अगर पानी का स्पर्श कराकर हेलन के

0: दूसरे हाथ पर पानी लिखूं तो कितना अच्छा होगा। अभी देखती हूँ। ये रहा पानी का नल। हेलेन, हेलेन, अपना हाथ मुझे दो। हाँ, शाबाश। अच्छा, अब अपनी हथेली खोलो। ऐसे, हाँ। अच्छा, अब मैं एक शब्द लिखूंगी तुम्हारी हथेली पर। देखो, मैं लिख रही हूँ पानी। हाँ हाँ, शाबाश। पानी। पानी। एक बार फिर कोशिश करो। हाँ, यूं शुरू हुआ हेलेन का पढ़ना। अब तो वो चीजों को छू छू कर इशारे से उनके नाम पूछने लगी।
1: जल्दी ही वो अपनी अध्यापिका के मुंह और गले को छूकर बोलना भी सीख गई। यहाँ तक कि वो संगीत का भी आनंद लेने लगी।
0: मिसेस केलर
2: जी,
0: हेलेन तो अब बहुत कुछ सीख गई है। संगीत का आनंद भी लेने लगी है। आप तो खुद इतना अच्छा पियानो बजाती हैं। आज हेलेन के लिए मेरे लिए पियानो बजाइए ना।
2: जरूर, मैं अभी बजाती हूँ।

0: सिर्फ इतना ही नहीं, हेलेन उभरे अक्षरों यानी ब्रेल लिपि को पढ़ने लगी। वो अंग्रेजी के अलावा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीख गई।
1: यही नहीं, वो तैराकी, घुड़सवारी और नाव चलाने में भी रुचि लेती। हेलेन ने अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय रेडक्लिफ से स्नातक परीक्षा विशेष सम्मान से उत्तीर्ण की। हेलेन ने आत्मकथा लिखी जो एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपी। दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है।
0: बाद में उन्होंने 10 किताबें और लिखी। वो अंधेपन, बहरेपन और उनसे जन्मी समस्याओं के बारे में अखबारों में लेख लिखती रही। अमेरिका और विदेशों में अंधेपन के लिए काम करने वाली संस्थाओं से वो जुड़ गईं।
1: उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की। सभी जगह हेलेन केलर को भारी सम्मान मिला। सन 1955 में वो भारत आई। दिल्ली में विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया गया।
0: '64 में हेलेन केलर को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया।

केलर की सफलता का रहस्य था तमाम कठिनाइयों के बीच आनंद की तलाश। हेलेन अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत थी।

0: हमेशा रहेंगी।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम हेलेन केलर, और श्रोताओं इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, रांची मेलोडीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रजनी। आज है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। 1839 ईस्वी यानी 1839 में फ्रांस की सरकार ने डैस्यूगेरोटाइप प्रोसेस को दुनिया के लिए फ्री किया था। ये पहला कमर्शियल फोटोग्राफी मेथड था, इसीलिए इस दिन को फोटोग्राफी की शुरुआत का दिन माना जाता है। फोटोग्राफी तो हमारी यादों का बहुत ही अहम हिस्सा है। आज हम बैठे हैं, लेकिन अगर हम पुराने अपने एल्बम को देखें तो लगता है कि बस उसी वक्त में हम जी रहे हैं। जी हाँ, फोटोग्राफी में ऐसे ही कुछ खास बात होती है।

अभी आपने बड़ा ही प्यारा सा गाना सुना, ये कौन चित्रकार है? तो आज हम बातें करें वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की, दुनिया की पहली फोटो। क्या आप जानते हैं श्रोताओं, दुनिया की पहली फोटो 1826 ईस्वी में जोसेफ नेपेस ने ली थी। उसे बनाने में उन्हें 8 घंटे लगे थे। सोच के भी बड़ा ही आश्चर्य लगता है, 8 घंटे लगे थे। और आज जैसे जैसे समय बीतता गया, आज वही फोटो हम 1 सेकंड में 10-10 सेल्फियां ले लेते हैं। सच में विज्ञान ने काफी ज्यादा आविष्कार किया है, लेकिन फोटो से जो हमारा नाता है, जो हमारा प्यार है, वो कभी भी कम नहीं हुआ है। चाहे वो किसी की तस्वीर रखने की बात क्यों ना हो, जब प्यार मोहब्बत में हम किसी की तस्वीर को रख के और उसे दिन रात देखते हैं और ऐसा लगता है कि वो शख्स हमारे पास ही है।

आप भी मना रहे होंगे वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, आप भी निकल जाइए और कुछ न कुछ फोटो जरूर लीजिए अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ, और मनाइए इस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे को।

हम बातें कर रहे हैं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की। आप इसे सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। कैसे, वो मैं बताती हूँ। अगर आपके पास 3-4 लोग भी हैं तो आप कर सकते हैं इसे सेलिब्रेट, जैसे ओल्ड वर्सेस न्यू। अब जैसे किस आपके पास पुराने फोटो फोन है, पुराना फोन है, DSLR है और आज की फोन है, तो आप दोनों से एक ही चीज़ की सेम जगह की फोटो लीजिए और देखिए फर्क कैसा होता है। सच में आप देख के आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। या फिर आप फ्री फोटो डंप ये भी खेल सकते हैं। इसमें क्या करना है कि इंस्टाग्राम या फेसबुक पे बिना फिल्टर वाली 3 फेवरेट फोटोज डालो विथ हैशटैग वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। फिर आप 24 आवर फोटो चैलेंज भी ले सकते हैं। इसमें क्या करना है कि सुबह से रात तक, अब तो जैसे काफी समय बीत भी गया है, तो अभी भी आप क्या कर सकते हैं कि हर 2 घंटे में बाहर निकलिए और फोटो खींचिए, अलग अलग ग्रुप बनाइए और फोटो खींचिए, उसके बाद लास्ट में उसकी कॉलाज बनाइए और देखिए किसका सबसे अच्छा लगता है फोटो। और साथ में उसमें कुछ ना कुछ आप रिवॉर्ड भी रख सकते हैं। सच मानिए बड़ा ही अच्छा लगेगा। इसमें बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, बड़े भी शामिल हो सकते हैं, इसमें एज की कोई भी सीमा नहीं है। बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको। मेरी बात मानिए और आप खेलिए इसे।

आप सुन रहे हैं रांची मेलोडीज कार्यक्रम और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। श्रोताओं, आज है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और हम बातें कर रहे हैं फोटोग्राफी की, तो हमने बहुत कुछ जाना इस बारे में। आपको हम ये भी बता दें कि यह तिथि 1839 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा डेग्रियोटाइप फोटोग्राफी प्रक्रिया की घोषणा की स्मृति में मनाई जाती है, जिससे यह तकनीक दुनिया के लिए एक मुफ्त उपहार बन गई है। हाल के वार्षिक समारोह में स्थानीय परिवेश के माध्यम से ये व्यक्तिगत कहानी कहने और कलात्मक दृष्टिकोण को उजागर करने के लिए भी इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। हमने आपको बताया कि आप इसे कैसे मना सकते हैं, तो आप इसी तरह से मनाएं जैसे हमने आपको बताया। और भी कई सारे तरीके हैं, जैसे शाम के वक्त में आप अपने हाथ से किसी शेडो फोटो चैलेंज बनाइए, अपने हाथ से आकृतियां बनाइए और उसकी फोटो लीजिए, इस तरह से भी आप इसको मना सकते हैं। पुराने फोटोज को निकालिए, उन्हें देखिए, अपनी यादें ताजा कीजिए अपनों के साथ में, तो सच में ये एक यादगार लम्हा बन जाएगा आपके लिए। आप बारिश हो रही है, बारिश होते हुए के समय के फोटो ले सकते हैं, बारिश के बाद की आप फोटो ले सकते हैं, घर के अंदर आप खिड़की से आती हुई रोशनी में से चाय कॉफी का शॉट भी ले सकते हैं। आप देखते होंगे कि कई लोग फोटोग्राफी में अपना नाम कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर फोटो खींच के अगर वो आप किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं तो वहाँ भी आप की प्रतिभा को सराहना मिलती है। तो मैं यही कहूंगी कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे में आप भी फोटो खींचिए, अपनी अगर आप में प्रतिभा है तो उसे निखारिए, और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो पुराने फोटोज को निकालिए और देखिए।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से ही बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा छात्रों का आंदोलन आगामी दो महीनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जेएसएससी और जेपीएससी परीक्षाओं को रद्द करने के बड़े फैसले के बाद छात्र संगठनों ने यह निर्णय लिया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने खान एवं खनिज संशोधन

विधेयक 2026 को लेकर फैल रहे भ्रम को खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून से झारखंड का खनन राजस्व समाप्त नहीं होगा। इसका उद्देश्य निवेश और उत्पादन बढ़ाकर राज्यों के राजस्व आधार को मजबूत, स्थिर और प्रतिस्पर्धी बनाना है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी बोकारो स्थित चिन्मय विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुईं। इस खास मौके पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय ने युवा मस्तिष्कों को संवारने और शिक्षा के क्षेत्र में अपने 50 प्रेरणादायक साल पूरे कर लिए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ और महेशपुर विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने ड्राफ्ट मतदाता सूची की जांच करते हुए अधिकारियों को पात्र लोगों के नाम जोड़ने और अपात्रों के नाम हटाने के निर्देश दिए। साथ ही 24 अगस्त से होने वाली सुनवाई की तैयारियों की समीक्षा की। गोड्डा पुलिस ने राजाभेटा में छापेमारी कर 1 किलो 400 ग्राम गांजा और 76 पीस नशीला सॉल्यूशन बरामद किया है। मामले में तस्कर संदीप मंडल को गिरफ्तार किया गया है। एसडीपीओ आकाश भारद्वाज ने बताया कि जिले में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की गई है। और पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित सरकारी अनाज गोदाम में आज 5.5 फीट लंबा ब्लैक कोबरा घुसने से हड़कंप मच गई। सूचना पर पहुंचे वनकर्मी मोहम्मद असरफुल शेख ने कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू किया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:02 हो चुके हैं। इस वक्त आप सुनेंगे कार्यक्रम बढ़ते कदम। आज इसमें आप भेंटवार्ता सुनेंगे, विषय है जल संरक्षण। भेंटवार्ताकार है मनोज कुमार, जो कि जल संरक्षण पर वर्षों से काम कर रहे हैं। इनसे बातचीत कर रहे हैं कमलेश कुमार मिश्र। प्रस्तुति है प्रभु शरण की।
1: नमस्कार, बढ़ते कदम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार मिश्र। उम्मीद करता हूं कि बारिश के इस मौसम में आप खुद का ख्याल रख रहे होंगे। बहुत ज्यादा भी वायरल चला हुआ है, ऐसे में आप अपना अपने बच्चों का ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और एक कदम हमेशा आगे बढ़ाएं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और कार्यक्रम की भी कोशिश यही होती है कि हम अपने कार्यक्रम के हर एक नए अंक के माध्यम से एक नई जानकारी आप तक पहुंचाएं, चाहे वो सरकार के द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाएं हो या फिर इनिशिएटिव्स हो या कुछ वैसे लोगों के प्रयासों को हम आप तक पहुंचाते हैं जो समाज में एक सकारात्मक बदलाव करते हैं, जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं। आज कार्यक्रम में हम एक ऐसे ही व्यक्तित्व को हमने शामिल किया है। उनका नाम है मनोज कुमार, जो पिछले कई वर्षों से जल संरक्षण पे काम कर रहे हैं। एक ऐसा विषय जो हमारे लिए, आपके लिए और पूरे समाज के लिए बहुत जरूरी है। हम सभी देख रहे हैं कि जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, जिस तरीके से मौसम करवट ले रहा है, जिस तरीके से प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, जिस तरीके से कई जगह पे पानी की दिक्कतें आ रही हैं। हम हमेशा देखते हैं कि जब गर्मी का मौसम होता है तो हम अपने ही शहर रांची की बात कर ले तो कई इलाकों में जो जल स्तर होता है वो बहुत नीचे चला जाता है और हमें पानी को लेकर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हम सबके पास एक ऐसी जानकारी होनी चाहिए, हम इतने अवेयर होने चाहिए कि जल को हम कैसे बचा सकते हैं, जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं। हमने इस पे पहले भी कार्यक्रम किया था मनोज जी के साथ और बहुत सारी जानकारियां दी थी। लगभग अभी भी एक महीने है, बारिश हमारे साथ रहेगी। ऐसे में अगर अब तक आपने कोई इनिशिएट नहीं किया है तो आप यहां से भी इनिशिएट कर सकते हैं। साथ ही किस तरह के अब और प्रयास हो रहे हैं, क्या एक बदलाव आ रहा है लोगों में और मनोज जी के प्रयास से कितने लोगों में एक जागरूकता आई है और हम कैसे जागरूक हो सकते हैं, आज यही विषय है। तो हम बात करेंगे मनोज जी से, समझने की कोशिश करेंगे, महत्वपूर्ण विषय है जल संरक्षण। मनोज जी, कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद बिहार।
1: मनोज जी, बहुत अच्छा लगता है आपसे जब भी बात करता हूँ। पहले भी हमने कार्यक्रम किया था और बहुत सारे सुझाव आपने दिए थे और आज फिर आपको कार्यक्रम में हमने शामिल किया है और बहुत सारे श्रोता आज सुन रहे हैं। सो मनोज जी, पहले तो बताएं कि इस बार

0: में क्या कुछ खास रहा आपके लिए?
1: देखिए, इस बार के बारिश में खास ये रहा कि लोगों को बहुत हम कह सकते हैं अधिक गर्मी के बाद बारिश आई, और जुलाई के 3 सप्ताह तक तो बारिश उतनी तेज गति से नहीं हुई, और कई इलाके में जुलाई पूरे बीत जाने के बाद भी बोरिंग में पानी नहीं आया। तो लोगों में ये सही समय था जागरूकता फैलाने का कि देखिए, आप बारिश के भरोसे बैठे हैं, बारिश पूरी नहीं हो रही है, लेकिन जो बारिश हो रही है वो आपके लिए सोना से भी कीमती है। क्योंकि अगर इसे आप बेवजह अपने छत से पाइप के जरिए नालियों में बहा रहे हैं, अगर हम बात करें रांची का, झारखंड का, तो ये पठार पे है, पहाड़ी इलाका है, ऊंचाई पे है, और यहाँ का पानी बारिश का अगर हम नहीं रोकते हैं तो यही बारिश का पानी बिहार में बाढ़ लाता है, विनाश लाता है। जबकि अगर इस बारिश के पानी को झारखंड में रोक दें तो बिहार में विनाश भी नहीं आएगा और झारखंड में विकास भी होगा। लोग प्यासे नहीं मरेंगे, खेतों में पर्याप्त सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो जाएगी। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं। समस्या कहाँ है, एक दूसरे के प्रति टकटकी निगाह से देखते हैं, मतलब जनता चाहती है सरकार कुछ करे और सरकार चाहती है जनता खुद करे। इसी उदाफोह की स्थिति में हमारी धरती धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। एक तरफ जहां राजस्थान पानी के लिए लोग तरसते थे, आज वो राजस्थान झारखंड बनता जा रहा है, पानी का वहां दिक्कत नहीं है, और हमारा झारखंड राजस्थान बनता जा रहा है। सिर्फ सोच बदलनी है हमें। मतलब हम लोग कहते हैं ना कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इस तरह से बहुत से प्रदूषण हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रदूषण है वो है मानसिक प्रदूषण। लोगों का मेंटल पॉल्यूशन इस तरह से बढ़ गया है कि बस जब जरूरत होती है तो उस समस्या को याद करते हैं, अपना भूल जाते हैं। जैसे अगस्त के प्रथम सप्ताह से अधिकतर बोरिंग में पानी आ गया, अब लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग या जल संरक्षण की बात करें तो बोलते अच्छा, इस बार तो काम चल रहा है, अगली बार देखेंगे, और ये अगली बार कभी नहीं आता है। तो इस बार यहाँ के अखबार मीडिया में प्रमुखता से हमारे इंटरव्यू को छापा गया कि कैसे 20 सालों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रति हमने जो जागरूक किया।
0: मनोज जी, इसका मतलब है कि ये एक हाई टाइम आ गया है। देखिए, एक बहुत अच्छे नोट पे आपने कार्यक्रम की शुरुआत की। आपने बताया कि जुलाई में भी बारिश नहीं हुई, 2-3 हफ्ते जब बारिश नहीं हुई, तो यानी अब लोगों को इस बात के लिए एकदम से सचेत हो जाना चाहिए कि ये हाई टाइम है, ये एक अलर्ट मोड है कि आप देख लें कि जब बहुत भारी बारिश होती थी उस वक्त बारिश का नामो निशान नहीं था। ऐसे में हमारे लिए जल संरक्षण कितना जरूरी है।
1: देखिए, ये तो है कि मौसम का जो चक्र है, जो सीजनल साइकिल होता है, वो चेंज होता जा रहा है। रांची में जनरली 5 जून से 12 जून या 15 जून तक मौसम आ जाती थी, मतलब कि बारिश शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार केरल में भी लेट से आई, और झारखंड की स्थिति तो इतनी खराब रही कि पूरा जून तो नहीं ही, जुलाई में भी बारिश बहुत कम हुई। और इसी के वजह से अगर हम कहें तो अगस्त में अच्छी बारिश हो रही है, यही राहत की बात है। लेकिन ये राहत कब हमारे लिए फायदेमंद होगा, जब वर्षा की एक एक बूंद को हम अपने घर के आसपास, अपने घर के अंदर वर्षा जल का खेती करें। मीन्स इसे ऐसे हम समझ सकते हैं कि अभी तक आप क्या करते हैं कि बोतल में पानी रखते हैं पीने के लिए, ग्लास में डाल डाल कर पानी पीते जा रहे हैं। अब बोतल को भरेंगे नहीं तो फिर दूसरा बोतल आप खरीद के लाएंगे। मतलब एक जगह की जमीन, जो आपने मकान बनाया वो बंजर हुआ, अब उस इलाके को छोड़ के दूसरी जगह में जा रहे हैं। तो ये बोतल की तरह घर बदलने से समस्या का समाधान नहीं होगा।
0: नहीं
1: हमें
0: होगा।
1: बोतल में पानी को भरना होगा, रिचार्ज करना होगा। इसके लिए देखिए, मैंने अपने घर को एक मॉडल के रूप में विकसित किया। इसमें मैंने 3 तरह का रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया है। एक तो मैंने जो अपना छत बनाया है, एक साइड में कॉर्नर में ढलवा छत ही बनाया है ताकि सारा पानी वहां आए, ऊपर जाली लगाकर पाइप के माध्यम से सभी लोग अपने घर में छत का पानी को पाइप के नालियों में बहाते हैं। और मैंने क्या किया

0: छत का बारिश का पानी पाइप के जरिए नीचे आया, तो कहीं कोई सॉकपिट बनाने की जरूरत नहीं है। आजकल इतना अच्छा टेक्नोलॉजी आया है कि एक रेनी फिल्टर है, हमने जब लिया था आज से करीब 20 साल पहले, उस समय ये 12,000 से 15,000 के बीच आती थी, 1,000 स्क्वायर फीट एरिया के, आजकल ये 3,000-4,000 में अवेलेबल है। तो इसे कुछ नहीं, उस पाइप के बीच में इसे जोड़ दे रेनी फिल्टर को, कोई बिजली की आवश्यकता नहीं है, ये पानी के प्रेशर से इसके अंदर का जो जाली है मेस घूमता है और फिल्टर करके जो ग्रे वाटर है, गंदा पानी है, उसे आप गार्डन में डाल दें और जो फिल्टर हो रहा है उस पानी को डायरेक्ट आप बोरिंग में डाल दें। हमने अपना बोरिंग में डायरेक्ट इस रेनी फिल्टर से जो पानी फिल्टर हो रहा है उसे डाल दिया, बोरिंग कभी नहीं सूखती है।
1: यानी तो मैं इसे थोड़ा सा अपने श्रोताओं को और क्लियर करना चाहूंगा, ताकि मान लीजिए जिन लोगों ने निर्माण कर लिया उनके लिए क्या समाधान है, उस पर तो हम आपसे बात करेंगे, लेकिन जो नए निर्माण की ओर आगे बढ़ रहे हैं या निर्माण की शुरुआत कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वो तो इसकी शुरुआत कर ही सकते हैं। सो ये थोड़ा सा इसे आप और क्लियर करेंगे, जैसे यानी आपका कहना है कि जिस जो छत का पानी था उसमें वो रेनी फिल्टर के माध्यम से फिर जहां पे आपने बोरिंग किया वहां पे उसको आपने कनेक्शन दे दिया कि वो ऊपर का पानी सारा बोरिंग के अंदर चला जा रहा है?
0: नहीं, जो जैसे मैंने पाइप के जरिए जो पानी नीचे जा रही थी छत का, उस पाइप को बीच में उसी में रेनी फिल्टर एक आता है पाइप के साइज का ही, 4 इंच डायमीटर का ही, उसे लगा दें तो वो क्या करता है फिल्टर करके, उसमें दो है आउटलेट, एक आपका शुद्ध पानी जो फिल्टर होकर जाएगा उसे मैंने एक टंकी में 1,000 लीटर के टंकी में डाला और वहां से पानी हमारे बोरिंग में चला जाता है, उसको बोरिंग से कनेक्ट कर दिए और जो ग्रे वाटर है गंदा पानी है उसे गार्डन में मैंने पाइप लगा दिया। तो एक एक बूंद पानी जो गार्डन में लगाया है तो उसमें क्या होता है कि उसमें मैंने ट्रेंच रिचार्ज किया है, मीन्स जो फ्लावर बेड होते हैं जहां हम लगाते हैं फूल पत्ती, उसको भी मैंने 5 फीट गड्ढा करके उसके नीचे लकड़ी का चारकोल, कोयला, ये जो चिप्स गिट्टी होता है ये सब डाल करके सब मिट्टी दिया और लगाया है, तो वहां भी पानी धीरे धीरे छन करके जमीन के नीचे चला जाता है, कभी ओवरफ्लो नहीं होता है। इसके बाहर घर के बाहर जो हमारे पेड़ पौधे बड़े बड़े लगे हुए थे ट्री, उनके जड़ के चारों तरफ मैंने गड्ढा कर दिया है ताकि वहां भी पानी जड़ के माध्यम से नीचे चला जाता है। तो ये 3 तरह का रिचार्ज सिस्टम लोग आते हैं और देखते हैं कि नहीं हमें भी इस तरह से करना है,
1: यानी एक भी बूंद तो बारिश का बर्बाद नहीं होगा।
0: जी जी, एक एक बूंद हमारे यहाँ पानी जो है वो सब धरती में किसी न किसी रूप से जाता है। दूसरा चीज एक मैं यहाँ पूरे श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि आज राजस्थान और साउथ में जो पानी का दिक्कत था वो इसलिए बदला कि वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं कि अपने घर में छत से जो पानी पाइप नीचे आती है उसमें रेनी फिल्टर लगाए, लेकिन वो बारिश शुरू होने के ठीक पहले एक कहें तो एक पर्व मनाते हैं। क्या करते हैं जो मैंने यहाँ भी शुरू किया है, जुलाई में खास करके जून के लास्ट या जुलाई जब बारिश शुरू होती है, मानसून आता है, तो छत को पूरे परिवार मिल करके पहले झाड़ू से पूरा साफ करके रगड़ के धोने के बाद ब्लीचिंग पाउडर और फिटकरी के पानी से धोते हैं ताकि सारे जर्म्स मर जाएं। उसके बाद परिवार को कहा जाता है 3 महीने जो बारिश का समय है कोई भी व्यक्ति चप्पल पहनकर छत पे नहीं आएगा। तो इस तरह से लगता है हमने इस पानी को शुद्ध करके जमीन के नीचे डाला, मीन्स हम वर्षा जल की खेती कर रहे हैं। अगर हर लोग इस तरह का खेती करना शुरू करें तो उन्हें गैलन लेके या बाल्टी लेकर पानी के लिए दूर दूर भटकना नहीं पड़ेगा।
1: आज बढ़ते कदम कार्यक्रम को जितने भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें मनोज जी दे रहे हैं, और इसकी शुरुआत तो हमें आज से करनी चाहिए, और अगर हम नए निर्माण की तरफ बढ़ रहे हैं तब तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस शुरुआत से आपको इस बात का ख्याल रखना होगा तो हम बारिश के एक एक बूंद को सेव कर सकते हैं। आपसे और चीज समझना चाहेंगे मनोज जी, ये तो हो गया कि चलिए आप जब घर बना रहे हैं उस वक्त आपने प्लान किया था तो आपने ये कर लिया, आज के डेट में मैं अगर घर बनाऊंगा तो मैं भी ये प्लान कर सकता हूं, लेकिन जिन्होंने घर बना लिया और वो उन्होंने इस तरह का कुछ भी प्लान नहीं किया, अब उनको अगर जल संरक्षित करना है, उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, क्योंकि सरकार का भी तो गाइडलाइन है, सरकार ने भी साफ गाइडलाइन रखा है कि आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, वो घरों के लिए भी हो रहा है, वो कमर्शियल्स जो कर रहे हैं जिनके होटल्स हैं और बाकी जो कमर्शियल्स काम कर रहे हैं उनके लिए भी है, तो फिर वो क्या करें जिनका निर्माण हो चुका है? मैं घर के संदर्भ में पहले समझना चाहूंगा।
0: देखिए यहाँ पे दो बात है, जो आपने एक बात कही कि सरकार

0: गाइडलाइंस या नियम कड़े कर दिए हैं कि जिनका रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होगा दुगना टैक्स लगेगा वगैरह वगैरह। मेरा कहना है पानी एक ऐसा जरूरत है जो सरकार को जरूरत नहीं है, हमारे परिवार को जरूरत है।
1: बिल्कुल,
0: सरकारी आदेश के तहत हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें शायद इस मानसिकता को
1: बदलने की जरूरत है। बिल्कुल,
0: हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है अब वो है जल ही जीवन है, मीन्स जल के बिना एक दिन, यहाँ हमने देखा है रांची के कई इलाके में लोग सुबह में बाथरूम जाने के लिए पानी नहीं है, एक बाल्टी पानी के लिए वो घूम रहे हैं। सोचिए कि क्या स्थिति होगा कि दिनचर्या के लिए पानी नहीं मिल रहा है, पीने का पानी तो जाकर के जार में ले आते हैं। तो ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है, क्योंकि पूरे शहर रांची ही नहीं अधिकतर जगह शहरों में क्या हो रहा है कि कंक्रीट का जाल बिछाया जा रहा है सड़क के किनारे, जो 4 फीट का फ्लैंक्स होता था खाली जमीन रोड किनारे, रोड को ढलवा बनाया जाता था कि बारिश के समय में दोनों तरफ रोड का पानी जाएगा उस फ्लैंक्स में, जो मिट्टी छोड़ा जाता है 4 फीट का जिसमें घास लगा होता था, धीरे धीरे रिस कर पानी जमीन के नीचे जाता था। आज पूरे शहर में ये कहें तो सरकार की योजना के तहत ही उसका साइड इफेक्ट है कि लोग क्या कर रहे हैं, विधायक फंड से सांसद फंड से तो काम होता था, आजकल जो पंचायत या वार्ड कमिश्नर बनते हैं ये लोग अपना ठेकेदारी चमकाने के लिए उन सब जगहों में टाइल्स लगवा रहे हैं, उनमें कंक्रीट कर दे रहे हैं। मतलब लोगों ने ये मन बना लिया है कि 1 इंच भी हम जगह मिट्टी का नहीं छोड़ेंगे, देखते हैं पानी कैसे जमीन के नीचे जाता है। तो ये बहुत खराब मानसिकता है। घर में फ्लावर बेड तक लोग नहीं छोड़ रहे हैं, सब में कंक्रीट कर दे रहे हैं। तो मेरा लोगों से कहना है, ये आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि कम से कम 4 फीट लंबा चौड़े का एक मिट्टी का जगह जरूर छोड़ें, बाद में भले उससे ऊपर से ढक दें और उसमें एक सॉकेट बना करके छत का बारिश का पानी जो पाइप से नालियों में डालते हैं उसे आप यहाँ डाल दें। आजकल एक बहुत अच्छा सिस्टम आया है, वो ये है कि उसमें जो पानी आप डालेंगे तो थोड़ा फिल्टर हो, साफ होकर के नीचे जाए। तो उसके लिए क्या करना है, जो 4x4 का आप गड्ढा बनाएंगे 5-6 फीट नीचे उसमें होना चाहिए डेप्थ, उसमें सबसे नीचे आप मोटा बालू दे दें, थोड़ा जो गिट्टी जिसे कहते हैं मोटा गिट्टी, उसके बाद में फिर बालू, फिर उसमें अगर हो तो लकड़ी का कोयला दे, नहीं भी देंगे तो चलेगा, फिर उसमें ईंटा डालने के बाद ऊपर में एक आजकल जियो टेक्सटाइल कपड़ा है, जियो टेक्सटाइल मतलब है धरती को ढकने वाला, उस कपड़ा को आप लगा दें, पानी फिल्टर होकर के नीचे जाएगी। और ये सभी स्कूल कॉलेजों में होना चाहिए, सभी बिल्डिंग्स में होना चाहिए, सरकारी आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अगर हम जल के लिए, जल को संरक्षित करने के लिए किसी आदेश और सजा का इंतजार कर रहे हैं तो हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मनोज जी, आज हम समाधान पे ही ज्यादा बात करेंगे, तो कहाँ पे जागरूकता में कमी आपको नजर आ रही है और किस वर्ग में ज्यादा जागरूकता की जरूरत है? क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि लोग मिट्टी रहने ही नहीं देना चाहते हैं, जबकि हम ये नहीं समझ पा रहे कि मिट्टी के बिना तो हमारी जिंदगी ही नहीं है।
0: मतलब लोग चाहते हैं उनके जूतों में गंदगी ना लगे,
1: बिल्कुल
0: खाने पीने को पानी ना मिले,
1: ना मिले,
0: यही सोच है।
1: कहाँ से शुरुआत करें मनोज जी?
0: कहा है एक थोड़ा सा इसमें सरकारी सिस्टम में भी सोच बदलने की जरूरत है
1: जी।
0: मतलब हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से जितने संसाधन हैं उसी हिसाब से वहाँ की आबादी बढ़नी चाहिए, वहाँ घर बनने चाहिए, कंक्रीटाइजेशन होना चाहिए। मतलब रांची में हमने देखा है खास के कांके रोड में लालपुर एरिया में, ये यहाँ का माने बीजी रेसिडेंशियल एरिया था, इसमें सरकार ने क्या किया, जो अपार्टमेंट का नक्शा पास कर रहे हैं तो पहले तो एक अपार्टमेंट 4 माले का बनता था, एक फ्लोर में 4 फैमिली तो 16 परिवार के लिए, मतलब मान के चलिए करीब 100 लोगों के लिए एक अपार्टमेंट होता था। अभी सरकार क्या कर रही है कि अपार्टमेंट का चेन बन रहा है, एक जगह आप देखें तो 5,000 लोग रहेंगे ब्लॉक ए बी सी डी। अब आप सोचिए 5,000 लोगों के लिए जो पानी का नीचे स्रोत होगा वो डेली कितना लाखों लीटर पानी कहाँ से आएगा। तो सरकार को ये प्लान बनाना होगा कि इतनी दूरी के बाद हम अपार्टमेंट बनाने का उन्हें नक्शा पास करें, जो संसाधन है उसके हिसाब से। दूसरी तरफ जिस इलाके में ये बड़े बड़े अपार्टमेंट बन रहे हैं तो ये अपार्टमेंट वाले तो 3-4 क्या 5-5-6-6 डीप बोरिंग

0: व्यवस्था खुद करनी होगी, सरकारी आदेश के बाद हम पानी और हवा का व्यवस्था करें। हवा मतलब है पेड़ पौधे नाम की चीज खत्म करने जा रहे हैं लोग। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है, घर के बाहर जगह नहीं है, तो बड़े बड़े ड्रम में विदेशों में पेड़ लगाया जा रहा है। आप अपने घर के आसपास चार पांच ड्रम में भी पेड़ लगाए अगर जगह नहीं है।
1: बिल्कुल, प्लांटिंग तो होती ही है, लोग अपने छत पे बहुत अच्छा प्लांटिंग कर रहे हैं।
0: हाँ, तो यही चीज, जैसे शहर में लोग क्या कर रहे हैं कि आपका दुकान के आगे देखिए, कहीं पूरे मेन रोड में चले जाए एक भी पेड़ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप दुकान के बाहर अपना बोर्ड लगाते हैं तो हर दो तीन दुकान के बाद ड्रम में एक पेड़ लगाया जाए जो मीडियम साइज का, ताकि वो ऑक्सीजन भी दे और बारिश का भी एक कारण वो बने। तो इससे क्या होगा, आपके दुकान की खूबसूरती भी बढ़ेगी, बशर्ते कि आपका सोच पॉजिटिव हो। तो हवा भी शुद्ध मिलेगा और इससे बारिश भी होगी। मतलब हम कहें, यहाँ पे एक स्लोगन हम देना चाहते हैं लोगों के लिए कि पेड़ रूपी सिम कार्ड को अगर आप अपने घर रूपी मोबाइल में लगा देंगे तो इसे कभी रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। पेड़ एक ऐसा सिम कार्ड है कि आजीवन इनकमिंग आउटगोइंग दोनों इसमें फ्री मिलता है। मतलब आउटगोइंग के रूप में ऑक्सीजन देगा और इनकमिंग के रूप में बारिश भी होगी इसके माध्यम से। तो हर घर में एक पेड़ जरूर लगाएं, यही हमारा कहना है। अब बारिश के पानी को घर में जैसे भी हो, बल्कि या तो आप रेनी फिल्टर लगाएं या कॉकपिट बना करके इसे जरूर धरती के नीचे डालने का प्रयास करें।
1: बहुत बहुत सही बात आपने कही। और एक एक मुझे एक और समस्या, जैसे आपने बताया कि जब आप अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना कि कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। मनोज जी, एक चीज जो और मुझे समझ में आती है कि जब हम शहर के अलग अलग इलाकों में जाते हैं, तो एक तो चीज है कि क्योंकि बहुत सारे घर बन रहे हैं, अब हर घर को तो अपना बोरिंग चाहिए, तो वो चलिए वो एक मजबूरी है, बोरिंग होगी। लेकिन अब हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि आरओ वाटर के नाम पे एक एक मोहल्ले में वैसे दो तीन दुकान छोटे छोटे हो जाने को अपना छोटा छोटा प्लांट लगा दे रहे हैं और वहां पे पानी जा रहा है, क्या ये भी हार्मफुल है?
0: देखिए, यहाँ पे दो चीज है। एक तो हम कहेंगे इसे कि आपदा में अवसर ढूंढ ले रहे हैं कुछ लोग कि चलो भाई हमारे आसपास के घरों में पानी का दिक्कत है, तो चलो हम एक आरओ वाटर नाम से बोरिंग करके पानी बेच रहे हैं। दूसरा चीज, सरकार की तरफ से लोगों की मजबूरी को देखते हुए प्रत्येक गली मोहल्ले में सड़कों पे बोरिंग करके टंकी लगाया गया, लेकिन उसमें जनता का ये भागीदारी होना चाहिए कि सरकार ने टंकी लगा दिया तो हम जो उस बोरिंग के आसपास का पांच छह घर है, वो लोग सभी अपने छत का पानी पाइप के जरिए जो लाते हैं, तो सामूहिक श्रमदान से, सामूहिक अंशदान से वो लोग क्या करें, इसे बोलते हैं सामुदायिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो सरकार ने जहाँ पे नगर निगम द्वारा बोरिंग सड़कों पे करा के HYDT टंकी लगाया गया, वहाँ जनता का फर्ज बनता है कि उसको हम सूखने ना दें, मेंटेन करने के लिए हम अपने घर का छत का पानी उसमें डालें, वहाँ एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाकर। और सरकार को ये जो लोग हर गली मोहल्ले में बिना परमिशन के, बिना लाइसेंस के और पानी बेच रहे हैं, तो इसे भी रोकना होगा। और एक चीज और हमें कहना है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, मेरा ये सुझाव है वो या तो आम नागरिक हो या सरकार हो, सभी को एज ए, माने हम कह सकते हैं कि पर्यावरणविद के रूप में मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार शहरों में हर जगह पार्क बहुत बन रहे हैं, उसी तरह से पार्क के एक कोने में छोटा सा तालाब भी बनना चाहिए, वो भी बहुत बड़ा रिचार्ज पिट का काम करेगा उस इलाके का। और तालाब जो बने उसे कम 3 से 4 साल बाद लोग श्रम दान करके उसके नीचे का गाद निकालें, जिसको हम लोग कहते हैं डिसिल्टेशन करना। नहीं तो तालाब भरा रहने के बावजूद गाद भरा होने के कारण नीचे ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता है। गांव में लोग देखते हैं पोहरा अखरा तालाब जो होता है, तो सब लोग मिल करके मिट्टी निकाल करके तालाब के चारों तरफ मेड़ को और ऊंचा करते हैं। क्यों? कि इस बार बारिश का पानी होगा तो चलो फिर नीचे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। तो हमें अपने गाँव के सोच संस्कृति की ओर लौटना होगा, तभी शहर बचेगा, अन्यथा कहाँ भागेंगे। हर एक शहर दूसरे शहर की ओर देख रहा है, पानी कहाँ मिलेगा। तो सोच बदलिए, पानी आपके घर में खुद मिलेगा।
1: सही बात है, बहुत। और

0: मुझे लगता है कि एक जो अब जो हमारे बच्चे हैं, चाहे हम स्कूल की बात कर ले, कॉलेजेस की बात कर ले, यहाँ पे जल संरक्षण को लेकर एक बहुत ही व्यापक स्तर पे अब बच्चों के साथ वार्ता की जरूरत है, बच्चों को समझाने की जरूरत है, क्योंकि यही हमारे न्यू जनरेशन है, यही हमारे भविष्य है। तो चीजों को बदलना है तो क्या इस जगह पे हमें जल संरक्षण को लेकर जागरूकता व्यापक तरीके से करने की जरूरत है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, नई जनरेशन को ये बताना होगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों जरूरी है, होता क्या है, और मामूली से खर्चे में इसको लगाया जा सकता है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि स्कूल में आप जैसे मीडिया बंधु भी आगे आए, और हम समय देने को तैयार हैं कि स्कूल में बच्चों के द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया जाए। एक ईंट या एक पत्थर भी उसने उसमें डाला तो वो घर में जाकर अपने पेरेंट्स को बताएगा, आज हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया अपने स्कूल में, ताकि हमारे स्कूल का पानी स्कूल के धरती के नीचे ही रहे, हमारे स्कूल में पानी की दिक्कत कभी ना हो। तो इस तरह से पेरेंट्स में भी जागरूकता जाएगी, और ये बच्चे जब आगे खुद कमाने लगेंगे, अपना घर बनाएंगे, तो मेरा मानना है कि वो तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की माता को जरूर समझेंगे। तो
0: बिल्कुल।
1: स्कूलों में इसका लाइव डेमो के साथ निर्माण होना चाहिए।
0: क्या एक मैसेज है मनोज जी, आज कार्यक्रम बढ़ते कदम में बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, महिलाएं सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, बड़े सुन रहे हैं, उन्हें क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप?
1: मैसेज हम यही देना चाह रहे हैं कि आप ये समझें कि अगर जल जो धरती के नीचे है लिमिट है, सीमित है, मतलब कि भूगर्भ जल अनंत है, ये भ्रम है, और अगर उसे रिचार्ज नहीं करेंगे हम लोग वर्षा जल से, तो जो नारा अभी हम सुने हैं जल ही जीवन है, कहीं ये नारा बदल कर जल ही जहर है में न तब्दील हो जाए, क्योंकि नीचे का पानी धीरे धीरे जहरीला होता चला जाएगा अगर रिचार्ज नहीं करेंगे। इसलिए अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लें, हमें हर हाल में वर्षा जल को धरती के अंदर डालना है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप काम कर रहे हैं, और समाज में इस बदलाव के लिए आपके इस प्रयास का आकाशवाणी का पूरा परिवार आपको बधाई देता है, शुभकामना देता है। आप ऐसे ही काम करते रहें और आपके साथ पूरा समाज जगे, हर एक लोग एक कदम आगे बढ़ाएं, जल संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम बढ़ते कदम में शामिल होने के लिए।
1: धन्यवाद।
0: बढ़ते कदम कार्यक्रम के आज के इस अंक में हमने पर्यावरणविद, हमने जो वर्षों से जल संरक्षण पे काम कर रहे हैं, मनोज कुमार से बात की, और एक सराहनीय पहल कोशिश समाज को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने का, आप भी एक कदम आगे बढ़ाएं। जल ही जीवन है हम सभी जानते हैं, और जब एक दिन हमारे टंकी पे पानी नहीं आता है तो हम किस कदर परेशान होते हैं, हम सब इससे गुजर रहे हैं। आपके किचन पे पानी नहीं आता है, आपके नलों में पानी नहीं आता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। ये एक छोटी सी परेशानी है, ये एक संकेत है कि आने वाले समय में अगर हम नहीं सुधरे, हमने अपनी आदतों को नहीं बदला, हमने अपनी छोटी छोटी आदतों को नहीं बदला, तो ये समस्या विकराल रूप लेगी, ये समस्या हम सबके लिए जहर बन जाएगी। जरूरत है जागरूक होने की, जरूरत है शुरुआत करने की। आइए हम संकल्प लेते हैं कि जो हमारा जीवन है हम उसे संरक्षित करेंगे। कार्यक्रम के अगले अंक में फिर एक महत्वपूर्ण विषय, एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। अब मुझे यानी कमलेश कुमार मिश्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: कार्यक्रम बढ़ते कदम अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:30 हो रहे हैं। दोस्तों, ये वक्त है आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देने का। अब से कुछ ही देर में यानी 4:35 से आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ सरगम।

2 मिनट से समय क्लॉक सुनिए 5:30 से। प्रादेशिक मुख्य समाचार एक बार पुनः आप सुनेंगे शाम 6 बजे।

खेती बारी इस कार्यक्रम का वक्त होगा 6:02 का। हमारी दुनिया इस कार्यक्रम में शामिल होंगे आप 6:32 से। प्रादेशिक समाचार सुनिए शाम 7:00।

विधानसभा समीक्षा सुनेंगे आप 7:15 से आदिवासी अखड़ा। इस कार्यक्रम का वक्त होगा 7:20 का। आज आप इस कार्यक्रम को सुनेंगे मुंडारी भाषा में।

प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान सुनिए 7:45 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुन सकेंगे रात्रि 8 बजे से। जानिए क्या है सुर्खियों में 8:30 पर।

समाचार संध्या सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से 8:45 से न्यूज एट 9:09 और उर्दू में समाचार 9:15 से। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से 9:30 पर। नाटक आप सुनिए रात्रि 10:00। दस बजकर 30 मिनट पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज के कलाकार होंगे पंडित वीजी जोग। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रात्रि 11:00 से।

फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सांझ सरगम में मैं हूं आपके साथ सीमा तिवारी। बारिश की बूंदे बोलेंगी तो मन झूम जाएगा, घर के बाहर निकलना हो तो बारिश के थमने का इंतजार तो लाजमी है, और खुद से बाहर निकलना हो तो उदासी के बादल थमने का, छटने का इंतजार करना। थोड़ी हेल्प तो हम इसमें आपकी कर ही सकते हैं। खूबसूरत शाम में कुछ खूबसूरत गीत हो जाएं, और गीतों के साथ साथ हो जाएगी हमारी और आपकी कुछ बातें।

इन्हीं बारिशों में न जाने कितनी कहानियां याद आई, तेरा आना याद आया, तेरा जाना याद आया, तुझसे रूठना याद आया, फिर तुझको ही मनाना याद आया। हमारी कहानी शुरू हुई थी बारिशों में, कुछ याद है तुम्हें? एक ही छतरी के नीचे आधे आधे भीगते हुए, बरसात वाली रात में तेरा साथ ढूंढते हुए, और तुम्हें छींकता देखकर मुझे भी जो छींक आ गई थी, वो छींक झूठी तो नहीं थी।

बन के जो इश्क बरसे तेरी मेरी कहानी, हम चाहते हैं यही ना, हमारी आवाज उस तक पहुंचे जिसको हम पुकार रहे हैं, तुम सुन नहीं पाते या हमसे ठीक से चीखा नहीं जाता। ये इश्क की दुनिया है, दाग जख्म चिंगारी बेकरारी सब लेकर जाते हैं यहाँ से, कोई बदन कोरा नहीं जाता।

0: देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। हर दिन यूं तो खास है, लेकिन आज का दिन और भी खास है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है आज। हम इंसान इसलिए हैं कि हम अपने अलावा दूसरों की भी सोच सके। पता है, असली खुशी ही इस बात में है कि आपने किसी के लिए कुछ किया। किसी के वास्ते कुछ करने के बाद जो खुशी मिलती है, वो खुशी न नापी जाए और न बताई जाए। इसीलिए किसी के वास्ते कुछ करने का मौका मिले, कभी न छोड़िए, कभी न छोड़िए प्यार करते रहने की ये आदत।

0: देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

यूं गुजारे जिंदगी इंसान हंसते बोलते, जान भी जाए तो मेरी जान हंसते बोलते। मैं अगर तुमसे हंसा बोला तो बेटा क्या किया, क्या नहीं इंसान से इंसान हंसते बोलते। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ सरगम आप सुन रहे हैं सीमा तिवारी के साथ।

फिल्म गीतों का कार्यक्रम सांझ सरगम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की खड़ी में 5 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे अब तक के मुख्य समाचार।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। रांची में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के खिलाफ अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है। आज बड़ी संख्या में नाराज प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा और बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे सचिवालय परिसर में घुस गए। इस दौरान पुलिस के साथ तीखी बहस और धक्का मुक्की हुई, जिससे मौके पर तनाव व्याप्त हो गया। अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा छात्रों का आंदोलन आगामी 2 महीनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जेएसएससी और जेपीएससी परीक्षाओं को रद्द करने के बड़े फैसले के बाद छात्र संगठनों ने यह निर्णय लिया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 को लेकर फैल रहे भ्रम को खारिज किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून से झारखंड का खनन राजस्व समाप्त नहीं होगा। इसका उद्देश्य निवेश और उत्पादन बढ़ाकर राज्यों के राजस्व आधार को मजबूत, स्थिर और प्रतिस्पर्धी बनाना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ और महेशपुर विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने ड्राफ्ट मतदाता सूची की जांच करते हुए अधिकारियों को पात्र लोगों के नाम जोड़ने और अपात्रों के नाम हटाने के निर्देश दिए। साथ ही 24 अगस्त से होने वाली सुनवाई की तैयारियों की समीक्षा की। मौसम विभाग के अनुसार अगले 12 घंटों में मानसूनी बादल कमजोर होकर आगे बढ़ जाएंगे, जिससे कल से राज्य के कई इलाकों में मौसम साफ होने की संभावना है। और बोकारो के मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता शुरू हुई, जो 29 अगस्त तक चलेगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने तीर चलाकर इसका उद्घाटन किया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की कड़ी में 5:02 हो चुके हैं दोस्तों। ये वक्त है

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:03 होने को है। श्रोताओं, हमारी सांध्यकालीन सभा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अब आपको बतलाते हैं कि आज आप कौन कौन से कार्यक्रम सुन सकेंगे कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी संध्या के 5:05 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायिका लता मंगेशकर के गाए कुछ गीत। संध्या के 5:30 से 6 तक आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, जिसमें चर्चा की जाएगी जैविक खेती व लाभ के बारे में। मनोरंजन करवाया जाएगा उड़िया लोकगीत से जितेन प्रधान और साथियों के स्वर में। भेंटवार्ता आप सुनेंगे पर्यावरण संरक्षण में हमारी भूमिका के बारे में। भेंटवार्ताकार हैं चांदमणि हास्ता, भेंट करता है कोमल नायक। मनोरंजन होगा हो लोकगीत से मिलानी बोदरा और साथियों के स्वर में। इसके अलावा बाजार भाव भी बतलाया जाएगा। संध्या के 6 पुनः आपको ले चलेंगे हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे मुख्य समाचार। 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हो अखड़ा, जिसमें जानकारी की बातों के अलावा चर्चा और हेरो दुरंग आप सुनेंगे विनीता तामसोय और साथियों के स्वर में। साथ ही आप सुनेंगे हो साहित्य पद्म भूषण पुरस्कार तक भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर जानुम सिंह सोय और उनसे बातें कर रहे हैं राम सिंह चातर। आहिंदी लोकगीत आप सुनेंगे फूलचंद सामड़ और साथियों के स्वर में। संध्या के 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मनोरमा, जिसमें चर्चा के अलावा जानकारी की बातें होंगी और भेंट वार्ता भी आप सुनेंगे, साथ ही फिल्मी गीत का भी आनंद लेंगे। संध्या के 6:55 पर आपको हम ले चलेंगे हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। संध्या के 7:15 से रात्रि के 8 तक आप सुनेंगे श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत आपकी पसंद।

श्रोताओ, रात्रि के 8 बजे से 8:45 तक होगा फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीकंधा। रात्रि के 8:45 पर आपको लिए चलेंगे हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि के 9 बजे से 9:15 तक आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ही। रात्रि के 9:15 से रात्रि के 10 बजे तक आप सुन सकेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। रात्रि के 10 बजे से 10:30 पर होगा महफिल कार्यक्रम, जो कि गजलों का कार्यक्रम है। ये हमारे चाईबासा केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। रात्रि के 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11 बजे से 11:05 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। 11:05 से रात्रि के 11:10 तक आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ही। और रात्रि के 11:11 पर हमारे सभा समापन की उद्घोषणा की जाएगी। तो श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायिका लता मंगेशकर के कुछ गायक गीत। तो सबसे पहले सुनिए फिल्म कुदरत का ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और संगीत है राहुल देव बर्मन का। आप सबको छवि का प्यार भरा नमस्कार है इस कार्यक्रम में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायिका लता मंगेशकर के गाए कुछ गीत। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म जब जब फूल खिले का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायिका लता मंगेशकर के गाए कुछ गीत। अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं मेरा साया फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे एक ही गायिका लता मंगेशकर के गाए कुछ गीत कार्यक्रम गुलदस्ता में। अब इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम गुलदस्ता यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। अब आपको कुछ ही पलों में हम सुनवाते हैं कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

कार्यक्रम खेती गृहस्थी सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को कोमल नायक का जोहार। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैविक खेती व लाभ, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। किसान भाई बहनों, जैविक

0: खेती एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और कृत्रिम रसायनों के बजाय गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद और प्राकृतिक कीट नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। प्रकृति में उपलब्ध जीवाणुओं, मित्र कीट और जैविक कीटनाशकों द्वारा फसल को हानिकारक जीवाणुओं से बचाया जाता है। जैविक तरीके से उगाए गए अनाज में कई सारे खनिज तत्व उपस्थित होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं, जबकि रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से ये खाद्य पदार्थ अपनी गुणवत्ता खो देते हैं। रासायनिक खाद और कीटनाशक के उपयोग से मिट्टी की उर्वरक क्षमता में काफ़ी कमी आती है, जिससे मिट्टी के पोषक तत्वों का संतुलन भी बिगड़ जाता है। इस घटती हुई मिट्टी की उर्वरक क्षमता को देखते हुए आज के समय में जैविक खाद का उपयोग जरूरी हो गया है। किसानों की पैदावार का अधिकतर भाग खेती में प्रयोग होने वाले उर्वरकों और कीटनाशकों पर ही खर्च हो जाता है। यदि किसान खेती में अधिक मुनाफा या फायदा कमाना चाहते हैं तो उन्हें जैविक खेती की तरफ अग्रसर होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से खेती में नुकसान देखने को मिल रहा है। इसका मुख्य कारण खेती में प्रयोग होने वाले रसायन, इसमें लागत भी बढ़ रही है और भूमि के प्राकृतिक स्वरूप में भी बदलाव हो रहे हैं जो काफ़ी नुकसान भरे हो सकते हैं। रासायनिक खेती से प्रकृति में और मनुष्य के स्वास्थ्य में काफ़ी गिरावट भी आई है। आप अगर जैविक खेती करते हैं तो आपको इससे कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि आपकी भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होगी, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। जैविक खाद का उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है, भूमि की जलधारण क्षमता बढ़ती है, भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है, भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है, मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में भी कमी आती है। कचरे का उपयोग खाद बनाने में होने से जो कचरे सड़ जाते हैं उनसे जो बीमारियां होती है उसमें कमी भी आती है, फसल उत्पादन की लागत में कमी एवं आय में वृद्धि होती है। तो कितने सारे लाभ हैं जैविक खेती के। आप भी जैविक खेती को अपनाकर शुद्ध व रासायन युक्त फसल प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई बहनों, अभी हमने आपको जानकारी दी जैविक खेती व उसके लाभ के बारे में।
1: जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समंदर का जलस्तर भी बढ़ रहा है।

जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इसे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है। मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है। यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।

0: किसान भाई बहनों, अभी आप आनंद ले रहे थे उड़िया लोकगीत का जितेंद्र प्रधान और साथी के सरों में। अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक वार्ता और आज हमारे वार्ता का विषय है पर्यावरण संरक्षण में हमारी भूमिका और इस विषय पर जानकारी दे रही हैं चांदमनी हांसदा।
1: जोहार किसान भाई बहनों, मेरा नाम चांदमनी हांसदा है और मैं एकलव्य स्कूल की शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको पर्यावरण संरक्षण का महत्व इस विषय पर जानकारी दूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पर्यावरण क्या है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानने से पहले ये बात जाननी होगी कि पर्यावरण क्या है। किसान भाई बहनों, हमारे जीवन में पर्यावरण का अर्थ अलग अलग है। पर्यावरण का अर्थ है हमारे आसपास का जो परिवेश है, जैसे कि जीव जंतु, वायु, हम मानव जाति, हमारे पौधे और जो भी एक दूसरे पर आश्रित होकर जी रहे हैं। मेरे ख्याल से सही शब्दों में यही हमारा पर्यावरण है। किसान भाई, आज हम देख रहे हैं कि जो मानव जीवन में इतनी दिक्कतें जो हो रही है, वे मौसम, वर्षा, प्राकृतिक संसाधन की कमी, इतनी बीमारियां हो रही है, बाद हो रही है, इसका सीधा संबंध कहे तो प्राकृतिक संसाधन से है, जैसे पानी, भूमि, वायु, यही हमारे जीवन का आधार है। जल से हमारे अधिक गतिविधियां हैं और हम मानव कर क्या रहे हैं, इन पानी में ही हम कचड़े फेंक रहे हैं। जहां देखो हम मानव जाति गंदगी फैला रहे हैं, अधिक से अधिक हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इसका सीधा संबंध मानव जाति से है। हम ये कह सकते हैं कि इन संसाधनों का उपयोग जीव जंतु पौधे की अपेक्षा

हम कर रहे हैं। इसीलिए मानना या ये सोचना गलत नहीं है कि इनका असंतुलन होना या पर्यावरण का प्रदूषित होना का कारण हम मानव जाति ही है। इसीलिए इसका दुष्प्रभाव भी हम पर ही हो रहा है। जिस तरह का व्यवहार आज हम पर हो रहा है, जिस तरह का व्यवहार आज प्रकृति से पर्यावरण से हम कर रहे हैं, वैसा व्यवहार पर्यावरण भी आज हमसे कर रही है। इसीलिए रोग, बीमारियां, चक्रवात, बाढ़, बायोगैस, बारिश जैसे समस्या हो रही है। हम तो पूरी तरह पर्यावरण पर आश्रित हैं, इसीलिए हमें पर्यावरण का संरक्षण करना बेहद जरूरी हो गया है। किसान भाई बहनों, पर्यावरण को हम दूषित कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके ऊपर काज करें। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और बढ़कर पिघल रही है। इसका कारण वैज्ञानिक तौर पर देखें तो हम जो इलेक्ट्रॉनिक सामान का प्रयोग कर रहे हैं या औद्योगिकीकरण कर रहे हैं, उससे जो गैस निकल रही है, कहीं ना कहीं ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। हमारा रोजाना की जो उपयोग है उसकी वजह से क्षति हो रही है। प्राकृतिक संसाधनों में कमी जो हो रही है वो भी इसीलिए कि हम इनका उपयोग हद से ज़्यादा कर रहे हैं। इनको भी संरक्षित करना जरूरी है। हमारे घर के आसपास जो जल जमाव हो रहा है, जो जीवन शैली के जल स्रोत है, उन्हें भी हम दूषित कर रहे हैं। जल जमाव के कारण उनमें कीड़े मच्छर पैदा होते हैं, जिसमें डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां को हम नियंत्रण दे रहे हैं। तो हम रोजाना के छोटे छोटे कामों को तरीके से करें तो इन बीमारियों को अपने से दूर कर सकते हैं। वनों को हम अपनी इच्छाओं के प्रति के लिए इनकी कटाई कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण में वनों की भूमिका सबसे ज़्यादा है। मानव पूरी तरह वनों पर आश्रित है, यानी निर्भर है, जो कि पेड़ पौधे के द्वारा ही आज हम जीवित हैं, सांस ले पा रहे हैं। वनों से हमें कई तरह की दवाइयाँ प्राप्त होती है। औषधि पौधे में नीम, तुलसी, आंवला, इनमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। गांव में रहने वाले किसान भाई बहन वनों पर निर्भर होते हैं, साथ ही वनों पर रहने वाले जीव जंतु वे भी वनों पर आश्रित है, या यूं कहे तो जीव जंतु का घर वन है। तो हम इन वनों की कटाई अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई कर रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारी यानी मानव जाति की अलग दुनिया है और वनों में रह रहे हैं जीव जंतु की एक अलग दुनिया है। इसीलिए हमें इस दुनिया को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। तो कहीं ना कहीं हम वनों को भी क्षति पहुंचा रहे हैं, इसीलिए भी पर्यावरण संरक्षण बहुत ही जरूरी है। वनों के बिना हमारा जीवन असंतुलित हो जाएगा, इसीलिए इसकी कटाई ना करें। और कटाई करते भी हैं तो एक पेड़ की कटाई पर दो पेड़ लगा दीजिए। इस तरह से हम वनों को खत्म होने से रोक सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पर्यावरण संरक्षण करने से इसके महत्व क्या है। किसान भाई बहनों, हमारी जो अपनी ही दिनचर्या है, जो काज है रोजाना के, इनसे ही पर्यावरण प्रदूषित हो रही है, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम जो सुबह से लेकर रात तक जो काम कर रहे हैं उसे ही सही तरह से करें तो कहीं हद तक इसको नियंत्रित कर सकते हैं। इनका संरक्षण आप छोटे स्तर पर ही करें। जरूरी नहीं है कि आपको ये बहुत दूसरों को समझानी है, क्योंकि आप अपने आप में बदलाव करते हैं तो आपको देखकर आपके घर के बच्चे सीखेंगे, अगल बगल रहने वाले लोग आपको देखकर सीखेंगे। आप अक्सर देखते होंगे कि आप अगर अपने घर के आसपास कचरा फेंकते हैं तो आपको देखकर आसपास के लोग भी उसी जगह पर कचरे फेंकते हैं। तो आप इसकी शुरुआत खुद से ही करें, कचरा कूड़ेदान में ही फेंके। आजकल तो हम बच्चे बहनें अपने घर पर ही बालकोनी पे सब्जी लगाना कितना पसंद करते हैं, तो कुछ कचड़े खाद के रूप में काम आ जाते हैं। तो आप इनका इस्तेमाल घर पर मिर्च, धनिया, टमाटर, इन सब पौधों को लगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाई, हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर रहने वाले सभी जीवित और अजीवित चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, चाहे वे जमीन पर रहते हैं या पानी पर।

0: सभी पर्यावरण का हिस्सा होते हैं। पर्यावरण में हवा, पानी, सूरज की रोशनी, पौधे, जानवर, ये शामिल है। ये हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो क्यों हम इन जलवायु भूमि को क्षति पहुंचाते हैं? पर्यावरण को संरक्षित करना है कि पहल आप खुद से करें, फिर यह सीख अपने घर के बड़े छोटों को दीजिए। स्कूलों में शिक्षक शिक्षिका अपने छात्र छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता की ज्ञान दे, ताकि बच्चे आज से अभी से सीख पाए कि पर्यावरण से हमें कितना कुछ प्राप्त होता है। उम्मीद है आज मैंने आपको जो जानकारी दी है उसे आपने सुना ही नहीं, बल्कि आप इस पर आज से कार्य करना शुरू कर देंगे। धन्यवाद।
1: तो किसान भाई बहनों, कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं हो लोकगीत मेलानी बोदरा और साथी के स्वरों में।

तो किसान भाई बहनों, इस लोकगीत के साथ ही आज का हमारा खेती गृहस्थी कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। कार्यक्रम से कोमल नायक को दे विदा। जोहार।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेटा। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने रांची में पिछले 26 दिनों से जारी अपने आंदोलन को फिलहाल 2 महीने के लिए स्थगित करने का ऐलान किया है। छात्र संगठनों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को 2 महीने का समय दिया है। रांची में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के खिलाफ अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है। आज बड़ी संख्या में नाराज प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा और बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे सचिवालय परिसर में घुस गए। अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। झारखंड भाजपा के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में नेताओं ने झारखंड से जुड़े विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर शीर्ष नेतृत्व से मार्गदर्शन प्राप्त किया। पाकुड़ की विधायक निशात आलम ने आज 4,96,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले पलाश मार्ट भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि पलाश मार्ट महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। विधायक ने सखी मंडलों के बीच 62,60,000 रुपए का ग्रांट और 63,00,000 रुपए की ऋण राशि का चेक वितरित किया। गिरिडीह की बगोदर पुलिस ने राजनीतिक दल से जुड़े मिथिलेश यादव उर्फ छोटू यादव की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार ने बताया कि मामले में एक होटल के मालिक महेश रजक और उसके स्टाफ सीमा ठाकुर को गिरफ्तार किया।

गया है। और पंजाब के लुधियाना में आगामी 1 से 3 सितंबर तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए लातेहार के जयदीप उरांव और आकाश उरांव का चयन हुआ है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम हो अखड़ा।

0: ᱢᱮᱱ ᱵᱩᱨᱩᱝ ᱛᱮᱢ ᱫᱚ ᱞᱟᱵᱚᱭ ᱢᱮᱭᱟ ᱫᱚᱦᱚ ᱥᱟᱱᱟᱜᱚᱢ ᱚᱞ ᱠᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚᱯᱚᱛᱤ ᱫᱨᱳᱯᱚᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱮ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱧᱟᱢ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱮ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱧᱟᱢ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱵᱚᱠᱥᱤᱥ ᱠᱤᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱠᱥᱤᱥ ᱧᱟᱢ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱮ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ
1: उसी प्रोसेस के आधार पर नैन किताब को
2: डलावेना
1: को ऐसी सामग्री तो कावला करना सबसे पहले हो उपन्यास हो कुड़ी उपन्यास जे पी से शामिल लेना
2: शामिल लेना ठीक
1: है। उसके बाद जो कुरान विश्वविद्यालय टीआरएल मनन हो विभाग रे सिलेबस रिकॉर्ड किया
2: आगो करे या
1: चिना च किताब को बनो
2: बनो जाना या
1: उपन्यास किताब मेंते तो बनो जाना
2: या
1: मन अब हो साहित्य रे हो भाषा साहित्य रे आए पहला उपन्यास है
2: या सारी के जरना या इन दो अब निंता राष्ट्रपति पुरस्कार लगे बन डालो के दा ची अप्लाई के दा एना ते चनाब दो अबन छिमिन दिन दे निनरे आईए केनिया दो हो बायना ची अबना उनुरम दो हो बायना
1: एने एन रिया जो प्रोसेस है सब रहता
2: है या
1: उसी प्रोसेस के तहत आपको बताना है
2: अच्छा
1: माने आपको पास को कुलित ना
2: ऑनलाइन के को
1: या
2: ऑनलाइन को कुल कर बिना
1: या
2: अच्छा
1: इनका तो हम नलका कुली कुपुली तो का गया
2: या
1: तो ये किस परिस्थिति में है ये किताब
2: मंतिया अच्छा
1: मेरा पूरा डिटेल है को अस्कृता तो ने को सब सिलेबस के तहत शामिल करना
2: या
1: पढ़े इस संतरा
2: या
1: रांची यूनिवर्सिटी जो चलाओ करना वो हो विभाग रहा।

सभी बहनों को बसंती का जोहार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम मनोरमा में। उम्मीद है बहनों, इस समय आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। बहनों, आज हम कार्यक्रम में चर्चा के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाएं अपना ध्यान कैसे रखें विषय पर। तो आइए जानते हैं थोड़ा विस्तार से। बहनों, गर्भावस्था प्रत्येक महिला के जीवन का एक रोमांचक समय होता है। यह उम्मीदों से भरा एक समय होता है, आनंदित होने का और एक नए जीवन का संसार में स्वागत करने का समय होता है। और इस समय महिला में तीव्र परिवर्तन भी हो रहे होते हैं, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से। एक सूक्ष्म कोशिका का पूर्णता विकसित नन्हे बच्चे के रूप में कायाकल्प हो जाता है, जबकि माँ कई बदलावों का सामना करती है, कुछ रोचक और कुछ कठिन। यही वह समय होता है जब माँ को अपना पूरी तरह से ध्यान रखना होता है। एक गर्भवती महिला को पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, साथ ही क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस दौरान शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कम से कम 3-4 लीटर पानी दिन भर में ज़रूर पीना चाहिए।

साथ ही जूस भी पिए। ऐसा करने से शरीर में मौजूद विषैले पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। नारियल पानी भी पी सकते हैं और ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ों का सेवन करें। गर्भावस्था के दौरान कब्ज की समस्या बढ़ जाती है, इसलिए पाचन क्रिया का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि आप भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लें, क्योंकि इससे गैस या कब्ज होने का खतरा नहीं होता है। और इस दौरान हरी पत्तियों वाली सब्जियां जैसे कि पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली आदि को शामिल करना चाहिए। पालक में मौजूद आयरन गर्भावस्था में खून की कमी इससे दूर होती है। इसके अलावा बीन्स और सहजन को भी खाना चाहिए। इसमें फाइबर, प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। साथ ही दूध, छाछ, दही, घी ये भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इस दौरान शिशु के विकास के लिए प्रोटीन और कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इसलिए महिलाओं को अपने आहार में इन्हें ज़रूर शामिल करना चाहिए। साथ ही ताज़े फल और जूस, सूखा मेवा आदि भी शामिल करें। और अंडे भी खाएं, यह काफ़ी पौष्टिक होता है। अंडे में प्रोटीन, कोलीन, बायोटिन, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए यह गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। साबुत अनाज का सेवन भी आप करें और चाय, कॉफ़ी इनसे आप दूर रहें, शराब वगैरह इनसे आप दूर रहें और कच्चा पपीता ना खाएं। मछली से बचे। वैसे तो प्रेगनेंसी में मछली का सेवन सही होता है, लेकिन जिनका उच्च पारे वाली मछली को आहार में शामिल नहीं करना चाहिए। कच्चे मांस का सेवन ना करें, इससे बचना चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से गर्भपात का खतरा भी बढ़ जाता है। और फल सब्जियों को बिना धोए इस्तेमाल नहीं करें। और आप हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, हो सके तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही आप करें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। रोज़ पैदल टहलना अच्छा है, एक इंसान के सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और गर्भवती महिला के लिए रोज़ थोड़ी दूर तक पैदल चलना बहुत ही अच्छा व्यायाम माना जाता है। टहलने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और आप चुस्त भी रहेंगे। टहलते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सामान्य गति से चल रही हैं, तेज या दौड़ना नहीं है। और जब तक शिशु का जन्म नहीं हो जाता, तब तक आप हमेशा डॉक्टर के संपर्क में रहें। जब भी आपको अपने शरीर में किसी तरह की परेशानी या बेचैनी या समस्याएं महसूस हों, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक अपने दैनिक जीवन को आप फॉलो करें। तो बहनों, इस तरह से अगर हम ध्यान रखें तो हमारा गर्भावस्था का जो सफ़र होता है वो बहुत ही अच्छे से होगा और जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें गर्भावस्था के दौरान। तो चलिए, इस बातचीत के बाद हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये ज़रूरी संदेश।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: बहनों, इस जरूरी संदेश के बाद आइए अब हम मनोरंजन करते हैं इस गीत से।

बहनों, अभी आप आनंद ले रहे थे दाग फिल्म के गीत से, जिसे स्वर दिया था किशोर कुमार ने। इस गीत के बाद आइए अब हम वार्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों में अच्छी आदतें कैसे डालें विषय पर, और इस विषय पर जानकारी दे रही हैं अनीता गागरई। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।

मेरा नाम अनिता गागराई है और आज आप सभी से बच्चों को अच्छी आदतें कैसे सिखाएं या उनमें अच्छी आदतें कैसे डालें इस विषय पर कुछ बातों को बताने जा रहे हैं, जिसे जानना हम सभी अभिभावकों के लिए बहुत ही जरूरी है। सभी बच्चों के माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर के अच्छा काम करे, होशियार बने और अच्छा नाम कमाए। इसके लिए हर माता पिता कोशिश करते हैं बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए, और इस दौरान हमें कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि बच्चा बचपन में जो देखता है उसे ही देखकर अच्छी या बुरी आदतों को सीखता है। और माता पिता जो सिखाते हैं बच्चे भी वही सीखते हैं, इसलिए माता पिता को छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों में बचपन से ही कुछ अच्छी आदतों को डालेंगे तो आगे चलकर आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बच्चों के सफल भविष्य के लिए बच्चों में अच्छी आदतें होना बहुत ही ज़रूरी है, उनमें गुड मैनर्स होना चाहिए। अपने बच्चों को बचपन से ही बड़ों की इज्जत करना सिखाएं, वो बिना चीखे चिल्ला करके विनम्रता से अपनी बातों को रख सके। कहाँ पर किस तरह से बात करनी चाहिए, गुड मैनर्स और बैड मैनर्स क्या होता है, इसके बारे में उन्हें अच्छे से समझ होनी चाहिए। अपने बड़ी बहन या बड़े भाई और घर के बुजुर्गों का सम्मान करें और बड़ों को पलट कर जवाब ना दें, और समय से सोने और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। अगर बच्चे समय से सोते हैं और समय पर उठते हैं तो उनका दिमाग दिन भर एक्टिव रहता है, और जिससे बच्चे का दिमाग क्रिएटिव होता है। उन्हें मेहनत करना सिखाएं। कुछ माता पिता अपने बच्चों को अत्यधिक लाड प्यार से रखते हैं, जिससे आगे चलकर बच्चा छोटी छोटी समस्याओं का भी सामना नहीं कर पाता है। इसलिए उन्हें बचपन से ही समझाए सफलता के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए बच्चों को बचपन से ही मेहनत करना सिखाएं। इसके लिए आप खुद एक प्रेरणा स्रोत बने और बच्चों में किताबें पढ़ने की आदतें भी डालें, क्योंकि बड़ों को देखकर ही बच्चे सीखते हैं। बच्चों में किताब पढ़ने की आदत डालने के लिए उनके सामने खुद किताब पढ़ने की आदत डालें। आपको देखकर बच्चे में भी किताब पढ़ने की आदत विकसित होगी। बच्चों में अपना काम खुद करने की आदत डालना चाहिए, इसकी शुरुआत बचपन से ही होनी चाहिए। इससे बच्चे का विकास एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में होता है। बच्चा अपना काम खुद पूरी जिम्मेदारी से करेगा तो आपको भी मदद मिल जाएगी, और इसके साथ ही बच्चों को समय का महत्व भी बताएं। समय के महत्व के बारे बताना भी बहुत ज़रूरी है। उन्हें सिखाएं कि समय को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय का सदुपयोग अच्छे कामों में करने या कोई क्रिएटिव चीज़ सीखने में लगाना चाहिए, ताकि आगे चलकर हमारा जीवन बेहतर हो सके। और बच्चों को गलती स्वीकार करने की भी आदत डालिए, क्योंकि आजकल कुछ बच्चे बहुत ही ज़िद्दी होते हैं और वे

0: अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें शर्म आती है अपनी गलती स्वीकार करने में या अपना अपमान समझते हैं, जो आगे चलकर उनके करियर में बाधक हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि बच्चों में बचपन से ही सॉरी बोलने और गलती स्वीकार की करने की आदत को डाला जाना चाहिए। कुछ बच्चे बहुत ही अधिक जिद्दी होते हैं, कुछ भी करने से पहले कुछ नहीं सोचते, सभी काम अपने मन से करते हैं, जिसका कभी कभी गंभीर परिणाम हो सकता है, क्योंकि बच्चों में अधिक समझ नहीं होती है। इसके लिए बचपन से ही उनमें परमिशन लेने की आदत डालें, साथ ही शेयर करने की भी आदत डालें। अपने बच्चों से, आपने बहुत से बच्चों को ऐसा करते हुए देखा होगा जिनकी कुछ चीज़ों को छूने भर से ही वह बहुत रोने लगते हैं, यह एक बहुत ही बुरी आदत है। इसलिए उन्हें चीज़ों को शेयर करने के लिए भी उन्हें सिखाना चाहिए। बच्चों में अच्छी आदतें डालने के लिए घर का वातावरण में खुशनुमा माहौल रखें और ध्यान रखें कि बच्चे आपसे अपनी बातों को कह सकें, उन्हें मौका दें कहने का। अगर बच्चा कुछ कहने के लिए आपके पास आए तो उन्हें झिड़क के ना कहें, उसे प्यार से पूछें कि उन्हें क्या चाहिए और ये क्या बात करना चाहते हैं। स्पष्ट नियम और दिनचर्या तय करें, उनके पढ़ने खेलने या टीवी देखने का समय को तय करें, इससे उनमें अनुशासन आता है। समय पर नहाना, समय पर खाना खाना जरूर सिखाएं और अच्छे कामों के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें, तारीफ करें या छोटे छोटा कोई इनाम दे दें, जिससे उन्हें खुशी के साथ साथ प्रेरणा मिलती है। और कभी कभी बच्चों की बातों को ध्यान से सुने, उनकी जिज्ञासा को समझें, उनकी समस्याओं को सुने और उन्हें हल करने की कोशिश करें। इससे बच्चे आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे। शारीरिक गतिविधियों को करने के लिए उन्हें बढ़ावा दें, जैसे योग, खेल कूद, डांस आदि। इन तरीकों से बच्चे धीरे धीरे आत्मनिर्भर और जिम्मेदार और अच्छे इंसान बनते हैं। इसके लिए हम माता पिता को एक अच्छा उदाहरण बनना चाहिए, ताकि बच्चे का भविष्य जो है सुंदर, उज्जवल और बेहतर हो सके। तो श्रोताओं, इन सब बातों को इतना ही कहकर आज मैं अनीता गागरही आपसे इजाज़त लेती हूँ। जोहार।
1: बहनों, अभी आप वार्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे थे बच्चों में अच्छी आदतें कैसे डालें विषय पर, और इस विषय पर जानकारी दे रही थी अनीता गागरही। इस जानकारी के बाद बहनों, कार्यक्रम के अंत में आइए चलते चलते सुनते हैं एक और गीत।

बहनों, अभी आप आनंद ले रहे थे। अनामिका फिल्म के गीत से, जिसे स्वर दिया था किशोर कुमार ने। तो बहनों, इसी गीत के साथ ही आज का हमारा मनोरमा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बसंती को दीजिए विदा। जोहार, नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम मनोरमा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको ले चलते हैं हमारे रांची केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार और जिले में आजकल।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक। जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
1: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
2: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावत, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में परीक्षा रद्द होने पर जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों का सचिवालय में भारी हंगामा, तो दूसरी ओर रिफॉर्म मंच ने 26 दिनों से जारी आंदोलन 2 महीने के लिए किया स्थगित। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला झारखंड भाजपा का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल। राज्य के राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर प्राप्त किया मार्गदर्शन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पाकुड़ के मतदान केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की। राज्य में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर, पतरातु डैम का भी जलस्तर बढ़ा। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में मौसम साफ होने की जताई संभावना। और बोकारो में दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ। राज्यपाल ने वर्ष 2014 के बाद देश में बढ़ी खेल संस्कृति को सराहा। और अब समाचार विस्तार से। रांची में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के खिलाफ अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है। आज बड़ी संख्या में नाराज प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा और बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे सचिवालय परिसर में घुस गए। इस दौरान पुलिस के साथ तीखी बहस और धक्का मुक्की हुई, जिससे मौके पर तनाव व्याप्त हो गया। अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं।
6: उनके पास

0: इकट्ठा हुई और उन्होंने मामला को टिल्ड कर दिया सीजीएल राज। उनको मैं वे संदेश देना चाहता हूँ, आप न्यायालय में हारे और भीड़ तंत्र के द्वारा दबाव बनाकर उसमें जो भी लोग थे परीक्षार्थी, लेकिन उसमें कुछ गिने चुने लोग घुस गए और उनके आंदोलन को भ्रमित कर सरकार पर दबाव बनाकर उन्होंने हमारे नियुक्ति को रद्द कराया है। इसको हम लोग लेकर वापस रहेंगे।
1: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने रांची में पिछले 26 दिनों से जारी अपने आंदोलन को फिलहाल 2 महीनों के लिए स्थगित करने का ऐलान किया है। छात्र संगठनों ने परीक्षाओं में सुधार और रिफॉर्म से जुड़ी अपनी मांगों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को 2 महीने का समय दिया है। प्रेस वार्ता में छात्रों ने स्पष्ट किया कि यदि 2 महीने के भीतर उनकी अन्य सभी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे पहले से भी बड़ा आंदोलन दोबारा शुरू करेंगे।
2: जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच के अध्यक्ष होने के नाते मैं तमाम छात्र छात्राओं को भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय अपने आंदोलन को सफल करने में लगाए। और मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतना कम समय में इतना बड़ा निर्णय ले लिए, जिससे पूरा देश देख रहा है और हमको लगता है आज पूरे भारत में इतना बड़ा फैसला कोई नहीं लिया होगा।
1: झारखंड भाजपा के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में नेताओं ने झारखंड से जुड़े विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर शीर्ष नेतृत्व से मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस उच्च स्तरीय मुलाकात के दौरान राज्य के 3 पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और चंपाई सोरेन भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इनके अलावा प्रदेश महामंत्री संगठन कर्मवीर सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और रविंद्र राय सहित भाजपा के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी बोकारो स्थित चिन्मय विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुई। इस ऐतिहासिक और खास अवसर पर उन्होंने गहरी प्रसन्नता व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय के योगदान को सराहते हुए कहा कि संस्थान ने युवा मस्तिष्कों को सही दिशा देने और उन्हें संवारने के 50 प्रेरणादायक साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं।
3: बोकारो की स्वर्ण जयंती 50 वर्ष पहले बोकारो सीता विद्यालय के नाम से छोटे से पौधे का पौधा उत्पन्न हुआ। किसी संस्था का प्रभाव इस बात से तय होता है उसने राष्ट्र को कितने विजनरी और जिम्मेदार नागरिक थे और इस कसौटी पर चिन्मय विद्यालय देश का गौरव बढ़ा रहा है।
1: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 को लेकर फैल रहे भ्रम को खारिज किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून से झारखंड का खनन राजस्व समाप्त नहीं होगा। इसका उद्देश्य निवेश और उत्पादन बढ़ाकर राज्यों के राजस्व आधार को मजबूत, स्थिर और प्रतिस्पर्धी बनाना है, जिससे देश की खनिज क्षमता बढ़ेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पाकुड़ जिले में लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ और महेशपुर विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बीएलओ को निर्देश दिया कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल हों। श्री कुमार ने मतदाताओं से संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना और 24 अगस्त से होने वाली जन सुनवाई की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
4: अभी मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम सभी जगह पर चल रहा है, उसका लेकर वो नो मैपिंग का हियरिंग सुनवाई होगा अभी 24 अगस्त से। उसका लेकर हम लोग कितना नो मैपिंग केसेस है वो डिस्क्रिपेंसी है, उनके पास कागज अवेलेबल नहीं है, उसके बाद उनका क्या प्रिपरेशन है उसका लेकर एक बार एक सैंपल सर्वे में आया, अभी उसी के लिए हम लोग।
1: गिरिडीह जिले की बगोदर थाना पुलिस ने राजनीतिक दल से जुड़े मिथिलेश यादव उर्फ छोटू यादव की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि इस मामले में घाघरा स्थित एक होटल के मालिक महेश रजक और उसकी स्टाफ सीमा ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। वारदात में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया गया है। मौसम। राज्य में पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियां उफान पर हैं, जिससे तटीय इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। इस मॉनसूनी वर्षा के कारण रामगढ़ स्थित प्रसिद्ध पतरातु डैम का जलस्तर भी काफी तेजी से बढ़ गया है, जिसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है कि अगले 12 घंटों में झारखंड के ऊपर से मॉनसूनी बादल धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगे, जिससे कल से राज्य के कई इलाकों में मौसम साफ होने की संभावना है। बोकारो के मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता शुरू हुई, जो 29 अगस्त तक चलेगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने तीर चलाकर इसका उद्घाटन किया। राज्यपाल ने वर्ष 2014 के बाद देश में बढ़ी खेल संस्कृति की सराहना की।
5: 2014 में जब मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली है, उन्होंने खेल के प्रति अपनी विशेष रुचि दिखाई और अब खेलों में व्यापक परिवर्तन भी हो रहा है और खिलाड़ियों में आत्मविश्वास की भी बढ़ोतरी हो रही है। शरीर ने दुनिया में पहचान बनाई है और तीरंदाजी अपने आप में महत्वपूर्ण खेल होता जा रहा है। झारखंड की पहचान तीरंदाजी में हो रही है अच्छे ढंग से और यहाँ की खासतौर से लड़कियों ने अच्छी पहचान बनाई है।
1: पंजाब के लुधियाना में आगामी 1 से 3 सितंबर तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए लातेहार के जयदीप उराव और आकाश उराव का चयन हुआ है। जयदीप व्यक्तिगत स्पर्धाओं और आकाश मिश्रित रिले दौड़ में भाग लेंगे। जिला खेल पदाधिकारी अविनाश कुमार त्रिपाठी और खेल संघों ने इसे जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में परीक्षा रद्द होने पर जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों का सचिवालय में भारी हंगामा, तो दूसरी ओर रिफॉर्म मंच ने 26 दिनों से जारी आंदोलन 2 महीने के लिए किया स्थगित। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला झारखंड भाजपा का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, राज्य के राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर प्राप्त किया मार्गदर्शन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पाकुड़ के मतदान केंद्रों का किया औचक निरीक्षण, मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की। राज्य में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर, पतरातु डैम का भी जलस्तर बढ़ा। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में मौसम साफ होने की जताई संभावना। और बोकारो में दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ, राज्यपाल ने वर्ष 2014 के बाद देश में बढ़ी खेल संस्कृति को सराहा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लातेहार संवाददाता।
1: खान खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में लातेहार जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। जिला कमेटी की बैठक में पार्टी नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ शहर से लेकर गांव तक आंदोलन खड़ा करने की रणनीति तैयार की है। मौके पर उपस्थित राज्यसभा सांसद बैजनाथ राम ने कहा कि
2: भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की जो सरकार है उसकी मंशा साफ नहीं है और उसकी सोच ये है कि गैर भाजपा शासित राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जाए ताकि वो सरकार डिफेम हो जाए, उसकी जो लोकप्रियता बढ़ रही है वो कम हो जाए और एक तरह से कहें तो राज्य की जनता को जमीन हमारी, पर्यावरण का मार हम लोग झेल रहे हैं, धूल हमारे लोग खाएं, पानी हमारा खर्चा हो, जमीन हमारी बर्बाद हो और उसका लाभ भारत सरकार को मिले ये कहते उचित नहीं है। गाँव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर सदन तक इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे।
1: आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष लाल मोतीनाथ सहदेव ने कहा कि
2: केंद्र

0: सरकार के द्वारा खान एवं खनिज संशोधन विधेयक जो लाया गया 2026, उसके जरिए राज्य सरकार को अपंगु बना दिया गया है। जो रॉयल्टी शेष के रूप में, अंशदान के रूप में राज्यों को मिलता था, उसको आप पूर्ण रूपेण केंद्र सरकार अपने अधीन कर लिया है। और यह काला कानून जो थोपने का काम किया है, झारखंड के लोग और झारखंड की सरकार, झारखंड की जनता इस काले कानून को कतई स्वीकार नहीं करेगी। और यहाँ से एक छटाक भी खनिज संपदा हम लोग दूसरे प्रदेशों में नहीं जाने देंगे।
1: भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले लातेहार जिले के मजदूर आंदोलन की राह पर हैं। समाहरणालय परिसर में आयोजित धरना प्रदर्शन में मजदूरों ने सरकार के मजदूर विरोधी नीति पर चर्चा की। विभिन्न मांगों के समर्थन में आयोजित धरना को संबोधित करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने कहा कि
2: न्यूनतम मजदूरी कम से कम 30,000 होना चाहिए। सभी कर्मचारियों के लिए समान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाए। जीवन यापन की बढ़ती लागत के अनुसार न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी किया जाए।
1: लातेहार जिला मुख्यालय स्थित खेल स्टेडियम में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान लातेहार जिले के उपायुक्त संदीप कुमार एवं पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने उपलब्धियों और सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने कहा कि
3: तांबर तिलका मांझी की धरती झारखंड भी आजादी की लड़ाई में सबसे आगे रही। आज मैं उन वीर शहीदों को और उन पुलिस व अर्धसैनिक बलों के जवानों को नमन करता हूं, जिन्होंने सीमा पर और आंतरिक सुरक्षा में अपने सर्वोच्च बलिदान दिया। आजादी का मतलब केवल तिरंगा फहराना नहीं है, आजादी का असली मतलब है कानून का राज्य, सबों को बराबर का न्याय एवं हर नागरिक का सुरक्षित जीवन हो। और इस संकल्प को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी लातेहार पुलिस पूरे जिला के लिए कर रही है।
1: भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साई रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साई रेड्डी ने केंद्र की पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण की नीति किसानों के लिए नए अवसर लेकर आई है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार।
4: अभी आप सुन रहे थे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

श्रोताओं, हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में संध्या के 7:16 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, सबसे पहले इस कार्यक्रम में हम पेश कर रहे हैं फिल्म हम आपके हैं कौन का ये गीत एसपी बालसुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है देव कोहली ने और संगीत है राम लक्ष्मण का। इस गीत को सुनना चाहते हैं छोटा नीम भी चाईबासा से बाबूराम, शांति देवी, रितिक, कोमल, रोहन। डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनुष्का, तन्मय गजभिये। छत्तीसगढ़ भाटापारा दमद्रेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। चलिए इन सबकी पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म हम आपके हैं कौन का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के एक चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत आपको सुना रहे हैं, फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया। लता मंगेशकर की आवाज़ है, अर्शद भोपाली के बोल हैं, संगीत है राम लक्ष्मण का। इस गीत को सुनना चाहते हैं मेहरनगर उमेरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वांडकर राहे, श्रीमती सरिता ग्वांडकर, प्रिंस

पत्री कासिफ हासिम इरफान मीना। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत आपको हम सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है हम आपके दिल में रहते हैं। उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजें हैं। अलका, माफ कीजिएगा, इस गीत को सुनना चाहते हैं बड़ा नेमडी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार, अमृत कुमार। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवेनकर, धीरज सवासेरे। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवली श्रीवास्तव। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म मैं हूं ना का ये गीत सोनू निगम और साथियों की आवाजों में। जावेद अख्तर के बोल थे, संगीत था अनु मलिक का।

गीत को सुनना चाहते थे चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, मनोरमा महतो, कल्पना महतो, मनमहनी महतो, दीनबंधु महतो, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया, महुलटिया सोनुआ से नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी वंदिनी संतोषी, दीपक संतोष, राहुल अनु, तनु भाई, नंदू महतो, मेन रोड सोनुआ से गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, साकरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, आयुष महतो और गीतेश महतो। श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से। कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी की बोल हैं, संगीत है अनु मलिक का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं बड़ा निमडी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार और शुभम कुमार। गांव चौहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन, मुस्कान, कुणाल। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण कीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। चले इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का ये नगमा।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल,

0: सेना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: श्रोताओं, इन संदेशों के बाद फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम आपकी पसंद में। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुना रहे हैं फिल्म का नाम है मैंने प्यार क्यों किया से ये गीत सोनू निगम और साथियों की आवाजों में। इस गीत को सुनना चाहते हैं सरायकेला पाड़ापुर डिशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंडरी, सुरुमानी मुंडरी, हरिमानी मुंडरी, हिमांती मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जानम सिंह मुंडरी, सिद्धि बोस, सोना बाबू सोना, एफएम शिवा मुंडरी। ग्राम पुंडाकाटा से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्ष मनी महली, पार्वती महली, सुहानी महली, संजय सोरेन, नंदी महली, साजीव महली और विजय बेस्रा। बड़ी बाजार चाईबासा से मौजम बिहारी, शमीमा खानम, जिम्मी, बिट्टू, किरण, रोशनी, मुस्कान, परी और नबीहा। चलें, सबकी फरमाइश पर हम कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आपको हम सुनवाते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम रजनीगंधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, रजनीगंधा कार्यक्रम में सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं फिल्म क्या दिल ने कहा का ये गीत शान और संजीवनी की आवाज़ों में। इस गीत को सुनना चाहते हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा गिद्देवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय, घाटशिला से संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, मिस्टर संतोष आनंद, जगमाल से डागला हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। ये हैं रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म क्या दिल ने कहा का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा छवि के साथ। अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है क्रिश 3। एलिशा चुनाई जुबिनकर की आवाज़ें हैं, समीर के बोल हैं। चलिए इस गीत को सुनना चाहते हैं। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये नगमा।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम था किक। मीत ब्रॉस और अनजान के बोल थे, सलमान खान की भी आवाज़ थी। इस गीत को सुनना चाहते थे सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, दुर्गाई सैलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता, परभनी से सीआर कुलकर्णी, बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मुणत। श्रोताओं, अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है खामोशी, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार शानू की आवाज़ों में। इस गीत को सुनना चाहते हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक और शोभा नायक। ये हैं रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से, कनेरा मोहल्ला पटियाला से पत्ता परिवार, मुकेश पत्ता, नीलम पत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, वंश पत्ता, ये भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। चलिए अब इस गीत को हम सुनवाते हैं।

0: मुसीबत कहाँ है मुसीबत? ऊपर नीला नीला आकाश, खुली खुली हवा और चारों तरफ पानी ही पानी।
1: हाँ, हाँ, हाँ, जब प्यास लगेगी ना तो पीना।

श्रोताओं आप सुन रहे थे फिल्म कहो ना प्यार है का ये गीत आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। इस गीत को सुनना चाहते थे भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रुजूबाई तड़वी, परू, मुबारक पारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर पारेकर, तालुका बुरहानपुर, ग्राम मोहत, मध्य प्रदेश से, मुकाम पोस्ट भोकरी, महाराष्ट्र से अरशद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहत जिला बुरहानपुर से मुशरफ खा तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेश तड़वी, बीटिया रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी और समस्त तड़वी परिवार। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दंतरेगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। चलिए अब अगला गीत आपको हम सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है कहीं प्यार ना हो जाए। कमाल खान और अलकार याग्निक की आवाज़ें हैं। इस गीत को सुनना चाहते हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। कृष्णा नगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर से नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई डोंगर दिए, रीमाताई डोंगर दिए, दीक्षाताई डोंगर दिए, राहुल डोंगर दिए। चलिए इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं संपन्न होता है। आशा करती हूँ आपको सभी गीत पसंद आए होंगे। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको लीजिए।

0: मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्र सरकार उप ठेकेदारी मानदंडों की समीक्षा करेगी। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट झटके। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का, 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरदासपुर की 4थी लाइन, गुमेड़ी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री तथा 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों के उप ठेकेदारी संबंधी

0: मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। श्री गडकरी ने बेहतर अवसंरचना सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विस्तृत और मजबूत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता वाली डीपीआर और अपर्याप्त भूवैज्ञानिक डेटा अक्सर लागत में वृद्धि, देरी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण बनते हैं।
1: कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उसके लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ये हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशन ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा। बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशन एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हेवी स्नोफॉल अभी बहुत कठिन है, ये जो जिला में काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।
2: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand and respond to concerns of the people.
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी से फैलती है तो आधिकारिक संचार में सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन, वन्य जीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। झारखंड में 26 दिन से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा भी निकाली, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए। देवेंद्रनाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था। वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी

0: क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनिरका इलाके में मणिपुर के दो लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दो व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
1: New Delhi, the Chief Minister here, the government here.
2: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
1: I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here.
0: श्री गोर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। 4611 लोग घायल हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबिलाडो डे ला एस्प्रियला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया। भारत ने गोल में दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए हैं। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके, दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया।

0: हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि आला मेयार के बुनियादी ढांचे के साथ साथ कम लागत हुकूमत की अहम तरजीह है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे की तरक्की के मेयार से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आज नई दिल्ली में टनल्स एंड ब्रिजेस कॉन्फ्रेंस 2026 के चौथे एडिशन से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि वजारत शाहराहों के कामों की सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए मौजूदा जब्तों का जायजा लेगी, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक जरूरतों की सख्ती से तामील हो। उन्होंने कहा कि इसका मकसद इस बात को भी यकीनी बनाना है कि मयार और बरवक्त तकमील की जिम्मेदारी वाज़ेह तौर पर असल कॉन्ट्रैक्टर से मंसूब रहे। जनाब गडकरी ने मजीद कहा कि वजारत पहले से ही कॉन्ट्रैक्टर्स का उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर जायजा ले रही है और ये अमल तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार करने वाले कंसल्टेंट्स पर नाफिज करने की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा टेंडर की अहलियत को कारकर्दगी के जायजे से मुंसलिक करने की भी तजवीज है। हिमालयी खितों में तोड़े खिसकने, शदीद मौसम, कुदरती आफात और लॉजिस्टिक दुश्वारियों समेत तामीरात को दरपेश चैलेंजों का जिक्र करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि हिमालय में जेरे जमीन सुरंगों और पुलों की तामीर का काम काली मिट्टी की चट्टानों वाले इलाकों के मुकाबले ज्यादा चैलेंजेस से भरा है। झारखंड में JPSC JSSC से मुतालिक तलबा का 26 रोजा एहतजाज खत्म हो गया। रियासती हुकूमत की जानिब से भर्ती के मुख्तलिफ इम्तहानात को मनसूख करने के फैसले और मुबैना बेजाब्तगियों में तहकीकात का हुक्म दिए जाने के बाद ऐसा हुआ है। ताहम इस फैसले से वो उम्मीदवार नाखुश हैं जिनकी मनसूख हुए इम्तहानात के जरिए पहले ही तकर्री की जा चुकी है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: एहतजाज कर रहे तलबा ने रियासती हुकूमत की जानिब से 22 इम्तहानात को मनसूख करने के सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी किए जाने और JPSC सिविल सर्विसेज और JSSC CGL समेत 45 इम्तहानात में बेसाब्तगियों की तहकीकात का हुक्म दिए जाने के बाद अपना एहतजाज खत्म कर दिया है। तलबा ने तहकीकात के लिए हुकूमत को ये वार्निंग देते हुए 60 दिन का वक्त दिया है कि अगर तहकीकात गैर मुनसिफाना या नाकाफी साबित हुई तो वह अपना एहतजाज फिर शुरू करेंगे। तलबा ने आज शाम रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से एल्बर्ट एक्का चौक तक एक आभार यात्रा भी निकाली। इस दौरान हुकूमत के इस फैसले से 2628 उम्मीदवारों की तकरीरियां मुतासिर हुई हैं और उन्होंने अपनी नौकरियों और मुस्तकबिल के सिलसिले में तशवीश का इजहार करते हुए झारखंड सेक्रेटेरिएट और प्रोजेक्ट भवन के बाहर एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे मुलाजमीन ने कहा कि उन्होंने मुकर्रा अमल के जरिए इम्तिहान पास किया है और उन्होंने कहा कि अगर बेजाब्तगियां हुई हैं तो कसूरवार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि मुंतखब और मुकर्रर हुए उम्मीदवारों की तकरीरियां मंसूख की जाएं। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: मगरबी बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने मुबैना नफरत आमेज तकरीर के मामले के सिलसिले में अदालत के सामने पेश न होने पर तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट महवा मोइत्रा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने का हुक्म दिया है। कृष्णा नगर अदालत ने इस बात का भी हुक्म दिया है कि वारंट जारी करने के सिलसिले में एक रिपोर्ट 28 अगस्त तक दाखिल की जाए। मोइत्रा के खिलाफ मुबैना तौर पर खवातीन की तौहीन और नफरत आमेज तकरीर करने का मामला है। अदालत ने इससे पहले इस मामले में उन्हें समन जारी किया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत में अमरीकी सफीर सर्जियो गोर ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा करार देते हुए कहा है कि मरकज और खित्ते की हुकूमतों ने सलामती की सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए अहम इकदाम किए हैं। जनाब गोर जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे पर हैं, जहां उन्होंने श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की। उन्होंने वजीर आला के साथ अपनी मुलाकात को मुस्बत करार दिया और कहा कि फरीकैन ने मुस्तकबिल से मुतालिक अहम इकदाम पर तबादला ख्याल किया। जनाब गोर ने कहा कि हालांकि आज कोई रस्मी ऐलान नहीं किया जा सकता, ताहम सफर से मुतालिक एडवाइजरी में कमी लानी चाहिए, क्योंकि नई दिल्ली और मकामी हुकूमत की कोशिशों की बदौलत सलामती की सूरत हाल में बेहतरी आई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पब्लिक सर्वेंट्स को मशवरा दिया है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल सिर्फ मालूमात फराहम करने और शहरियों के साथ जुड़ने के लिए न करें, बल्कि इसे उनकी शिकायतों को सुनने, समझने और कार्रवाई करने के लिए भी

जोर दिया है। और नीदरलैंड्स में मर्दों के FIH हॉकी आलमी कप में भारत पाकिस्तान को 3-5 गोल से हराकर दूसरे राउंड में पहुंच गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Jeff Jackal ve Şeyh Hey.
1: 아카시와니 है चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण युवा ऋण और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला
2: सरकारी बैंकों की तरफ से दो दिन पहले ही एक मंथन किया गया और उसमें तमाम मुद्दे निकलकर सामने आए और साथ ही वित्त मंत्रालय ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई और एक रूपरेखा तय हुई कि आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर को किस तरह से काम करना है इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र कुमार भसीन साहब मौजूद हैं जो जोनल हेड हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के और साथ ही साथ अश्विनी राणा जी भी मौजूद हैं जो पुराने बैंकर हैं आप दोनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले नरेंद्र जी आपसे समझना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर से जो युवाओं के लिए एक महीने का विशेष बैंकिंग अभियान शुरू होने जा रहा है इस अभियान के जरिए युवाओं को बैंकिंग से जोड़ने की आखिर जरूरत क्यों महसूस हुई
3: नमस्कार तो बेसिकली जो दो दिन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें जो 7 थीम थे उन थीम में से एक सेकंड थीम था जो बैंकिंग फॉर यूथ करके था और जो अभी इवन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन मैम ने भी अपने इनॉग्रल सेशन में बोला कि 29% जो पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन हमारी जो कंट्री की है एंड 15-29 ईयर्स ऑफ एज के तो जो ये लोग यूपीआई इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बैंकिंग को समझते हैं तो अभी जो हमारे जिस तरह के 7 मुद्दे भी हैं और जिस तरह बैंकिंग कंसोलिडेशन करके मेन पर्पस था कि 4 बड़े बैंक हो और इवन प्रधानमंत्री ने भी इंडिपेंडेंस डे के उसमें कहा कि उसमें से एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो टॉप 5 ग्लोबल में आए तो अब उसी मुद्दों को लेते हुए देखा जाए तो ये कि यंग जो जनरेशन है जो बैंकिंग को समझती है और बैंकिंग प्रोडक्ट को लाती है तो इसीलिए ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि 2 अक्टूबर से जो एक यूथ कैंपेन दैट इज अ बैंकिंग फॉर यूथ करके लाया जाए और अभी पब्लिक सेक्टर बैंक को जरूरत है कि हम वापस कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज और स्किल सेंटर में जाएं जहां पे वहां के लोगों को बच्चों को यंग जो आप कह रहे हैं कि जेन जी इनको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जाए हालांकि प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑलरेडी कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं अपना एम्प्लॉयज हैं तो उससे एक नया लाइफ साइकिल अप्रोच जो हम अभी देख रहे थे कस्टमर का हम सोचते हैं कि जब से वो खाता खोलता है लाइफ साइकिल अप्रोच बट अब लाइफ साइकिल की जगह हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की जरूरत है कि ताकि ये कैंपेन का भी यही फोकस है कि जैसा ज्यादा लोग टैक्स सेवी हैं यंग पीपल और 66% यूपीआई ट्रांजैक्शन जो 18-29 साल के बच्चे क्योंकि ये मोबाइल बैंकिंग और ये बैंक में कम विजिट करते हैं तो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग तो इसी को ये सोचते हुए कि यूपीआई और इन बैंकिंग प्रोडक्ट्स को बढ़ाते हुए और मेनली जो हमारा विकसित भारत 2047 का भी यही है कि स्ट्रांग बैंक बने बड़े बैंक बने और इसीलिए अगर देखा जाए तो इसके लिए हमें यंग जनरेशन जो आज खाता ही नहीं और अदर तरह के क्रेडिट ट्रांजैक्शन में यूज करें तो ये पर्पस है जिससे मतलब एक नया वेव बैंकिंग इंडस्ट्री में आएगा
2: बिल्कुल अश्विनी राणा जी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आपने एक लंबा समय दिया है बैंकिंग व्यवस्था को तो 16 साल से ऊपर के युवाओं को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए बैंक जमीनी स्तर पर क्या क्या कदम उठाएंगे क्या चुनौतियां हैं और क्या आप एक कमी देखते हैं जो बैंकों की तरफ से युवाओं को आकर्षित करने के लिए अभी है और उसे आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा
4: देखिए एक अच्छा है कि भाई सरकार युवाओं को बैंकिंग के साथ जोड़ने की बात कर रही है जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि भाई बैंकों के साथ युवाओं को आज जोड़ने की जरूरत नहीं है उनको जोड़ना चाहिए था स्कूल टाइम से स्कूल में जब बच्चा एंटर होता है उसी समय उसका अकाउंट खुले उसकी जो फीस है उसी अकाउंट में से चली जाए तो उसको एक फीलिंग आती है कि मैं हाँ मैं पर्सनल बैंकिंग कर रहा हूँ और आज का जो युवा है वो बिल्कुल डिफरेंट है पहले बैंकिंग थी क्या बैंकिंग विद स्माइल आज क्योंकि वो बैंक जाता ही नहीं है बहुत ऐसे युवा हैं कि खाता खोलने से 10-10 साल हो गए वो बैंक कभी नहीं गए वो सिर्फ ऐप से ही लेकिन सरकारी बैंकों को उस जो जनरेशन है उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो जो एप्स हैं या टेक्नोलॉजी है उसको आज के युग में लाना पड़ेगा प्राइवेट बैंक उसमें बहुत पहले से हैं तो इसलिए बैंकों को उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्व करना होगा और उसके लिए वैसी ही आपको ह्यूमन कैपिटल एचआर जो है ह्यूमन रिसोर्स जो है वो वैसे ही चाहिए मशीनें सिर्फ नहीं काम कर सकती ह्यूमन कैपिटल का भी टच बहुत जरूरी है
2: बिल्कुल तो मशीनें काम नहीं कर सकती और एक बैंकिंग व्यवस्था में ऐसे काम करने वाले लोग होने चाहिए जो जेन जी

0: या जो उनके कस्टमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी बातों को समझें और उनकी उम्मीदों पर खरे भी उतरें। नरेंद्र जी, सरकार युवाओं के लिए एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की भी बात कर रही है, ये इसकी रूपरेखा किस तरह की हो सकती है और खासतौर पर युवाओं की अगर हम बात की जाए तो उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं इसके जरिए?
1: देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि अश्विनी जी ने सही बोला कि राइट फ्रॉम स्कूल डेज से अगर बच्चों को बैंकिंग, तो यही थीम इस जो अपना कैंपेन है कि कैंपस टू कैरियर, जो स्कूल से कैरियर और कैंपस टू कैरियर। और जो आज का जो यंग जनरेशन है, वो जैसे हमारे फॉर्म्स हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स हैं, लंबे लंबे फॉर्म है, साइन करना, क्रेडिट, अब ये जो बच्चे आज के जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में, इनमें आइडियाज होंगे और ये यंग बच्चे एंटरप्रेन्योर और बिजनेस, अब उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर यंग उसका कोई क्रेडिट तो हिस्ट्री होगी नहीं, ना सिविल होगी कि पहली बार लोन रहे, तो इसलिए हमें डॉक्यूमेंटेशन और क्रेडिट कोलेटरल से उनके आइडियाज, उनके कैश फ्लो, जो उनके उस चीजों को देखना पड़ेगा। और मेनली ये कि इस कॉन्फ्रेंस का जो यंग जनरेशन का एक नया इनिशिएटिव लिया जो है, और उसी से ये कि आगे नए नए आइडियाज आएंगे, तो जो अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमें जाना है ग्लोबली, तो यंग, क्योंकि हमारे कस्टमर भी यंग जनरेशन है, तो यंग प्रोडक्ट है। और जैसे अश्विनी सर ने बोला कि अब कस्टमर आता ही नहीं है बैंक, तो कस्टमर आएगा नहीं, तो ह्यूमन टच, और पर ह्यूमन टच बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल ही रहेगी, क्योंकि आर्टिफिशियल ह्यूमन, जहाँ बैंकिंग है या कस्टमर, दोनों ही ह्यूमन बींग है। तो इसलिए यंग जनरेशन को कैसे अट्रैक्ट करना है, थ्रू मोबाइल, थ्रू इवन सीधारम मैम ने ये भी बोला कि उसमें अट्रैक्ट करने के लिए जैसे हम लाइफ स्टाइल वोचर्स देते हैं या रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं, वेलनेस है, तो इन चीजों को सारे नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, अट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि यंग जनरेशन जो कल का जो हमारा फ्यूचर है बैंकिंग का, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सके।
0: बिल्कुल, ताकि भविष्य सुदृढ़ रहे, उस दिशा में ये कोशिश की जाएगी। अश्विनी जी, एक बड़ी चुनौती ये है कि आज का यूथ इंटरनेट पे रहता है, तमाम सोशल मीडिया एप्स पर रहता है, और उसके जरिए कहा जाए तो फायदा होने के बजाय कई मौकों पे नुकसान भी हो जाता है, युवा गुमराह हो जाता है, और वो तमाम अलग अलग एप्स जिनके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं होते हैं, वहां से भी वो लोन ले लेता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि फॉर्मल जो बैंकिंग व्यवस्था से उसे जोड़ दिया जाएगा, तो युवा चाहे पढ़ाई की बात हो, नौकरी की बात हो, बिजनेस की बात हो, या निवेश जैसे अलग अलग वित्तीय फैसले, उन जरूरतों को इन बैंकों के जरिए पूरा किया जा सकता है?
2: नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और उनके पास लिक्विडिटी भी है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि भाई उनको फंड्स की प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज की प्रॉब्लम हो, बस ये है कि भाई उसके अंदर उनकी समय के अनुसार अपने आप में बदलाव, ये जरूरी है। और जहां तक आप ऐप की बात कर रहे हैं, ऐप के लिए सरकार को एक बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा, जैसे और चीजों के लिए उठाते हैं, मेटा है या दूसरी कोई भी एजेंसी, जो भी प्लेटफॉर्म है, कि भाई इस तरह की ऐड आती क्यों है। अब मैं बता रहा हूं आपको, बैंक वाले कोई पेंशनर का कार्ड इशू नहीं करते, लेकिन आप देखेंगे फेसबुक पर हर बैंक की ऐड आ रही है कि आप जो है पेंशनर हैं, तो आप इस बैंक का अपने पेंशन कार्ड बनवा लीजिए। और लोन लेने की और इतने भ्रामक प्रचार हैं, उसके ऊपर सरकार को सख्त कानून बना के, ताकि लोग उसमें ट्रैप ना हो जाए। भाई पढ़ा लिखा युवक तो समझ जाएगा, लेकिन जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे भी बहुत युवक हैं, वो उस झांसे में ना आए, वो भी हमारी बैंकों की और सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, तो हाल ही में सरकार ने तमाम ऐसे ऐप्स को बैन किया है और इस तरह के ऐड भी बैन किए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में इन नियम कानूनों को और सख्त किया जाए। नरेंद्र जी, इस दो दिनों के मंथन की अगर हम कहें तो उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्या बैंक सिर्फ इस नई व्यवस्था के जरिए खाता खोलने पर ही उनका फोकस रहेगा, या युवाओं को लंबे समय तक अपने साथ जोड़ने की भी कोई फुल प्रूफ एक योजना, एक प्लानिंग की जा सकती है इसके जरिए?
1: नहीं, कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने बताया कि 7 थीम थे, 7 मुद्दे थे इसमें, जिसमें डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पहला मुद्दा था, जिसमें जो कि बैंक के लिए कासा और एफडी वगैरह जो होता है उसी के बेस पर क्रेडिट होता है। सेकंड जो बैंकिंग फॉर यूथ था, फिर इन्वेस्टमेंट साइकिल, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो कि इंटरनेशनल की तरफ जाना है, तो हमें बड़े बड़े एग्रीकल्चर पे फोकस तो है ही, और इवन क्रेडिट कार्ड बिजनेस को भी रिवैम करेंगे नए तरीके से, और फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो सभी जो मुद्दों का यही था कि इसमें अब एक्शनेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, और पीपल सेंट्रिक आउटकम, मतलब कि जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिकली आपने देखा होगा बजट फरवरी में एक हाई पावर कमेटी बैंकिंग के लिए एक बनाने की जो हुई थी, तो बेसिकली उसी का अनाउंसमेंट इवन फाइनेंस मिनिस्टर इनॉग्रेशन बोला कि आजकल में अनाउंस हो जाएगा, और उसी के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें 125 एमडी सीएमडी बड़े बड़े लोग आए, जो यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ दो दिन का, वो एक मटेरियल रेडी हो रहा है, जो मटेरियल उस कमेटी को प्रेजेंट किया जाएगा। तो मेनली उसमें से यूथ का, जैसे आपने बताया कि यही था, एफएम का भी था कि यूथ को हमें जल्दी कैप्चर करना पड़ा, ये नहीं कि हम उनको वेट करने की जब उनकी जॉब लग जाए या फर्स्ट सैलरी अकाउंट खुले। और जैसे अश्विनी ने बताया कि बैंकिंग के बहुत सारे

0: है, राइट फ्रॉम द एजुकेशन लोन से लेके स्किल डेवलपमेंट, और आजकल अप्रेंटिसशिप भी आ रही है, इंटर्नशिप्स भी स्टूडेंट को दिया जाता है ताकि उनको यंग कस्टमर को एजुकेशन, फाइनेंस से लेके फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, पहला क्रेडिट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट, ताकि वो वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा सके। और पब्लिक सेक्टर बैंक का जैसे ऑलरेडी हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस है, हमारे पास एजुकेशन लोन है, तो इसी तरह एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएट करके जो यंग कस्टमर को अ कस्टमर फॉर लाइफ हमेशा के लिए, ताकि हम जैसे हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहते हैं, ताकि उनको एक्वायर करके और उनको एक जॉब्स मिलती हैं तो नया रोजगार बनता है, बिजनेस डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए कैच दीज पीपल यंग जो है वही हमारा मुद्दा इसमें, और इसी के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि जितना जल्दी हम यूथ को एंगेज करेंगे उतना ही वो रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे, और जब उनको सेविंग के हैबिट्स पता चल जाए, एफडीज वगैरह या अदर देन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, तो उनको अलग अलग इन्वेस्टमेंट के पैटर्न पता चल जाएंगे। तो इसलिए कि स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल जर्नी उनको जितना जल्दी हम फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में ले आए वो हमारे लिए भी फायदा, और बेसिकली ये जितने भी हमारे साथ जो दो दिन डिस्कशन हुआ बेसिकली वही है कि कोलैबोरेशन है और अपना कस्टमर वेलफेयर के ऊपर फोकस है और एक ट्रस्ट के ऊपर, क्योंकि टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी इनके ऊपर भी डिस्कशन था कि जितना जितना सेफ बैंकिंग हम इसको करेंगे, तो डाटा एनालिटिक्स की बातें भी थी। तो ये सारे जितने भी मुद्दे आइडियाज है इनको अब फॉर्मली करके जो हाई कमेटी उसके आगे प्रेजेंट करके आगे ले जाया जाएगा।
1: दूसरे दिन के इस कॉन्फ्रेंस में जो चर्चा हुई थी वो जो थीम थी उसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वैल्यू चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर बात हुई, साथ ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात की गई। खासतौर पर ये वो कर्ज होते हैं जिसके तहत किसानों को, छोटे कारोबारियों को और कमजोर वर्ग को कर्ज दिया जाता है। तो आप आज के दौर में इस तरह के कर्ज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या देखते हैं जो आने वाले दिनों में इस कॉन्फ्रेंस के बाद बैंक दूर कर सकते हैं?
0: प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग में वो ये कि जो हम लोन वगैरह देते हैं उसका फिर अभी एनपीए तो काफी हमारा रिजॉल्व हो गया, जो 14.6 से 0.39 आ गया। अब प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग हो गया, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, उसमें बेसिकली रिकवरी और क्रेडिट मॉनिटरिंग का ज्यादा फोकस रहता है। तो इस कॉन्फ्रेंस में इसका भी फोकस भी किया कि एसेट क्वालिटी तो इम्प्रूव हुई है हमारी सब्सटेंशियली, और एसेट क्वालिटी को फर्दर अब ये हमारा कि फोकस ज्यादा कि नंबर और टारगेट पे नहीं होना चाहिए कितने लोन करने हैं हमें, क्वालिटी लोन होना चाहिए ताकि जिस पर्पज के लिए, और फिर फॉलो अप, रिकवरी और मॉनिटरिंग जो सबसे जो मेन रीजन रहता है कि एनपी के हो जाते हैं कि हम लोन तो दे देते हैं और उसके बाद मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, रिकवरी नहीं हो पाती। तो इसी कॉन्फ्रेंस का ये कि इसको और लोगों को, और ये नहीं कि जब किसान या जो भी प्राइवेटी सेक्टर अप्रोच करे तो बैंक को भी टाइम टू टाइम असेसमेंट करना पड़ेगा कि कितना कब कब उसको लोन चाहिए या आगे उसको फर्दर ग्रोथ करना है। तो रोल्स काफी चेंज होने वाला है बैंकिंग का, जो क्रेडिट मॉनिटरिंग है ताकि एनपीए को अब एक बार कम हो गया ये नहीं कि दोबारा हो जाए, तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए फॉलो अप और थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच उसमें लानी पड़ेगी।
1: बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच लानी पड़ेगी, बैंकिंग काफी बदल गई है। तो अश्विनी जी आपसे ये समझना चाहेंगे इसी सवाल का एक एक्सटेंशन कहे तो, सरकार ने बैंकों से कहा है कि कर्ज देने के अपने लक्ष्य में किसी भी तरह की कमी न रहने दे, तो इसे सुनिश्चित करने की अगर हम बात करें तो बैंक अपने अंदर क्या बदलाव करेंगे, क्योंकि ब्रांच पहले से है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है, अब एक सिर्फ अप्रोच को बदलने की जरूरत है, तो वहाँ क्या बदलाव आप देखते हैं होगा आने वाले दिनों में?
2: आपने सिर्फ लोन ही नहीं देना, लोन देने के बाद उसकी फॉलो अप प्रॉपर यूज हो रहा है, उसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है, रिकवरी है, वो चीजें भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए टारगेट ज्यादा ना फिक्स करके उसको इनिशिएट करके कि हाँ भाई ज्यादातर लोगों तक वो पहुंचे, वो एक बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस, मुझे लगता है जैसे आपने एक हाउसिंग लोन के लिए, कार लोन के लिए कुछ अलग अलग ब्रांचेस स्पेसिफिक बना दी, वैसे इनके लिए आपको स्पेसिफिक ब्रांचेस और उस तरह का जो स्टाफ है वो भी रखना पड़ेगा। अब आप एक देखिए, आज गोल्ड लोन कितना पॉपुलर है, गोल्ड लोन बैंक भी करना चाहते हैं, आप उसके लिए स्पेसिफिक ब्रांचें बना दीजिए, तो उससे क्या होगा वो उस ब्रांच के अंदर उसका जो उसको स्कैन करने का कि गोल्ड ओरिजिनल है वो भी रहेगा, गोल्ड को सिक्योरिटी के तरीके से भी। तो यानी हर, अब एग्रीकल्चर जो लोन है वो हर ब्रांच में तो नहीं हो सकता, तो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपको उस तरह की वर्क फोर्स भी एडिशनल डालनी पड़ेगी अगर वहाँ आप कोई चीज को अचीव करना है, तो वो एक बहुत जरूरी है। और दूसरा, आप जैसे डिपॉजिट की बात, मोबिलाइजेशन की, हम यंगस्टर को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आज यंगस्टर की आदत क्या है, बाय टुडे पे टुमारो, तो वो डिपॉजिट की बात ही नहीं सोचता। तो आपको डिपॉजिट का कोई ऐसा अट्रैक्टिव प्लान लाना पड़ेगा ताकि वो अट्रैक्ट हो, पुराने एफडी और सेविंग से वो आपके पास, और डिपॉजिट के बिना बैंकिंग नहीं हो सकती भाई, आपके पास अगर फंड्स नहीं है तो आप फाइनेंस कहाँ से करो। तो आपको जो डिपॉजिट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उन जेंजी के अकॉर्डिंगली आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आप वो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन भी कर सकते
1: जी। और एक जो क्रेडिट

0: कार्ड को लेकर के और एक क्रेडिट व्यवस्था को लेकर के भी खास अहम चर्चा हुई, एक थीम थी, उसको लेके आपका अश्विनी जी क्या कहना है कि वो कितना जरूरी रहेगा आज के माहौल में, खासतौर पे युवाओं की बात करें तो?
1: उनकी एक सोच है बाय टुडे पे टुमारो, तो वो उनके लिए क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब बैंकों के लिए भी, क्योंकि वो एक टारगेट है उनके लिए। लेकिन उसके अंदर भी आपको देखना पड़ेगा कि वो उसको प्रॉपरली यूज कर रहे हैं और उसकी रिपेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज भी आप देखोगे तो बहुत सारे बैंकों का जो एनपीए है या वो ट्रेड के कार्ड के कारण ही है, क्योंकि वो उस तरह उसकी आप सर्विस नहीं कर पाते उसको देने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, अब नए भी फिर आप ले आएंगे तो क्रेडिट कार्ड, क्योंकि वो विदाउट एनी सिक्योर लोन नहीं है वो, तो उसको आप किसको दे रहे हैं? अब आप देखिए कि मेट्रो स्टेशन पर भी क्रेडिट कार्ड बांट रहे होते हैं, अरे भाई उसकी क्रेडिबिलिटी तो हो कि भाई वो पे कर सके, जितनी उसकी लिमिट बना रहे हो उसकी सैलरी तो इतनी हो, तो उसको भी आपको सारी चीजों को फोकस करके उसको जो है प्रमोट और करने की जरूरत है।
0: यानी कस्टमर स्पेसिफिक लिमिट और इन सारी चीजों पर ध्यान रखते हुए उसको दिया जाएगा, तो एक तरह से एनपीए पे कहें काबू
1: पाएगा। भाई सिर्फ ये नहीं कि हाँ भाई नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड हमने इतने दे दिए, आप किन को दे रहे हो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
0: बिल्कुल, आंकड़े बढ़ाने से बात नहीं बनेगी। नरेंद्र जी, जिस तरह से डिजिटल व्यवस्था तेजी से बढ़ रही है बैंकिंग सेक्टर में, उसके साथ ही साथ साइबर फ्रॉड भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है, तो ग्राहकों को और उनके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या लगता है बैंकों की तरफ से किन नए प्रयासों की जरूरत है?
2: नहीं, ऑलरेडी इसमें काफी बैंकों ने भी, इवन गवर्नमेंट में भी, और काफी अवेयरनेस है और साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस, इवन आरबीआई का भी आपने देखा, आरबीआई कहता है उनके वेबसाइट में, और इवन डिजिटली, तो क्योंकि आपकी बात सही है कि एक तरह हम कह रहे हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, यूपीए बढ़ रहा है, पर उधर से साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं और तरह तरह के फ्रॉड आ रहे हैं, लाइक हमने फिशिंग है, विशिंग, ईमेल से भी ओटीपी आ गया, तो अवेयरनेस का काफी बैंक्स भी, हर बैंक अपने देखा गया, आईबीएम में हमने अभी रिसेंटली एक बैंक का ट्रेनिंग किया, तो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग से पहले 15 मिनट एक साइबर के ऊपर की टाइप्स ऑफ साइबर, डूज एंड डोंट की कैसे, तो कस्टमर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट, डिजिटल रिस्क जैसे आपने देखा कि आजकल काफी, तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, प्लस अपना गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है I4C इंटरनेशनल, अपना कोऑर्डिनेशन सेंटर है 1930 पे कॉल करके, बट वो ये कि जितना अवेयरनेस लाएंगे जितना लोगों को, अब ओटीपी के ऊपर काफी हुआ, तो अब लोगों को ओटीपी समझ गया कि नहीं करना, बट कई बार फिशिंग ईमेल आ जाता है या कहीं मिक्स करके कोई मैसेज आ गया, तो टाइम टू टाइम हर फॉरम में, इवन बैंक्स अपनी मीटिंग में कस्टमर अवेयरनेस, इवन फ्रंटलाइन स्टाफ को भी बोलेगी हर तरह के अवेयरनेस लाए, बिकॉज जब तक हम साइबर फ्रॉड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डिजिटल का जो हमारा बेनिफिट हो रहा है वो नुकसान में, तो इसलिए काफी बैंक, गवर्नमेंट, इवन साइबर, हर पुलिस स्टेशन भी, साइबर पुलिस स्टेशन भी जहाँ पे हेल्प है, कॉल कर सकते हैं आप इमीडिएटली, आप जो वेबसाइट है हेल्पलाइन साइबर सिक्योरिटी के 1930 और ये www. ये साइबर, तो साइबर सुरक्षा कवर में वहां जाके अपना आधार कार्ड और नंबर नोट कीजिए, और जो भी आपका कोई स्कैम या फेसबुक या जो भी इंस्टाग्राम हैक हुआ है, तो इसमें आजकल काफी फास्टली, और ये कि आपको जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी उसका समाधान मिलेगा।
0: तो अश्विनी जी, आम ग्राहकों को इसमें किस तरह से भागीदारी देनी चाहिए कि वो एक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए साइबर ट्रैप में ना आए?
1: ग्राहकों को तो निश्चित रूप से क्या है कि जो जो गाइडलाइंस बैंक जो हैं इशू करते हैं टाइम टू टाइम, भाई किस तरह के, अब जैसे SMS है, तो SMS मतलब किसी बैंक के नाम का आया है अगर, और उसके आगे S लगाए तो ही वो जेन्युइन बैंक का मैसेज है, अदरवाइज अगर उसमें लास्ट एक S अल्फाबेट नहीं है तो वो नहीं है। दूसरा, उसकी जो वेबसाइट है उस पे भी आप जाते हो, या मेल है bank.in, बैंकों की आज एक ऑथेंटिकेटेड मेल है, उसके अलावा किसी को नहीं। कहीं से भी फोन आता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, कोई मैसेज आता है विदाउट एस आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, तो ही बच सकते हैं। उसके साथ साथ बैंकों को भी डाटा सिक्योरिटी के लिए अभी बहुत सारी चीजें आरबीआई कर रहा है, म्यूल हंटर उन्होंने एक ऐप बना दिया, लेकिन वो म्यूल हंटर ऐप तब काम करता है जब वो फ्रॉड हो चुका होता है, उससे पहले वो अकाउंट, क्योंकि अकाउंट तो एक ऑर्डिनरी अकाउंट है, वो कब म्यूल अकाउंट बनता है जब फ्रॉड और उसमें पैसा आ जाता है, तो उसको भी जो बैंकों का जो टेक्नोलॉजी है उसको भी और जो है अपग्रेड करने की जरूरत है कि भाई कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो फ्रीक्वेंटली हो रही है, क्योंकि ब्रांच में बैठा, कई बार लोग कहते हैं कि ब्रांच मैनेजर जिम्मेवार है, ब्रांच मैनेजर को पता ही नहीं, क्योंकि सारा कुछ सेंट्रल सर्वर से जो ट्रांजैक्शन है वो मूव होती है, तो वहां पर इतनी ज्यादा उसको आपको अवेयरनेस चाहिए कि वो आपके पास वो टेक्नोलॉजी चाहिए, वैसे स्टाफ चाहिए। अब बैंक में क्या है कि बैंक में जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं उनको भी आप जनरल इम्प्लाई की तरह ट्रांसफर कर देते हो। जो एक ट्रेंड होता

0: कम से कम जो टेक्नोलॉजी और के साथ लोग हैं वो रेगुलर उस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में रहें ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो काम आ सके। उनको जनरल बैंकर इम्प्लाई मत समझिए, तभी जाके आप कर सकते हैं, नहीं तो नए नए लोगों को लाते रहेंगे क्योंकि आप उसको आउटसोर्स भी नहीं कर सकते। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो, और दूसरा ये जो सारी चीजें आई है, जो बात वहां पर हुई है बहुत अच्छी है, और जब ये हाई पावर कमेटी बनेगी तो मेरा ये सुझाव है हाई पावर कमेटी को अलग अलग ग्राउंड रियलिटी के लोगों से बात करके उसके अंदर बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी भी जानना उस कमेटी के लिए बहुत जरूरी है।
1: नरेंद्र जी, दो दिन की बैठक में 7 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, तो अब इन चर्चाओं को जमीन पर लागू करने के लिए अगला कदम बैंकों की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या होगा?
2: सरकार का यही मैंने बताया कि जो जितने भी डिस्कशन हुए, तो जैसे FFM ने बोला कि जितना भी मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा हुआ उसी सारे मुद्दों को एक कंसोलिडेट करके जो अब नेक्स्ट जो मीटिंग होगी, जो हमारा बेसिकली इन 7 दिनों का जो अब निचोड़ देखें तो बेसिकली वही है कि टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट के ऊपर बात हुई, कस्टमर सेंट्रिसिटी का रहेगा कि अल्टीमेटली देखो डिजिटल हो या साइबर सिक्योरिटी से बचाना, तो मेनली कस्टमर सेंट्रिसिटी और कस्टमर इम्प्रूवमेंट के ऊपर ही है। तो कोलैबोरेशन मैसेज है यहाँ पे, कॉमन मैसेज की IT और डिजिटल ये सबको एक, और मेनली डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, तो जैसे अश्विन सर ने बोला कि बैंक के लिए इम्पोर्टेंट है उसी के बेस पे, और यूथ बैंकिंग को जो हम ऐड करेंगे तो उससे हमारा जो एक नया वेव उसमें आ जाएगा। और बट अल्टीमेटली देखा जाए तो क्वेश्चन यही उठेगा कि पब्लिक सेक्टर नंबर ऑफ ब्रांचेज उनका स्केल काफी बड़ा है टेक्नोलॉजी, और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो ये कि अब हम लार्जर बैलेंस शीट्स के ऊपर तो फोकस अब धीरे धीरे हमारा मूव हो रहा है, तो और बैंक्स को थोड़ा एजाइल होना पड़ेगा, थोड़ा डिजिटल के साथ सेफ एंड सिक्योर, और नेक्स्ट जो इंडिया का नेक्स्ट फेस ऑफ ग्रोथ इसी के ऊपर है, क्योंकि अगर हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो अगर हमें बड़े बैंक बनाने हैं विद बेस्ट कस्टमर सर्विस, बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट, तो आई थिंक ये नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि जो भी यहाँ पे 2 दिन के डिस्कशन हुए हाई पावर कमेटी के लिए एक ऐसा मटेरियल बनेगा, और जैसे अश्विन सर ने कहा कि डाउन द लाइन रियलिटी से जरूर जुड़ी है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आम कस्टमर होता है वहां तक उसको बेनिफिट नहीं पहुंच पाता, तो दैट इज इम्पोर्टेंट है। और जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो बैंकर कस्टमर के पास पहुंचता है, मतलब डोरस्टेप बैंकिंग है, तो वहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक में भी थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं कि वेट करना कि कस्टमर ब्रांच में आए, तो हम एज अ बैंकर ऑल्सो वी कैन कस्टमर को वहाँ पे अवेयरनेस है और ऑन द स्पॉट डेमोन्स्ट्रेट करके चीजें बतानी ज्यादा जरूरी होंगी।
1: लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि हालांकि निजी बैंक की तरफ से भी अच्छा काम हो रहा है और सरकारी बैंक की तरफ से, लेकिन सरकारी बैंक का जब दायरा बढ़ेगा तो लोगों का बैंकिंग व्यवस्था की तरफ भरोसा भी और ज्यादा मजबूत होगा, ये भी इस पहल के जरिए देखने को मिलेगा?
2: हाँ, देखिए दोनों ही, क्योंकि पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसमें, और प्राइवेट सेक्टर ने जो एक नया यंग जनरेशन और इनके प्रोडक्ट्स, और क्योंकि वहां पे है कि स्टाफ भी यंग है कस्टमर भी यंग है, तो एक माइंडसेट और वो बात होती है। बट आई थिंक दोनों को मिलकर ही प्राइवेट सेक्टर बैंक तो रहे ही है, क्योंकि जितने भी हमारे सरकारी बैंक है 100 साल 118 साल कोई 120, तो वो तो हमारा रहेगा, बट जब दोनों साथ में काम करेंगे तो नेचुरली ग्रोथ तो उसमें आएगा बैंकिंग।
1: एक अहम बदलाव अगर हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस के बाद में, तो क्या बैंकिंग सेवा में किस तरह का बदलाव हमें दिखेगा आने वाले दिनों में?
2: बदलाव देखिए, अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काफी मुद्दा इसमें रहा, क्योंकि डिजिटली जितना अब हम डाटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो अभी ये है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अब रुकेगा नहीं ये, क्योंकि अभी अगर 30 साल पहले देखा जाए तो मैनुअल बैंकिंग से हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल है तो फिर यंग जनरेशन है, तो अगर उस दोनों को देखा जाए तो डिजिटल बैंकिंग अब धीरे धीरे बढ़ेगी, और उसको कैसे हम सिक्योर कर सकते, इसलिए साइबर सिक्योरिटी जो डिफरेंट 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ईमेल क्वेश्चनर है, अवेयरनेस, तो डिजिटल तो हमारा फ्यूचर है। इवन फॉर्मर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी एक लास्ट कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई फ्यूचर इज मनी इज नाउ डिजिटल ही है, उसके बैक नहीं जा सकते हम, तो CBDT है या डिजिटल करेंसी या RTGS, यही हमारे ऐसे है जो अब डायरेक्टली धीरे धीरे बैंकिंग का बेस बनेंगे।
1: अश्विन जी, 2047 तक सरकार भारत को एक विकसित देश बनाने की बात कर रही है, तो इस लक्ष्य में आप सरकारी बैंकों की सबसे बड़ी भूमिका क्या देखते हैं?
0: देखिए, सरकारी बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि सरकारी बैंक जो है उनका एक जो कस्टमर बेस है वो भी एक वाइड है, और वहीं प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास को जो है सर्व करते हैं, तो यहाँ पर और उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, और उसके अंदर मैं बार बार इसलिए ये कहता हूँ कि अब जैसे आप कह रहे हैं कि यूथ को अट्रैक्ट

0: करना है, 2 अक्टूबर से कर रहा है। तो अब यूथ को अप्रोच करने के लिए वैसा ही माइंड सेट चाहिए। अगर आप उस माइंड सेट के साथ जाएंगे, उस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे, उस जील के साथ जाएंगे जो उनसे बात कर सकता है, तभी आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। उसके लिए वैसा आपका माइंड सेट चाहिए और वैसे ही आपके पास वर्क फोर्स भी चाहिए।
1: नंदा जी, जो एक नए तरह के वर्क फोर्स और नए स्वरूप की बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है क्या नए प्रोडक्ट्स बैंक लेकर के आ सकते हैं? क्योंकि आप लोगों ने एक लंबा दौर देखा है बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव का। पहले बैंक सिर्फ कैश जमा करने और देने का काम करते थे, फिर वहां पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की भी एंट्री होती है और अब उसका स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है क्या नए तरह के प्रोडक्ट, किस तरह के प्रोडक्ट्स दिखाई दे सकते हैं जो लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो?
2: देखिए, बैंकिंग प्रोडक्ट अगर इस पर आरबीआई देखे तो हमारे वो ट्रेडिशनल वही है, सेविंग है, करंट है या फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट। बट अभी जो यूथ जो अगेन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है यंग जनरेशन, क्योंकि डिपॉजिट में अगर हम 3-4% की बात करें या 6-7% की, तो वो फिर यंग जनरेशन रिस्क थोड़ा ज्यादा ले सकते, तो इसलिए मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में जाते हैं। तो वहां पे इनको अपना म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, और बैंक्स के कई बैंक्स ने टाइप भी किया हुआ है कि म्यूचुअल फंड हो गए आपके, यूलिप प्रोडक्ट या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, जहाँ की थोड़ा सा रिस्क है, बट उसके साथ जो यंग जनरेशन है या जो नया कस्टमर हमारा जो बैंकिंग में आएगा, उनको थोड़ा सा मार्केट के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करने का, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट, तो बेसिकली न्यू प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, जैसे यूनिट लिंक इंश्योरेंस या FD के साथ है, या आप जैसे रेकरिंग डिपॉजिट की जगह अब सिप्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, हर महीने आप 1000 करते हैं, वो मार्केट के उतार चढ़ाव देखते हैं अल्टीमेटली। तो यही है कि अब जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, बैंकिंग कस्टमर भी यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि डिपॉजिट पे अब कस्टमर कम होते जा रहे हैं, बिकॉज लोग म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या यूनिट लिंक इंश्योरेंस या इन चीजों के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन हमें बनाने पड़ेंगे, कॉम्बो प्रोडक्ट जिसे कह सकते हैं, जैसे अब जनरल इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, PPF वगैरह, तो अब हर तरह का उसमें एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बनाना रहेगा। अब जो आज का जो बैंकर है वो खाली बैंकर नहीं है, अब कस्टमर के साथ वेल्थ क्रिएशन है कि अगर 1,00,000 रुपया देता है तो उसको कैसे डिवाइड करेगा, तो अब थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानर के रूप में बैंकर को बनाना पड़ेगा यंग जन पीपल को, क्योंकि जब जैसे जैसे एज यंग होते हैं तो लोग रिस्क है, उसके बाद फिर हमारे पास पेंशन प्लान है, तो एक बार जो कस्टमर अकाउंट खोलता है, यंग जनरेशन एजुकेशन लोन से लेकर सैलरी अकाउंट से धीरे धीरे फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, तो इन्हीं कॉम्बो प्रोडक्ट्स को ऐसा बनाना पड़ेगा जो अट्रैक्टिव हो या जिनको उनको लगे कि यस उनके बैंक के साथ जुड़ा रहेगा तो आगे उसको। और बेसिकली अगेन पब्लिक सेक्टर बैंक नंबर ऑफ ब्रांचेस हमारे पास काफी हैं, हमारा रीच काफी है, तो इन्हीं को देखते हुए अगर ट्रस्ट है बैंक के ऊपर है और हमारा रीच है, तो मॉडर्न बैंकिंग का एक ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंस्टीट्यूशन बन सकता है, और यही हमारा 2017 का मुद्दा भी है कि हमें टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट बैंक्स बनाने।
1: और एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे ये भी चाहेंगे कि एक तरह से फाइनेंशियल हिस्ट्री भी एक यंग एज से देश के लोगों की तैयार होने जा रही है, तो उससे किस तरह के फायदे लोगों को मिले?
2: फायदे तो देखिए, जितना जल्दी अगर हम बैंकिंग से जुड़ते हैं, जितना जल्दी हम अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उतना ही फायदा होता है। तो इसीलिए मैडम ने बोला कि सीता मैम ने कि हम कॉलेजेस में जाएंगे, वहां पे बच्चों के हैबिट्स बनाएंगे, सेविंग्स वगैरह होगा, तो धीरे धीरे उनका बैंकिंग इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो इसी ये नए प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, प्लस डिजिटल है और थ्रू डाटा एनालिटिक हम जो क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग करते हैं, तो इन सबको इकट्ठा लेके चलेंगे तो आई थिंक हमारा डिपॉजिट भी बढ़ेंगे और एक जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन और सभी के जितने सभी का खाता हो, जितने लोग बैंकिंग में आएंगे और उतने ही प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे।
1: श्री जी, आपसे भी एक सवाल का जल्दी से जवाब चाहेंगे कि अगर इस कॉन्फ्लुएंस का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा बताना हो जो आम लोगों, युवाओं और किसानों के लिए सीधे फायदेमंद हो, तो वो क्या होगा?
0: वो ये है कि बैंकिंग को 2047 में किस रूप में हम देखना चाहते हैं, मतलब वो सभी जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे यूथ है, चाहे एग्रीकल्चर है, ट्रेडर है, MSME है, सबकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए और सबको सर्व करने वाला बैंक चाहिए। तो वो दोनों तरफ से है, मतलब वैसा ही आपको कस्टमर बेस चाहिए और वैसा ही ये चाहिए।
1: बिल्कुल, तो अब देखना होगा सरकारी बैंक या तमाम बैंकिंग व्यवस्था इन चीजों को किस तरह से अमलीजामा पहनाती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण, युवा ऋण और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR Official पर भी सुन सकते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी रांची से कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महफिल। श्रोताओं, में इस समय रात्रि के 10 बज रहे हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम महफिल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज हम पेश कर रहे हैं गुलाम अली के स्वर में चंद गजलें। तो चलिए गजलों का सिलसिला शुरू करते हैं इस गजल से।

श्रोताओं, इन्हीं गजलों के साथ आज का गजल का कार्यक्रम महफिल अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चाय बसा केंद्र से बोल रहे हैं। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाय बसा केंद्र है। अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम सुरों के राम।

कार्यक्रम शुरू किरण सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जीवन में कई ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं जहां अपने सनम को मनाना पड़ता है, तो चलिए आपको सुनवाते हैं फिल्म सनम तेरी कसम का ये गीत आशा भोसले की आवाज में।

श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे दादा फिल्म का गीत यशोदास के स्वर में। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म त्रिदेव का ये गीत मनहर उदास अलका याग्निक की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरु के नाम। अब अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है तुम बिन, ताज स्टूडियो नासू की आवाज में।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे ये है मुंबई मेरी जान का फिल्म का ये गीत कुमार शानू की आवाज़ में। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम सुरों के रंग अब यहीं संपन्न होता है। अब आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे बस कुछ ही पलों में। अब छवि को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना

0: और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक, ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुम्मीडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन, कटक पारादेव की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों की उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर में अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। नीदरलैंड्स के अम्स्टेल्फेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर आउट हो गई। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके थे। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The Union Cabinet today approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Union Cabinet